0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है।

एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्ध प्राणायाम, कपालभाति, मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक, दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ, शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, अग्निसार। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं।
यानी कि अनुलोम विलोम कपाल भाति अग्निसार भस्तिका भ्रामरी। यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस स्फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है, इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर
नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए। लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को, तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जाने और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन
हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है, या हम कहें ऐसी अवस्था है, जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं, जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित हो करके, हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट, या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं, नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली, पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके, पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर, जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं, दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्र करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती इस पर लगाते हुए, एकाग्रचित हो करके लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे।

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमें श्वास लेने में, अगर हमने अधिकतर लोगों को देखा है कि वह जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं और प्राणायाम के बाद में उन्हें कुछ दिक्कतें इस प्रकार की होने लगती हैं, जैसे तेज धूप में निकल के जाते हुए उन्हें श्वास का जो चलन है वह अपने आप में इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, या श्वास भारी होने लगती है, या यदि हम भोजन करते हैं उसके बाद श्वास का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में भारीपन लगना। तो हम पहले से ही यह सावधानियां करेंगे तो हमें यह दिक्कतें नहीं आएंगी। श्वास अपने ही स्वतः जिस तरीके से आपको लगे कि हम यह हमारे लिए सावधानी और हमें आसानी होगी, उस तरीके से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्राणायाम को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। इनहेल यानी श्वास लेंगे, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हम रेस्ट बोल रहे हैं, यानी हमें आराम की स्थिति में आ जाना है। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम में श्वास की गति नियंत्रित रूप से सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया। अगर आपको समय का बोध है, यानी समय बोध का मतलब हुआ हम अपनी घड़ी में 20 मिनट यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट यानी 5 मिनट, हम अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से शुरू करते हुए एक टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमर लगा सकते हैं अपनी मोबाइल में, अपनी घड़ी में, ताकि आपको यह प्राणायाम या कोई भी आगे प्राणायाम करने में सावधानी और सुरक्षा एवं आपको आसानी होगी। जैसे हमने अगर टाइमर लगा दिया तो वह टाइमर जो आपका, जो आपने टाइम सेट किया है उसी पर के वह टाइमर स्टॉप होगा और आपका वह प्राणायाम एक नियमित रूप से, एक नियमित गति से होता रहेगा। बच्चों के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 2 मिनट से हम करेंगे, जैसे कोई भी प्राणायाम हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान योग मुद्रा हमने आज टॉपिक लिया हुआ है, हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ध्यान और भस्त्रिका, यह दोनों प्राणायाम हम बड़ों के लिए 5 मिनट जैसा कि हम लोगों ने अभी किया, और बच्चों के लिए 2 मिनट। हम फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आएंगे। जैसे श्वास हम ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं। तो आइए अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी शरीर से लेकर के और रोगों को लेकर के होती रहती है, जैसे दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह आपकी एकमात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। और यह प्राणायाम करने से जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी श्वास से रिलेटेड, हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आपकी दूर होगी। जैसे फेफड़ों से संबंधित हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करने में
करते रहने से दूर होती है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय यदि अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को उस गति में हम समावित कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ पूर्णता दुगना होकर के मिलने लगता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने आपको अभी बताया कि श्वासों से नियमित रूप से करने से श्वासों की गति को संचालित करने के लिए यह प्राणायाम है, तो हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम को आपके सामने, आपके साथ में हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज आपने यह अभ्यास हमारे साथ किया और यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा और हम इसको नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे। और यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने में कोई भी परेशानी हो तो आप जैसे प्रश्नोत्तरी में आप हमसे इनबॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक अर्जुन अदनान। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज है सैटरडे मॉर्निंग, यानी वीकेंड की मॉर्निंग और वीकेंड वाला मूड। फिलहाल वीकेंड वाला मूड तो बन गया आज, खिली खिली धूप देख करके आपको शायद अंदाज़ा होगा या नहीं होगा कि भाई कल का मौसम जिस तरह से बन रहा था, ऐसा लगा तो था कि फिर कुछ ज़्यादा ही चेंज होने वाला है, बट उतने चेंजेस आए नहीं। और आज जब शुरुआत हुई तो बिल्कुल खिली धूप के साथ में हुई। फिलहाल खिला खिला चेहरा रहे और खिली खिली लाइफ रहे, ये हम ज़रूर दुआ करते हैं आपके लिए। सो चलिए, इन्हीं सब के बीच में वक्त हो गया है आज के थॉट ऑफ द डे को सुनने का और जानने का कि भाई सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या आखिर ले कर के आया है और क्या कुछ होने वाला है। सो चलते हैं और जानते हैं, पता लगाते हैं, मानते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you are listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई चलिए बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। सो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि मुझे लगता है हम अक्सर वो चीज़ें भूल जाते हैं जिन्हें हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं होता। जी हाँ, हम अक्सर उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिन्हें हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं होता, फिर कैसे भी वो मोमेंट्स हों। अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे लिए बहुत ही छोटी सी बात होती है, लेकिन शायद कभी कोई हमारे साथ रहा होता है उसने नोटिस किया होता है उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं जब वो मिलता है तो उन सारी बातों को बताता है। आप कई बार जब अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, अपने मिलने जुलने वालों से मिलते हैं, तो अक्सर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको आप अचानक से सामने वाला कहता है और आप हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आपको याद आता है कि हाँ, ये चीज़ें तो किसी के सामने ही घटित हुई थी, राइट? सो यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि हम अक्सर वो चीज़ें भूल जाते हैं जिन्हें हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं होता। अब देखिए ना, कई बार आपकी अचीवमेंट्स जो आपने छोटी छोटी स्ट्रगल करके आगे गए होते हैं उसको भी आप भूल जाते हैं, उसको याद दिलाने वाला अगर कोई होता है तो वो ज़रूर याद दिलाता है कि अगर आज इस छोटी सी चीज़ से मायूस हो तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें तुमने की हैं। लेकिन अगर कोई नहीं होता है तो वो भी हम भूल जाते हैं कि हमने भी कुछ किया था, राइट? सो बड़ा ही प्यारा थॉट ऑफ द डे है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये एक बात कह रहा है कि अगर वो चीज़ें हम भूल जाते हैं जिन्हें हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं होता, अगर कोई होता है तो उसको याद दिलाता है, और कोई नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं। क्योंकि कई बार समटाइम्स देखिए, किसी को देखते ही हमको कुछ याद आने लगता है, उससे जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज़, कुछ यादें, कुछ बातें आ ही जाती हैं। कभी कहीं देख लिया तो कुछ बचपने का कुछ सीन याद आ गया, किसी शख्स को देख लिया तो बचपन से जो उनसे रिलेशन था या जो उनसे एक चाहत थी, हो सकता है ना, कई बार हम लोग ऐसे जाते हैं, आज उन लोगों को देखते हैं जो कभी हमारे बचपने में अपनी अधीरावस्था में थे और कुछ ऐसे सामानों को बेचते थे जो खिलौनों में आते थे, और उसको देख करके हम लोग हमेशा खुश हो जाया करते थे। आज भी वो चेहरे नज़र आते हैं तो हमको याद आ जाता है। हालाँकि ये तो मेमोरी की बात है, पर थॉट ऑफ द डे जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि हम वही चीज़ भूल जाते हैं जिन्हें हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं होता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं ज़रूर, बस आपको याद नहीं आई है। इतना जानिए कि आप अकेले नहीं हैं, राइट? सो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे हमको कमेंट करिए, बताइए। और फिलहाल हम आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि आज है सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो।

0: नहीं भैया रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर पीछे वाला हॉर्न बहुत ज़्यादा मारता रह जाएगा। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए भाई चैट बॉक्स पर आ गए हैं और देखते हैं किसने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहला मैसेज आया है धर्मेंद्र मोहन जी का, फ्रॉम आवास विकास गुंडा से लिखते हैं, शनि भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। क्या बात है, शक्ति ऑलरेडी है सभी के पास, बस अब हमको बढ़ने की देरी है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच। और मुकेश यादव गोंडा से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, से दिल से गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। मिथिलेश जायसवाल जी हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम, आप सभी का नमस्कार। और इसके अलावा प्रीति शुक्ल जी हैं बहराइच से, लिखती हैं सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आशु मिश्र जी लखनऊ से हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम है आपका मॉर्निंग शो में। सविता दुबे जी लिखती हैं सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, आपको भी बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा एक फ्लावर आपने लगाया हुआ है और वो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, थैंक यू सो मच। ज्योति सिंह भी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग डियर सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू ज्योति, आई होप कि आप भी ज़रूर अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, अब इतने लोग वापस से जुट गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरत से गाने को आप तक पहुंचा ही देते हैं। उसके बाद आज इतनी सारी चीज़ें बताने को है कि मैं सोच ही रहा हूं कि आखिर बताया पहले क्या जा। खैर, काफ़ी कुछ है और वन बाय वन करके हम आपसे बताते रहेंगे, साझा करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, जताते रहेंगे, सब चलता रहेगा। बट आपको क्या करना है, जी हाँ, सारे काम के साथ बने रहना है अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सटक आता माझी सटक सटक।
1: सो भाई कमेंट आ गया है और प्रीति जी ने पूछा है कि थॉट ऑफ द डे था क्या। हाँ जी, थॉट ऑफ द डे तो बहुत अहम था और आप नहीं सुन पाई, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा अलग था। फिलहाल आज के थॉट ने कहा है कि हम अक्सर वो चीज़ें भूल जाते हैं जिनको याद दिलाने वाला कोई नहीं होता। सो लाइफ में ऐसा होता ही है कि अक्सर हम उन चीज़ों को सच में भूल जाते हैं जिनको याद दिलाने वाला कोई नहीं होता। आई होप कि ये थॉट सुनने के बाद आपको ही पसंद ज़रूर आया होगा। एंड ऑफ ऑल्स ये थॉट जो है मुझे लगता है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब कोई भी मिलता है तो हमको कुछ ना कुछ याद ज़रूर आ जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि हमारी मेमोरीज़ बहुत जगह होती है, बस कोई अगर उससे एसोसिएटेड होता है तो वो सारी चीज़ें वापस से रिकॉल करा देता है। एंड गीता श्रीवास्तव जी भी आ गई, गुड मॉर्निंग आरजू सर, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी ने कहा सर जी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आशु जी ने कहा है आज का थॉट उनको काफ़ी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया।

0: हाँ जी, तो भाई जिसका इंतज़ार आपको ज़्यादा रहता है यानी कि आपके शहर की अपडेट का, सिटी अपडेट, तो चलिए क्या कुछ चल रहा है गोंडा में और क्या कुछ होने वाला है ये सब बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए भाई, सिटी अपडेट में क्या कुछ है हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज चूँकि 16 मई हो गई है, एंड आपको बता दें कि आईटीआई मनकापुर में रोज़गार मेला लगने वाला है और वो तारीख है 22। जी हाँ, सो जो निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर हैं उनको अवेलेबल कराने के लिए 22 मई को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में मनकापुर में रोज़गार मेला लगने वाला है। मेले का आयोजन देवी पाटन मंडल के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। सो फिलहाल कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि रोज़गार मेले में 10 से ज़्यादा कंपनीज शामिल होंगी और मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा जिनके पास है, वो स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकेंगे। सो कैंडिडेट्स के लिए रोज़गार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बता दें, हमारी नई यूनिवर्सिटी बलरामपुर की माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। सो प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने बताया कि सेशन 2026-27 में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि समेत कई सारे ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू और एलएमएल और एमएनसी, ये कृषि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स को डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, यौगिक साइंस, क्वांटम साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाएगी। कुलपति ने बताया कि 15 मई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, 15 मई यानी कल से ही। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें कि जिन स्कूल्स में ज़रूरत है वहाँ तैनात होंगे 194 सरप्लस टीचर्स। जी हाँ, सो बेसिक शिक्षा विभाग ने ज़िले के जो परिषदीय विद्यालय हैं मानक से ज़्यादा तैनात 194 टीचर्स को सरप्लस एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 189 प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक शामिल हैं। विभाग की तरफ से जारी सूची में ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के साथ सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में चस्पा कर दी गई है। विभाग अब इन शिक्षकों को उन विद्यालयों में तैनात करेगा जहां छात्र संख्या ज़्यादा है लेकिन शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इससे लंबे वक्त से शिक्षक विहीन या कम शिक्षक वाले स्कूल्स में पढ़ाई व्यवस्था बेहतर होने की फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि गोंडा से ही है। सो बता दें, फिलहाल अभी भी प्रॉब्लम्स स्मार्ट मीटर्स को लेकर के बनी हुई है। स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी और गलत बिजली बिलों को लेकर के कंज्यूमर्स की परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये चीज़ कल यानी शुक्रवार को अम्बेडकर चौराहे पर मौजूद सिविल लाइन्स विद्युत उपकेंद्र पर लगे कैंप में एक कंज्यूमर ने बताया कि शिकायत पर स्मार्ट मीटर तो हटा दिया गया, अब बिल सही कराने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और वहीं के निवासी ने बताया कि उनके आवासीय परिसर में

अभियंता ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर बड़गांव विद्युत उपकेंद्र पर आयोजित कैंप का निरीक्षण किया। अधिकारियों और एजेंसी कर्मचारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा 4 मई को आई आंधी और बारिश के बाद धानीपुर बाबागंज फीडर की बिजली बहाल नहीं हो सकी है और शुक्रवार यानी कल तक भी कई गाँव में आपूर्ति बाधित रही थी। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट जो है वो ये है कि भाई सुबह अभी 9 बजे से जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पुलिस लाइन में अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अभी 10 बजे से ही संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा तरबगंज तहसील में। वहाँ पर जिलाधिकारी की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाना है। एंड इसके अलावा आपको बता दें, एक जो ज़रूरी जानकारी है और वो आप लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं, वो है कटे होंठ तालू वाले जो बच्चे हैं उनका मुफ्त ऑपरेशन होना है। सो जन्म से ही जो कटे होंठ हैं और तालू की जो प्रॉब्लम से जूझ रहे बच्चे हैं, मरीज़ों के लिए ये एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सो ये 5 दिन का निःशुल्क पंजीकरण शिविर है जिसमें 93 मरीज़ों को ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है और इन सभी का लखनऊ के हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मुफ्त ऑपरेशन और इलाज में कराया जाएगा। 11 से 15 मई तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर, तरबगंज, करनैलगंज और ज़िला महिला चिकित्सालय DIC सेंटर में शिविर लगाए गए हैं। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का परीक्षण करके पंजीकरण किया है। CMO डॉक्टर संत लाल पटेल ने बताया कि कटे होंठ और तालू की जो प्रॉब्लम है बच्चों का आत्मविश्वास को प्रभावित करती है, ऐसे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने के लिए स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। और ACMO डॉक्टर CK वर्मा ने बताया कि शिविर को सफल बनाने में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों ने एक्टिवली इसमें भूमिका निभाई है। सो RBS के DIC प्रबंधक जो हैं उमाशंकर वर्मा ने बताया कि मरीजों और उनके जो पेरेंट्स हैं या परिजन हैं उनकी सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और ज़्यादा जानकारी के लिए लोग 94-15-53-33-85 या फिर 95-54-37-05-6 या फिर 94-54-15-99-99 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। यानी अगर आपके पहचान में भी आपके घर में या आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसके कटे हों होंठ तालू और ऐसे बच्चे परेशान हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार हम वापस से मेंशन कर देते हैं, 94-54-15-99-99। जी हाँ, सो 94-54-15-99-99 ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सो फिलहाल ये था, और इसके बाद अगली अपडेट जो है वो गैस संकट से ही आ रही है, जहां पर एडवोकेट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है और प्रदर्शन के बाद अब DM को ज्ञापन भी सौंपा किया गया है। सो LPG गैस सिलेंडर की किल्लत और एजेंसी संचालकों की जो कहीं ना कहीं मनमानी के रूप में बताया जा रहा है, कल अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करके जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही साथ कहा गया कि भाई काम फिर नहीं करेंगे और ये जो किल्लत बनी हुई है उसको लेकर के कुछ ना कुछ ज़रूर जल्द से जल्द कराया जाए। सो फिलहाल ये सारी अपडेट्स जो थी वो गोंडा से आ रही थी, जो कि हमने आपको पहुंचा दी, बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, वापस से आएंगे, आने के बाद बहुत कुछ है जो आप तक पहुँचाना है। फिलहाल सुनते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो, गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग चॉक RJ अदनान।

0: ये तो दमा लगता है।
1: Oh, no.
2: हाँ डॉक्टर साहब, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है।
0: ठीक है, चिंता की तो कोई बात नहीं, हम इसे ही रोक देते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। अब भाई आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, और ऑफ कोर्स इसके बारे में दीवानगी तो छाई रहती है और अक्सर ही आप देखे जाते हैं मैच देखते हुए। तो चलिए बता देते हैं कि किस तरह से चेन्नई और लखनऊ का रहा मुकाबला आईपीएल में, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो चलिए बताते हैं कि भाई क्या कुछ हुआ कल के मैच में, क्योंकि ये मैच कल लखनऊ में ही ऑफ कोर्स आपने देखा खेला गया था। सो फिलहाल चेन्नई ने लखनऊ के सामने रखा है था 188 रन का लक्ष्य। तेज गेंदबाज आकाश सिंह के शुरुआती झटकों पर यानी 26/3 विकेट से उबरते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 188 रन की चुनौती रखी है। सीजन में पहली बार खेल रहे आकाश ने कप्तान ऋतुराज के बाद संजू सैमसंग और उर्विल पटेल को शिकार बनाया। सो चेन्नई के युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली और प्रिंस यादव के आखिरी ओवर में चेन्नई ने 23 रन बटोर कर लखनऊ के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। इससे पहले लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी दी। तेज शुरुआत के बीच में आकाश ने कप्तान ऋतुराज को मिड ऑन पर खड़े पूरन के जरिए लपकवा करके पहला झटका दिया। सो आकाश के अगले ओवर में संजू सैमसंग को 20 पर बाउंड्री वॉल पर मुकुल चौधरी ने खूबसूरती से लपक लिया। सो उर्विल पटेल भी 6 रन पर आउट हुए और उन्हें भी आकाश ने शिकार अपना बना लिया। कार्तिक शर्मा और ब्रेविस ने पारी को संभाला और इस जोड़ी ने ज़्यादा आक्रामक दिख रहे कार्तिक को 35 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सो 122 रन के योग पर चेन्नई को चौथा झटका लगा जब ब्रेविस 25 शमी की गेंद को सही पुल से नहीं कर पाए और आउट हो गए। इस बीच रन रेट बढ़ाने के कोशिश में कार्तिक शर्मा 71 रन पर बनाकर शाहबाद का शिकार बने। इसके बाद शिवम दुबे नाबाद 32 और प्रशांत वीर नाबाद 13 ने 5वें विकेट के लिए 24 गेंदों पर 45 रन जोड़ करके चेन्नई को मजबूत स्कोर तक आखिर पहुंचा दिया। सो फिलहाल ये रही कहीं ना कहीं इस तरह से कल की मैच की अपडेट। और अगर हम दूसरी टीम की तरफ बात करें तो कोलकाता के लिए अब जीत से ही बचने वाली है उम्मीद, चूँकि आईपीएल के प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को आज कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस पर बड़ी जीत दर्ज करनी ही होगी, वरना लगातार 5 जीत से तालिका में दूसरे नंबर पर चल रही गुजरात की टीम भी विजयी क्रम में जारी रखना उतरना चाहेगी। सो फिलहाल ये रही मैच से रिलेटेड अपडेट। आई होप कि आप भाई आजकल आईपीएल देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्यों क्या ख्याल है? फिलहाल अगर ख्याल सही है तो बता सकते हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। सुनते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: डिलीशियस
7: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
6: और क्या क्या है खास?
7: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
6: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है, अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: गोंडा शहर की

0: हाँ जी, फिलहाल यूपी के 15 जिलों से ज़्यादा, यानी यूपी के 15 से ज़्यादा ज़िलों में असुरक्षित पाया गया है पेयजल। यानी जो बोतल बंद पानी हम लेते हैं, ये सेफ़ नहीं पाया गया है। सो ये खबर आपके लिए हो सकती है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और मिलावट से। तो चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरी जानकारी।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आपको बता दें कि भाई खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी FSDA की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने प्रदेश के अंबेडकर नगर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोंडा सहित कई ज़िलों में जो चल रहे वाटर प्लांट्स हैं, पानी की बिक्री पर रोक लगा दी है। सो लखनऊ की प्रयोगशाला में हुई जांच में न सिर्फ बैक्टीरिया मिले हैं बल्कि पानी में केमिकल और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों की मात्रा भी मानक से काफ़ी कम पाई गई है। सो प्रशासन ने बाज़ार में पहुंच चुकी पानी की खेप को वापस मंगाने यानी रिकॉल के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हिसाब से कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया युक्त पानी पीने से होता क्या है, हैजा, टाइफाइड और किडनी फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। अब ज़रा सोचिए, बोतल बंद पानी, ये जो ज़िलों का नाम हमने बताया है, इस तरह करीब 15 से ज़्यादा ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर इस तरह ये पानी असुरक्षित पाया गया है। जैसा कि बताया कि भाई लखनऊ के टेस्टिंग लैब्स में इसकी जाँच हुई, इसमें बैक्टीरिया सिर्फ कम नहीं मिले बल्कि पानी में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा जो एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उससे काफ़ी कम पाई गई है। और कहीं ना कहीं इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जो विशेषज्ञों ने बताया, उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया युक्त पानी है जिसको पीने से हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इवन किडनी फेल जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब ज़रा सोचिए, इसमें फ़िलहाल नाम जो है वो प्रदेश का अम्बेडकर नगर है, लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज है, गोंडा है और इसके साथ ही और कुछ ज़िले हैं जहां पर ये नमूने जांचे गए हैं, जहां के पानी को लेकर के, बोतल बंद जो पानी बिकता है उसको लेकर के, और ये सारी चीज़ें पाई गई है। तो कहीं ना कहीं जब हम बाहर निकलते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी में, जिस वक्त शिद्दत की गर्मी होती है, हम फटाक से ले लेते हैं पानी की, भाई पी लो। ऑब्वियस सी बात है, पानी जैसी कोई इनिशियल जो चीज़ें हैं, इतने एसेंशियल चीज़ को तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन बात ये होती कि हम क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं हम पानी बेधड़क यूं ही पी लेते हैं, उसको शायद अब देख करके, समझ करके पीने की कोशिश करना होगा। ऐसे बोतल बंद मिलावटी जो पानी है जिसको पीने से इस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है, उससे बचने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मिलावट जो है ये हम सभी को ख़त्म कर रही है, खोखला कर रही है। हम कितनी भी कोशिशें कर लें पढ़ने की, बढ़ने की, सब कुछ करने की, लेकिन जब तक ये मिलावट चलती रहेगी खाने और पीने की चीज़ों में, हमारे हेल्थ से खिलवाड़ होता रहेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था कि फ़िलहाल 15 से ज़्यादा यूपी के ऐसे ज़िले हैं जहां इस तरह के नमूने लेने पे वो फेल हुए हैं और इनसे बचने की कोशिश भी की जा रही है। फ़िलहाल विभाग की तरफ से रिकॉल करा लिया गया है प्रोडक्ट, यानी जो पानी की खेप बोतल की आ गई थी मार्केट में, उसको वापस मंगाया जा रहा है और इस तरह से अब बचने की कोशिश की जा रही है। सो फिलहाल ये बहुत ज़रूरी बात है कि भाई खाने पीने की चीज़ों में हम मिलावट से बचते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बाहर निकलते हैं, कहीं भी आते जाते हैं तो हम बाहरी चीज़ों को लेते हैं, लेकिन इससे अब बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ये बीमारियाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही, बल्कि कहीं ज़्यादा बीमारियाँ तो बस ऐसी है कि आप हेल्दी भी हैं, आप नॉर्मल भी हैं, बट चूँकि मिलावट इस तरह की है कि आपके ऊपर असर पड़ता है, हॉस्पिटल्स भरे रहते हैं, डॉक्टर्स की अब ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप कहीं भी निकले तो इन बातों को अपने जहन में मद्देनज़र रखते हुए सामान ले, और कैसा ले, कहाँ से ले, क्या ले, इस बात का ख्याल हमेशा ज़रूर रखें। फिलहाल सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: भाई जहां प्राइवेट लैब्स में 5,000 से 8,000 वसूल लेते हैं और हम जो बता रहे हैं यहां गरीबों के लिए सिर्फ 50 रुपए में उपलब्ध हो जाती है बिना किसी भेदभाव के, और यहां सिर्फ ऑफ कोर्स किसी एक धर्म या वर्ग के लोग नहीं बल्कि हर वर्ग हर धर्म के ज़रूरतमंद लोग इलाज के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे हैं ऐसी कौन सी जगह की हम अचानक से बात करने लगे। चलिए, सो हमारी राष्ट्रीय राजधानी पता है ना क्या है? ऑफ कोर्स नई दिल्ली। और दिल्ली में ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है, यानी DSGMC। इसके ज़रिए गुरुद्वारा बंगला साहिब में शुरू किया गया एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जो आज लाखों लोगों के लिए हेल्प कर रहा है। सो क्या है इसकी पूरी बात, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

फीवर कई दिन से आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, क्या है? डायग्नोस्टिक सेंटर जाओ। पेट में दर्द हो जाता है और कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, क्या? डायग्नोस्टिक सेंटर जाओ। भाई कई बार सर के एक हिस्से में काफ़ी दिन से दर्द रह रहा है और इतना तेज़ होता है ऐसा लगता है सर फट जाएगा, क्या करें? डायग्नोस्टिक सेंटर जाओ, टेस्ट कराओ। सो इस तरह की कॉमन सी बातें हैं कि भाई कुछ भी ऐसा होता है तो हम डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं ताकि वो हमारे बीमारी के लिए जो टेस्ट्स हैं ज़रूरी वो हो सके और हमें पता चल सके कि हमको प्रॉब्लम क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा डॉक्टर जो है उसको ट्रीट कर पाए, उसका ट्रीटमेंट कर पाए। लेकिन जब भी डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम आता है तो आपको भारी भरकम वो टेस्ट फीसेज याद आती है, 2000 की ये जाँच होगी, 2500 की ये जाँच होगी, 5000 की ये होगी, 500 की ये होगी, इस तरह से बहुत ज़्यादा जाँच में निकल जाती है चीज़ें। पर अभी फ़िलहाल दिल्ली में एक ऐसी प्रबंधन समिति है गुरुद्वारा बंगला साहिब में, ये डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया गया है जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किस तरह से? पहली बात तो वेटिंग का झंझट ख़त्म हो गया। अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स जाते हैं तो महीनों की डेट के बाद मिलता है, और अगर हम गुरुद्वारा बंगला साहिब की बात करें तो यहाँ 2 दिन में MRI और अगले ही दिन रिपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा किफ़ायती फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर। सो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं सिर्फ 50 रुपये, और जो सामान्य वर्ग यानी जनरल क्लास हैं महज 1400 रुपये, जो कि प्राइवेट से बेहद कम है, उनके लिए ये रखा गया है। इलाज का सहारा है, जी हाँ। सो मोहम्मद शमीम जैसी कई फैमिलीज़ हैं जो लाखों की सर्जरी का खर्च उठा रही हैं और उनके लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। सो भाई ऐसे कई लोग हैं जिनका इलाज होता है यहाँ पर और वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। सो गुरुद्वारा बंगला साहिब और बाला साहिब की ये मुहिम लगातार बढ़ रही है। मुफ्त किडनी डायलिसिस होता है। गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट आश्रम के पास में हर दिन लगभग 300 लोगों का मुफ्त डायलिसिस होता है। इसके अलावा अपकमिंग फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत ही जल्द यहाँ वर्ल्ड क्लास कार्डियोलॉजी यानी दिल की बीमारी और नेत्र विज्ञान यानी आई डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है, जहाँ रोज़ 400 से 5 मरीजों को मुफ्त एडवाइस भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अपने ऑक्सीजन प्लांट्स और ICU बेड के साथ ये सेंटर किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को टक्कर देता है। सो इस तरह से काम हो रहा है गुरुद्वारा बंगला साहिब में, जो कि दिल्ली में मौजूद है और आपने नाम भी इसका सुना होगा। सो भाई ऐसी कई सारी समितियाँ हैं जो बहुत नेक काम कर रही हैं, किसी खास वर्ग धर्म के लिए नहीं, क्योंकि सेवा का मतलब ही होता है इंसानी सेवा। अब अगर कोई भी जा रहा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हमें तो जिम्मेदारी बस इंसानों को बचाने की मिली है, हो सकता है कोई जानवर परेशानी में हो, आपके घर बिल्लियां पली है तो आप कहो भाई हमें डॉगी से क्या मतलब। सो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक होता है कि भाई डॉक्टर होते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के, कि कोई किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, सो कोई न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इंसानियत के चलते वो हेल्प सब में करते हैं और ये हर किसी का कहीं ना कहीं शायद एक फ़र्ज होता है, क्योंकि हम सोसाइटी में हैं, हमें हर तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास, इवन हमको भी किसी तरह की बीमारी कभी हो सकती है तो अगली बार कुछ और हो सकता है। तो चीज़ें जब इतने बदलाव, इतने वेरिएशंस हैं, तो हम कैसे फिक्स्ड कर सकते हैं कि बस इतना ही है ना। तो गुरुद्वारा बंगला साहिब में ये जो नेक काम है जिसके बारे में हमने बताया, भाई इस तरह से डायग्नोस्टिक सेंटर को चलाना और उसके बाद इस तरह से लोगों की हेल्प करना, ये सच में अपने आप में एक सराहनीय कदम है और इसको जितना सराहा जाए उतना कम है। सो बहुत अच्छी बात थी और मुझे लगा ये आप तक पहुंचानी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं आज, ऐसा नहीं है कि जो अच्छा करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, जो बेहतर करना चाह रहे हैं वो विपरीत माहौल, विपरीत चीज़ों के विपरीत जा कर के भी वो वही कर रहे हैं जो उनको लगता है कि करना चाहिए, और यही बातें हमको आगे लेके जाएगी। सो ऐसी चीज़ों को लेकर के आपका क्या है मानना, चलिए आप भी कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: इश्क है मलंग मेरा। और फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी फोन की मेमोरी जब भरने लगती तो आप क्या करते हैं। कुछ अननेसेसरी या कम इम्पॉर्टेंट आपको लगते हैं उन फोटोज़ उन वीडियोस को आप हटाना शुरू कर देते हैं, आप कैश फाइल्स हटाते हैं क्योंकि आपको लगता है भाई ये डबल डबल हो करके आपके फ़ोन की स्पीड को कम करें। या इसी तरह सोचिए, अगर माइंड जहन में नेगेटिव थॉट्स हों या इस तरह की चीज़ें चल रही हों बस रही हों तो फिर क्या होगा, आप स्लो होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। सो क्या कोई तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा वक्त भी ना लें और ख़ुद को क्लीन अप कर लें? चलिए हम बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको हम बता रहे हैं कि कैसे खुद को यानी खुद के माइंड को क्लीन अप करना है विद इन 15 मिनट्स। जी हाँ, तो देखिए तीन पार्ट में आप कर सकते हैं। पहला पार्ट है अपने विचारों को बाहर निकालना। कैसे विचार? सो देखिए, एक डायरी ले सकते हैं आप, जो कि हमेशा से हम कहते हैं अभी तक आपने लिया नहीं, ये सोच करके कि क्या यार कभी ले लेंगे या कोई न्यू ईयर आएगा तो कोई ना कोई पकड़ा देगा। नहीं, वो वाली डायरी नहीं चाहिए, उस पर चलेगा ही नहीं, आपको अलग से लेना होगा, ठीक है। और उस डायरी पर बिना रुके 5 मिनट तक लिखिए जो भी मन चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो लिखिए, जैसा है वैसा ही है। मैं परेशान हूँ, आज अच्छा नहीं लग रहा, ये काम डराता है, कुछ भी लिखिए जो भी चल रहा है आपके मन में, बस लिखते जाइए, रुकिए मत, जज मत कीजिए क्या लिख रहे हैं, लिखते जाइए लिखते जाइए, 5 मिनट तक अपने विचारों को डायरी पर लिखते जाइए। सो इससे बाहर विचार निकल आएंगे जो आपके अंदर चल रहे थे। दूसरा है पहचानना और अलग करना। आप जो लिखा है उसमें से पहचानिए कौन सा थॉट जो है वो बार बार आ रहा है, क्या वो डर है या गुस्सा है या किसी की बात आपको चुभी है, और इन्हीं बातों को आपको लेबल करना है। ये चिंता है, यह असुरक्षा है, ये पुरानी याद है, मतलब जो कुछ भी थॉट आया है उसको, उसके लेबल लगाने हैं। लेबल में क्या हो सकता है, ये पुरानी याद है, ये असुरक्षा है, ये फिक्र है, जो भी इसका लेबल हो आप अपने थॉट से उस लाइन को लगाइए, यानी पहचानिए उसको और अलग करिए कि कौन कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है बदलें या फिर आज़ाद कर दें। सो अब तय करना है कि कौन सा विचारों को अब छोड़ना है, कौन से विचारों को बदल करके नया दृष्टिकोण देना है, यानी नया कुछ सोचना है। लिखिए लिखिए कि मैं इस डर को जाने देता हूँ, मैं इस गलती से सीख कर आगे बढ़ता हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ। इस तरह के स्टेटमेंट्स आप अगर लिख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि आप इन तीन

पार्ट्स को करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस करने वाले, एक बड़ा डर, एक बड़ी प्रॉब्लम जो आपको एकदम परेशान किए हुए थी, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था, हौच पौच था, जिसे कह रहे दिल बैठा जा रहा था, ये सब कुछ काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो जाएगा। सो माइंड क्लीनअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी के मन में इस तरह के थॉट्स आ ही जाते हैं जिनसे आपको बचना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का अगर कोई भी थॉट आता है तो आप उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए, वापस से आते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी आ ही गए हैं। तो चलिए, कौन क्या आया है, कहाँ से आया है, क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।

क्या बात है, तू ही जुनून फ्रॉम द मूवी धूम। सिंगर है मोहित चौहान साहब। फिलहाल गाना बहुत अच्छा है एंड ऑब्वियस सी बात है आपको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता होगा। चलिए इसी के बाद हम बताते हैं कौन कौन मौजूद हैं और क्या कुछ लिखा है। इसके बाद एक और मैसेज आया, गुड गुड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड धर्मेंद्र मोहन जी को सॉन्ग पसंद आया, अति उत्तम सॉन्ग चाय के साथ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। एंड कमल नयन जी हैं आर्जुनाथ से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। गीता जी ने कहा सर क्या बात, सही बताया आपने, पानी सही नहीं, हवा सही नहीं, दूध घी पनीर सही नहीं, सब्जियां कलर जो है करके वो बेची जा रही, मेडिसिन भी नकली पाई जा रही है, भगवान भरोसे जी रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मिलावट हो रही है सच में फ़िलहाल हर सेक्टर्स में। इसमें तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा उगा रहे हैं और हमको ही प्योर नहीं मिल पा रहा है। सो ये बात ज़रा समझना पड़ेगा। और धर्मेंद्र जी ने कहा सर आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी क्योंकि गर्मी में अधिक लोग पानी पीते हैं, थैंक यू सो मच कि आपको सॉन्ग पसंद आया। एक और है गुड मॉर्निंग का मैसेज, गुड मॉर्निंग टू यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। और साथ ही साथ आज का मॉर्निंग वाला शो कैसा लगा ये हमको आप ज़रूर बता दिए। फ़िलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, अब चलने का वक्त आ गया है और वापस से आपसे मुलाकात करने वाले कल संडे स्पेशल शो में। फ़िलहाल बने रहिएगा, खुश रहिए, सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा के बाद रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी समता गांव की गूंज का नया एपिसोड लेके आई हूँ फिर से, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे की मधुर मधुर आवाज में गीतों की माला पिरोई गई है। और इस बार हमने गांव की गूंज को अवधि के रूप में दिया है।
9: उठो श्वेता, समता, तुम दोनों क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? उठो, तुरंत उठो, बिस्तर छोड़ो।
10: क्या किरण दी, क्या हो गया?
11: क्या ऑफर आ गई?
10: अभी तो केवल 5 ही बज रहे हैं।
8: अब क्या हो गया किरण दी, क्यों हम सभी को सुबह सुबह जगा दी हैं?
9: अरे सभी उठोगे तो बताऊंगी ना, सभी को गांव लेकर चल रहे हैं। रोज रोज बोलते थे ना कि गांव चलना है, गांव चलना है, तो चलो सभी गांव की सैर करने निकलते हैं।
8: यानी हम सभी को गांव की ठंडी ठंडी हवा और वो खेत खलियान देखने को मिलेंगे।
9: हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो सभी को ले चल रही हूँ। अच्छा श्वेता, वो ढोलक मंजीरा हारमोनियम सब रख लिया है ना?
10: हाँ हाँ किरण दी,

0: बारे किरण दी, बड़ा मजा आया सुन के और गाते बजाते। हम कब रामपुर आ गए पता ही नहीं चला।
1: हाँ समता, सच में। पर सुनो, वहाँ शुद्ध अवधि में ही बात करनी है हम सभी को, ताकि गांव वालों को तनिक भी ये ना लगे कि हम सब शहरी हैं।
0: अच्छा तो चलो जरा हमों की गाना सुनाए दो।

0: अरे भाई, रामपुर में पहुंचकर हमें तो सब भूल ही गए।
1: अरे किरण दी, नमस्कार, कैसी हैं? और आप कहाँ इन कुमकरणों को इतनी सुबह सुबह उठा लाई हैं?
2: अरे जिम्मी, कैसी हो भाई, ठीक हो?
1: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ।
3: किरण दी, वो बाकी सुरतिया वाला गाना सुना दीजिए जरा।
0: लगता है तुम्हें जिम्मी को देखकर ये बाकी सुरतिया वाला गाना याद आया है ना?
3: समझ तो गई।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया।
1: श्वेता देखो गांव में कितनी रौनक है ना, देखो देखो बैल से खेत जोते जा रहे हैं।
2: हाँ और देखो ठंडी ठंडी हवा के साथ सूर्य देवता भी मुस्कुरा रहे हैं, पर अपना प्रकोप नहीं दिखा रहे हैं। ये होता है हमारा गांव, समझे?
0: किरण दी वो एक गाना गाती थी ना जिसमें बयरिया चुनरिया और आम की बगिया का वर्णन था, हम सबको भी जरा वो गाना सुना दीजिए ना।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, लो भाई

0: वो देखो उधर, अरे उधर देखो उधर, आम की बगिया में झींगुर। वाह कितना मनमोहक दृश्य लग रहा है।
1: और वो देखो किसान काका ने हम सबके बैठने के लिए खेत में ही पूरा इंतजाम कर दिया है।
2: आओ आओ बिटिया, सभी पहले ही तरबूज के शरबत पियो और हमहू गनवा सुनाए दियो।
3: तो लीजिए किसान काका सुना देते हैं।

0: वाह किरण दी, अच्छा अब सभी चलो चलो पीपल के पेड़ के पास।
1: क्यों भाई, वहाँ क्यों?
0: अच्छा चलो तो सभी को बताती हूँ भाई, वहाँ बिंदु दीदी सभी के लिए सत्तू लाई है और चटपटे प्याज के पकौड़ों के साथ चटनी भी है, वहाँ तो चलो सभी जल्दी।
2: अच्छा बताओ, गर्मियों में कच्चा प्याज क्यों खाते हैं?
1: मैं बताऊं?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं?
1: क्योंकि हमें लू ना लगे।
2: अरे वाह जिम्मी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो बच्चा।
1: अच्छा किरण दी, एक गाना जो आप गाती थी वो सासू पयनिया कैसे जाऊं, वो सुना दीजिए ना।

0: कितना प्यारा मौसम है यहाँ का और कितना फर्क है गांव के और शहर के टेम्परेचर में। इस समय यानी 1 बजे है, शहर में निकलो तो शरीर ही जलने लगता है और यहाँ गांव में तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है।
1: सच कहा समता, वाकई में। अरे ये क्या है, ये तो पॉलिथीन से बना बेना है। वाह कितना सुंदर है ना, देखो देखो देखो जिम्मी।
2: हाँ यहाँ ऐसे ही बनते हैं, ठंडी ठंडी हवा देते हैं।
3: वो देखो बच्चों की टोली आ रही है, तुम सभी को कुछ देने। इनके हाथों में कमल के फूल हैं, जो यहीं पाए जाते हैं।
1: तुम सभी को किरण दीदी की आवाज में सुनोगे सभी?
4: क्यों नहीं सुनूंगा?

अरे श्वेता, याद है हम सभी एक बार नौबस्ता गांव चले थे? वहाँ पे नाव पे हम लोग घूमे थे, झूले पे कितनी फोटो खिंचवाई थी ना।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी है जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
3: धन्यवाद आकांक्षा जी, आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
2: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
3: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता, सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
2: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
3: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
2: जी।
3: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है, तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे, तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
2: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
3: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
2: जी
3: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है, वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
2: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
3: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है, क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
2: जी।
3: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर, भेदभाव खत्म करना।
2: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
3: आकांक्षा जी, यह बहुत गंभीर खतरा है
2: जी।
3: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
2: जी,
3: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है।
2: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा, वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता
3: जी। जरूर
2: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
3: आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया
2: जी।
3: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
2: जी,
3: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
2: जी।
3: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
2: जी,
3: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
2: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
3: आकांक्षा जी, उनकी भूमिका सबसे अहम है
2: जी।
3: यही बहनें त्वचा पर सुन दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
2: जी।
3: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
2: मैम, अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
3: देखिए खानसा जी
2: जी,
3: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
2: जी,
3: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
2: जी,
3: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम, एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
3: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका
2: जी।
3: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
2: बिल्कुल,
3: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
2: बिल्कुल,
3: याद रखिए बीमारी से नहीं, गलत सोच से समाज बीमार होता है।
2: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी
3: जी। आकांक्षा जी
2: जी, मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
3: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है
2: जी।
3: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
3: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं, भेदभाव से है
2: जी। अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
3: देखिए आकांक्षा जी
2: जी,
3: मेरा संदेश बहुत साफ है
2: जी।
3: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
2: जी।
3: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला
3: जी। धन्यवाद मैम।
2: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
4: नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपका अपना गोला शहर की थर्डकंट रेडियो ज्ञानस्थली, आवाज़ है आपकी अपनी आरजी उन्नति की। और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए स्पेशल सैटरडे का प्रोग्राम जिसका नाम है स्वास्थ्य संगिनी। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम को। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानस्थली की एक खूबसूरत पहल, खूबसूरत श्रृंखला जिसके अंदर बात होती है आपकी अपने सेहत की, आपके सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं हम। श्रोताओं, अक्सर कहा जाता है कि तंदुरुस्ती का राज और हमारे दिल का रास्ता हमेशा पेट से होकर गुजरता है, लेकिन आजकल इस रफ्तार भरी जिंदगी में हमारे यही पेट में कभी कभी तूफान मच जाता है। तूफान गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, बार बार सेंसिटिविटी हमको देखने को मिलती है। पेट कभी कभी बहुत नाजुक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, और अगर हम थोड़ा सा भी मिर्च मसाला खा लेते हैं तो हमें पेट में जलन होती है, गैस बनती है और न जाने कितनी ही इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या ये कोई बीमारी है, ये कोई लक्षण है, या फिर ये हमारी आम दिनचर्या की एक आदत बन चुकी है? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आज हम बात करेंगे आपके उसी संवेदनशील पेट के बारे में, जिसे इंग्लिश में अगर आप कहें तो सेंसिटिव गट या सेंसिटिव स्टमक बोल सकते हैं। क्या आपको अक्सर खाना खाने के बाद या फिर यूं ही पेट फूलना, गैस, कब्ज, थकान की शिकायत रहती है? क्या खाना खाने के बाद कभी भारीपन महसूस होता है या बिना वजह आपको कमज़ोरी बनी रहती है? अगर ये ऐसा आपके साथ होता है तो ये सिर्फ पेट की छोटी सी परेशानी नहीं हो सकती, ये सब आपके कमज़ोर पाचन के लक्षण हो सकते हैं, और लंबे समय तक अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो ये आपकी सेहत पर अपना असर पूरा पूरा डालते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा हम खाते हैं, तला भुना, बाहर का, न जाने क्या क्या। जब सब्जियां खाने की बात आती है तो ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे सब्जियों में पता नहीं कौन सा सपेरा बैठा हुआ है, कौन सा सांप है, कौन सा कीड़ा है, जो अगर हम खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वहीं अगर हमसे कोई कह देता है कि चलो बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन खाते हैं पार्टी के नाम पर, हम हमेशा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छी खासी क्वांटिटी में खाते हैं। आजकल जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप अपनी दिनचर्या मत बदलिए, भले ही आप अपने खाने पीने पर उतना रोक ना लगाएं, बस पोषण कंट्रोल करना ज़रूर से सीखें, जहाँ डॉक्टर्स आपको आए दिन सलाह देते हैं, जो जन चाहते हैं उनको, जो उनके ट्रेनर्स बताते रहते हैं कि अगर आपको इंजॉय भी करना है, आपको पार्टी भी करनी है, आप कीजिए, मैं आपको खाने पीने से नहीं रोकता, लेकिन एक सही पोषण में कम्प्लीट डाइट को लेना ज़रूरी है। वहीं हमारे बचपन से ही हम देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो ऊट पटांग चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो पैकेट में आ रही हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी है, बहुत ज़्यादा पाम ऑयल है, और आपको लगता है कि यार यही सब खाकर तो मैं भी बड़ा हुआ था, तो मेरा बच्चा भी खाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। भाई आपने जब खाया था और जो अब मार्केट में सामान आ रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता जा रहा है, और इसी फ़र्क के चलते आजकल लोगों के गट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो गट हेल्थ है, उनका जो पेट है, वो बहुत संवेदनशील होता जा रहा है। अगर वो हल्का सा भी तेल मसाला ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा खा लेते हैं तो उनके पेट को लग जाता है बुरा, और वो जाता है मुंह फुला के बैठा। जब वो आपका पेट मुंह फुला लेता है तो फिर आपको दूर से पता चलता है कि यार आज पेट थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है, और आप कर रहे हैं कोशिश, वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। और आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में गलत खान पान के साथ तनाव, नींद की कमी की वजह से भी हमारी गट हेल्थ, यानी कि आपकी आंतों की सेहत बहुत तेज़ी से ख़राब होती जा रही है। तो आइए से आज आसान भाषा में समझते हैं कि आपके कमज़ोर और पाचन की कारण क्या है, लक्षण क्या है, और क्या इसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या ये घर पे ठीक किया जा सकता है, या इसके लिए हमें स्पेशली डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट करना ही पड़ेगा। सेंसिटिव गट यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है, अगर वो कमज़ोर पड़ गया है तो उसे कैसे रिपेयर करें, कैसे ठीक करें, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं जिसको ठीक किया नहीं जा सकता। भले अभी तक आपने कितना ही क्यों कुछ ना खाया हो, लेकिन अगर आप अब अपनी आदतें बदलने की कोशिश करेंगे तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी देखने को मिल सकता है। बट इसके लिए आपको सही मायने में समझने की ज़रूरत है कि जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो भैया आपको सबसे पहले बता दें कि पाचन तंत्र क्या है और क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यूँ तो आप भी जानते हैं, जो हम खाते हैं वो सीधा हमारे पेट में जाता है, और हमारे पेट से ही हमारे शरीर को अलग अलग ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमारा पेट खाने को तोड़ता है, फिर उसे आगे प्रोसेस करके लिवर में भेजता है, लिवर उसे इंटेस्टाइन में भेजता है, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में उसके जो मिनरल्स, विटामिंस, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, फैट, हर एक चीज़ को अलग अलग किया जाता है, और इसी की वजह से आपको शक्ति मिलती है काम करने की, एनर्जी मिलती है अपना डेली काम करने की, प्लस आपका स्वस्थ रहना भी आपके पेट से जुड़ा होता है। तो भाई शरीर को पोषण देने का काम आपके पेट का है, और इसीलिए आपका पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें इम्यूनिटी की, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो इसकी एक वजह ये भी होती है कि आपका पेट ठीक नहीं है, यानी कि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। हम जो भी खाते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने वाली चीज़ें नहीं खाते हैं तो बार बार आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, और अगर आप मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं तो अपनी डाइट को थोड़ा सुधारना पड़ता है। हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करता है जी। हम आपको बता दें भाई, जो भी आप खाते पीते हो वो जब आपके पाचन तंत्र में जाता है तो जिसको तोड़ फोड़ करके उसके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल निकाल के बॉडी सिर्फ आपको एनर्जी नहीं देती है, वो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखती है भाई। अब चाहे लड़कों का टेस्टोस्टेरोन हो या फिर लड़कियों का एजेस्ट्रॉन, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनका पाचन तंत्र ठीक रहे। अब आप ही सोचिए, अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका पाचन तंत्र उसे ठीक से तोड़ नहीं पा रहा है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, आपको बार बार ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो इसमें सिर्फ आपके पाचन तंत्र ही ख़राब नहीं होते, आपकी सिर्फ आंतों की सेहत ख़राब नहीं होती, ख़राब होता है साथ साथ इम्यूनिटी, ख़राब होता है साथ साथ आपकी नींद, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, प्लस आपका हार्मोन हेल्थ जिसकी वजह से आपकी मंथली साइकिल जो एकदम मंथली साइकिल जो बराबर चलते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। फिर आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आप पूरे दिन या तो टेंशन में रहते हैं, या तो गुस्से में रहते हैं, या फिर परेशान रहते हैं, और हमें लगता है कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी एक जगह पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका फोकस नहीं लग रहा है तो आपको एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हो, आप क्या खा पी रहे हो। एक अच्छा खाना आपका दिमाग को सही जगह पर काम करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन अगर आप वही कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर, चाय, कॉफ़ी, कैफीन, सोडा इन सब में पड़े रहते हैं तो आपका दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता, आपको हमेशा आलस आता रहता है, हमेशा नींद आती रहती है, आप हर वक्त सोचते हैं कि क्या करें, ना कुछ काम करने का मन करता है, ना बेड से उठने का मन करता है, क्योंकि आपको एनर्जी फील नहीं होती। वहीं पर अगर आप सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, अगर आप ढंग से पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चलता है कि आपका शरीर ठीक तरह से काम कर रहा है। आप सुबह वॉशरूम जाते हैं तो आपका पेट हल्का महसूस होता है, आप अच्छे तरीके से फ्रेश हो पाते हैं, आपका दिन अच्छा जाता है, आपका मूड एकदम फ्रेश रहता है। तो भाई ये वो कारण होते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र जुड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके दिमाग को, आपके मूड को प्रभावित करता है। मैंने पहले भी कहा था कि आपका पेट और आपका दिमाग आपस में भाई बहन की तरह होते हैं। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है तो उसका असर आपके पेट पर पड़ता है, और अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं चलता है तो उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। और हमारी आंतों में जो करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी आंतों की सेहत को बनाए रखने का काम करते हैं, अगर वो गुड बैक्टीरिया है तब तो आपके लिए सब अच्छा अच्छा होने वाला है क्योंकि उनका नाम ही गुड बैक्टीरिया है। बट अगर कहीं बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो फिर नुकसान होती है आपकी आंतों को। हम आपको बता दें, जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो आपका पाचन कमज़ोर होने लगता है, और पाचन जब कमज़ोर होता है तो फिर आती है दिक्कत, वही बार बार पेट फूलना और गैस बनना। अगर आप थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो आपका पेट फूलने लग जाता है, और अगर आप थोड़ा सा खाना खाते ही आपको लगता है कि आपका पेट फूल रहा है तो ये साफ संकेत होता है इस बात का कि आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है। अब खाना ठीक से नहीं पच रहा है तो सुबह उठ के जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज की बीमारी हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन ख़राब जाता है, क्योंकि आपका पूरा दिन इसी ख्याल में निकल जाता है यार कि क्या करूं, इस पेट में तो भारीपन है, पेट ठीक नहीं चल रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, और क्या कुछ करना चाहिए। तो भाई ये पहला साफ संकेत होता है कि आपके पेट यानी आपका जो पाचन तंत्र है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमार हो चुका है और इसको ज़रूरत है ठीक करने की। कब्ज़ या दस्त की समस्या बार बार लगी रहना, अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है या आपको लगातार दस्त आते हैं, मल त्याग करने के समय आप मल त्याग का समय जो होता है वो नियमित नहीं होता, अनियमित होता है, और आपको लगता है कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, यानी कि आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ों की कमी है जो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर कहें तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है और आपके पाचन तंत्र के अंदर आपकी जो आंतें हैं उनके अंदर बैठे हुए बैक्टीरिया धीरे धीरे इम्बैलेंस हो रहे हैं, गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो रहे हैं और बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जा रही है, और बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं आपके बहुत ज़्यादा तला भुना, बाहर का मिर्च मसाला, खट्टा मीठा, चटपटा, इस तरह के खाना खाने पर। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसमें ब्रेड आता है, ब्रेड से बनी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको परेशान करती हैं। अब आपने बचपन में सुना होगा आपकी मम्मियाँ कहती हैं इतनी मैगी मत खाया करो, पेट में जाकर मैदा चिपक जाएगा, और आपको लगता है मैदा के चिपक जाएगा क्यों, मेरा पेट ऐसा है क्या, चुविंगम है क्या, ये जो चिपक जाएगा या फेविकोल है, तो भाई आपके पेट में मैदा चिपके या ना चिपके, लेकिन हाल फिलहाल जो मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, जो आप पैकेट में लेकर आ रहे हैं, सोचते हैं कि हम ब्राउन ब्रेड खाएंगे, जो कि हालांकि कई बार ऐसा होता है ब्राउन ब्रेड जो आप लेकर आते हैं एक बजट फ्रेंडली या सस्ते दामों पर, उसमें सिर्फ ब्राउन कलर पड़ा होता है, वो गेहूँ का नहीं बना होता, और आप सोचते हैं इसको खाकर हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ब्रेड खाते हैं वैसे ही आपको फिर से ये समस्या बढ़ जाती है और आपको लगता है यार मैंने तो हल्का सा ही खाया था। इसके पीछे की वजह ये है कि आपके जो बैड बैक्टीरिया है आपका ये ब्रेड उन्हें फीड कर रहा है, यानी कि उन्हें खाना दे रहा है, उन्हें एनर्जी दे रहा है, ना कि आपके गुड बैक्टीरिया को, यानी कि वो बैक्टीरिया जो आपके सेहत को बनाते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं और उनके कमज़ोर पड़ने के कारण ही आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता जाता है, यानी कि आपके पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, वो बीमार हो जाता है। पेट में दर्द होना, ऐंठन और मरोड़, हल्का या तेज़ पेट में दर्द होना, खासकर जब आप खाना खाते हैं तो इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके आंतों में सूजन है या आपके गट बैक्टीरिया असंतुलित हो रहे हैं। अगर आपने दाल चावल भी खाया है और आपके खाते ही पेट में दर्द होने लगा, ऐंठन या मरोड़ आपको महसूस होती है जो कि आमतौर पर नहीं होनी चाहिए, अगर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, यानी कि बार बार होता है, बहुत जल्दी जल्दी अगर आप इसे ये दर्द महसूस करते हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपकी आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन है, यानी कि सूजन आ चुकी है और सूजन को ठीक भी किया जाता है। और सूजन की वजह से जो लोग मोटे नहीं भी होते हैं उनका पेट भी लगता है जैसे 4 महीने के प्रेग्नेंट चुके हैं। और हम लोग मजाक में बोल भी देते हैं कि भैया का हो, तुम्हारा पेट तो बहुत फूला जा रहा है, कितने महीने का चल रहा है। और ये मजाक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपका पेट खराब चल रहा है, यानी कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपके गट बैक्टीरिया संतुलित नहीं है। बार बार एसिडिटी बनना, सीने में जलन होना, अगर आपको बार बार एसिडिटी बनती है और आपकी आदत पड़ गई है कि आप महीने की 30 में से 20 दिन इनो या फिर ऐसे कोई एंटासिड पीकर आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका पेट अंदर से कमज़ोर हो चुका है, आपको बार बार एसिडिटी बन रही है, बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं या सीने में जलन हो रही है। तो ये सब कमज़ोर पाचन तंत्र की चेतावनी होती है। खाना खाने के बाद भारीपन होना, खाना खाने के बाद सुस्ती आना, नींद का लगना, भारीपन महसूस होना, ये बताता है कि शरीर को खाना पचाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और इसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई आप हमेशा या तो थकान महसूस करते हैं या तो फिर सोते रहते हैं और आपके पेट में आपको दर्द, मरोड़, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपके पास है या फिर आपको देखने को मिल रहा है कि इस महीने ही मुझे 4 बार कॉन्स्टिपेशन महसूस करना पड़ा है, इस महीने ही मुझे इतनी बार डायरिया हो चुका है, या बार बार हफ्तों के लिए मुझे ब्लोटिंग या गैस की समस्या हो रही है, जैसे ही खाना खाता हूँ वैसे ही पेट फूल के गुब्बारा जैसा हो जाता है, तो चलिए आज मेरे साथ और आज हम जानेंगे कि किस तरह से अपने सेंसिटिव गट को ट्रीट कर सकते हैं, प्लस सेंसिटिव गट होने पर हम क्या क्या चीज़ों को इग्नोर यानी कि साइड में रख सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, किसकी वजह से आपके आंतों के बैक्टीरिया इम्बैलेंस होते हैं यानी कि असंतुलित होते हैं, और कौन है वो जो आपके पेट के लिए असल दुश्मन साबित हो रहा है। भाई यूँ तो हर एक चीज़ अगर आप बैलेंस में लेते हैं तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आप कोई भी चीज़ ठीक से नहीं लेते हैं, उसको इम्बैलेंस तरीके से अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो जी हाँ ये वही चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, कहते हैं बात सेंसिटिव गट की, यानी कि आपके संवेदनशील पेट के बारे में थोड़ी सी और बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगनी अपनी आचरणी के साथ, स्टे ट्यून्ड।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
6: अरे सुना
7: क्या,
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ,
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
8: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
2: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
3: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
2: जी,
3: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीबी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
3: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
2: जी,
3: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
2: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
3: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
2: जी,
3: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत

0: जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
1: जी।
0: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
1: जी,
0: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
1: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
0: जी दीदी
1: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीवी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
0: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
1: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
6: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानस्थली की खूबसूरत सी पहल, जिसमें बात होती है आपकी अपनी सेहत की। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत को बरकरार रखने वाले उस चीज़ की जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। जी हाँ, वही जो आपके फेफड़ों के नीचे है, जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल हर कोई ना लाइफ को या तो बहुत सीरियस ले रहा है या तो फिर ले ही नहीं रहा है। लोगों को लगता है यार, जब भी आप उन्हें डाइट के बारे में बताने जाओ तो उन्हें बस एक ही सवाल आता है और एक ही जवाब भी आता है कि एक दिन तो मरना ही है ना, तो मरना है तो ऐसे ही मर जाएंगे, मतलब खा पी के मरना चाहिए, ऐसे थोड़ी मरते हैं। मोटापे को हम कहते हैं कि भैया खाते पीते घर का लड़का है या लड़की है। जो पतला आता है उसे कहते हैं क्या भैया फूल सूंघते हो, तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या घर में खाने की कमी है। हम इस तरह के ताने मारते हैं, बट हम कभी ये नोटिस ही नहीं करते कि जो चीज़ें आपको मजाक लग रही हैं ये किसी की हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो

0: इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पेट के अंदर इन्फ्लामेशन है, यानी कि सूजन है, आपकी पेट की जो आते हैं, आपकी जो आंतों की लाइनिंग है वो गड़बड़ हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, आपके पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया असंतुलित हो चुके हैं जिसकी वजह से आपको गैस बन रही है, आपको इन्फ्लामेशन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, और आपको लगता है ये सब तो नॉर्मल है क्योंकि आपको आए दिन इसका सामना करना पड़ जाता है, आपको लगता है भारीपन होना या आपके पेट का बहुत टाइट होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं है, ये आपके उन लक्षणों को बताती हैं जो आपके इंटरनल स्टमक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, यानी कि आपके बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होना, आपके अंदर इन्फ्लामेशन होना, फैटी लीवर होना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते इनकी दवाई करें, अपने आहार को संतुलित करें और अपने सेहत को बरकरार रखें। तो भाई अगर आपका पेट खराब होता है तो हमने आपको काफ़ी सारे लक्षण तो बता दिए कि आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको आए दिन देखने को मिल सकती हैं जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी पेट की आते हैं यानी कि आपकी पाचन तंत्र में कुछ जुड़ी समस्या है तो किस तरह से आपकी सेहत को ख़राब कर रही है। हम आपको बता दें भाई कि चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज़्यादा रहता है, आपके बाल, आपकी स्किन और आपकी इम्यूनिटी ये भी गड़बड़ हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसका सीधा असर ये भी हो सकता है कि आपके पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इम्बैलेंस है, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है, या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। और अगर आप हर एक चीज़ ले रहे हैं और उसके बाद भी झड़ रहे हैं तो आप डर्मा से मिल सकते हैं, यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। प्लस हम आपको बता दें आपका वज़न और मेटाबॉलिज्म से जुड़े संकेत भी होते हैं अगर आपके पेट में कुछ दिक्कत चल रही है। आपके पेट में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म धीमे हो जाता है। मेटाबॉलिज्म वो होता है जो आपके वज़न को मेंटेन करके रखता है। जी हाँ, जब आप दिन में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं उन सारी चीज़ों में कैलोरीज़ होती हैं, जैसे कि एक बर्गर के अंदर 350 कैलोरीज़ या फिर 450 कैलोरीज़, एक समोसे के अंदर 330 कैलोरीज़, और इन कैलोरीज़ को बर्न करना होता है। अगर आप अपनी डेली कैलोरीज़ की बात करेंगे तो आपकी डेली कैलोरीज़ एक आम इंसान की 1800 से 2000 मानी जाती है, यानी कि आपको इतनी कैलोरीज पर डे ज़रूरी होती हैं, या आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है। वहीं पर जब आपको वज़न बढ़ाना होता है तो आप इन कैलोरीज़ को बढ़ाते हैं, और आपको वज़न कम करना होता है तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। और कैलोरी निकालने का सबसे अच्छा तरीका बस ये है कि आपका वज़न जो हो, सुबह खाली पेट आप अपने आप को वेट करें, आप जब अपना वज़न कर लें तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद 1800, 1750, 2000, 2010 जो भी आता है वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आपके सामने है। अब आपको बढ़ानी है, कम करनी है, ये आप एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो भाई आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है जिसकी वजह से आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लस आपका मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, अगर आपको मीठा खाने की तलब बहुत ज़्यादा लगती है तो ये आपके बैड बैक्टीरिया के बढ़ने का संकेत हो सकता है, यानी कि आपके पाचन तंत्र में उल्टा चल रहा है कुछ, और ये इसका संकेत है कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, क्योंकि जो शुगर होता है वो बैड बैक्टीरिया को फीड करता है, यानी कि एनर्जी देता है। जिस तरह से आप एक पेड़ पौधे को बड़ा करने के लिए उसे खाद देती हैं और खाद उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे ही खाद का काम करता है जब भी आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, और आप मीठा खाते हैं तो आपका बैड बैक्टीरिया को पावर मिलती है, फिर वो आपके गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और आपके पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं जब भी बात आती है पाचन तंत्र से जुड़ी। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ घर पर ठीक हो ऐसा थोड़ी होता है, कभी कभार डॉक्टर की सलाह लेना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको ये सारे लक्षण हफ्ते में 2 से 3 हफ्तों तक ज़्यादातर दिखाई देने लगे, यानी कि महीने में 3 हफ्ते तक गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पेट दर्द, ऐठन, मरोड़, कमज़ोरी, इन सब से परेशान हैं, तो आपको अपनी दवाई बंद करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि भारत में कई लोग IBS के भी शिकार होते हैं। IBS के लक्षण होते हैं पेट में दर्द होना, गैस, दस्त या कब्ज़, और कई लोग होते हैं SIBO के, जिसमें ज़्यादातर ज़्यादा गैस बनना और पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो आप डॉक्टर्स के पास जाकर चेक करा सकते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहीं आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर आपको पेट में कुछ दिक्कत है, आपके पाचन तंत्र कमज़ोर है, आपका बैक्टीरिया कमज़ोर है, या फिर आपको IBS है, SIBO है। इसके बाद आता है आपका वजन कम होना। अगर अचानक से वजन भी बहुत तेजी से कम हो रहा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर आप सुबह सुबह जाते हैं वॉशरूम और आपके मल में आपको खून नज़र आता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। प्लस अगर आपको ऐसा कहीं भी नज़र आता है तो डॉक्टर्स की सलाह तुरंत लें, तुरंत उनसे बात करें। पेट में दर्द बढ़ता जाए तो भी आप डॉक्टर से बात करें। पाचन तंत्र की जांच कैसे होती है हम आपको बता दें, डॉक्टर साहब को सलाह दे सकते हैं कि गट हेल्थ चेकअप करा लें, स्टूल टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें या ब्रेथ टेस्ट करा लें, क्योंकि आपकी मुंह से आने वाले दुर्गंध से भी पता चल सकता है कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। अब बात करते हैं खान पान में सुधार कैसे करना है। तो खान पान में सुधार के लिए फाइबर युक्त भोजन लेना है, जी हाँ, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर आपको चिया सीड्स, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, प्लस गाजर, लौकी और फलों में पपीता, नाशपाती और गुआवा यानी कि अमरूद, इन सारे फलों में आपको फाइबर की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जिसमें पपीता, अमरूद और नाशपाती में सबसे अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। प्लस आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। सब्जियां खाने की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। एक वयस्क इंसान को, एक वयस्क महिला को 25 ग्राम फाइबर प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगर आप इससे कम खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है, वो ठीक नहीं होता, प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन नज़र आता है। तो फाइबर युक्त भोजन खाइए, और अगर फाइबर आपका 25 ग्राम कम्प्लीट नहीं हो रहा है तो आप एक चम्मच इसबगोल भी यानी कि सिलियम हस्क भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जिसमें अराउंड 5-7 ग्राम फाइबर होता है जो आपके दिन का 16-20% कंप्लीट करता है। तो फाइबर युक्त भोजन लेना, दही व छाछ का लेना, क्योंकि दही और छाछ में होते हैं प्रोबायोटिक्स, और प्रोबायोटिक्स आपके पेट के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया को करते हैं फीट और उन्हें करते हैं मजबूत। और प्रोबायोटिक्स के साथ लेने पड़ेंगे आपको प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स आपको केला, गार्लिक जैसी चीज़ों में मिल जाता है। प्रीबायोटिक्स आपके प्रोबायोटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और प्रोबायोटिक्स आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया आपके पेट को ठीक रखता है, दुरुस्त रखता है। फल और सब्जियाँ, प्लस अगर आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है पर्याप्त मात्रा में पानी का पीना। अगर आप फाइबर ले रहे हो 25 ग्राम और पानी पी रहे हो सिर्फ 2 ग्लास, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपकी कब्ज की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो कोशिश करें, अगर आप कभी भी सब्जी, इसबगोल या ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके दौरान पानी की मात्रा भी बढ़ा दें। इसबगोल अगर आप रात में लेते हैं तो कम से कम 2-3 ग्लास पानी पीने के बाद ही सोएं, ताकि सुबह जब आप उठें तो आपको गैस या अपच महसूस ना हो, आपको दर्द ना हो, आपको कब्ज महसूस ना हो, आपका पेट साफ हो। और मैं यकीनन कह सकती हूँ कि ये सब घोल नेचुरल सोर्स है यानी कि नेचर से आया हुआ है, तो ना तो आपको इसकी आदत लगती है, ना ये आपको कभी परेशान करता है। हाँ, अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, अगर आपको लूज मोशन भी है तो भी आप ये सब घोल ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसी के बाद आते हैं कि जीवन शैली में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। जीवन शैली में आप सुधार करने के लिए तनाव कम करें, रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज करें और पर्याप्त मात्रा में नींद को लें। किन आदतों से बचना है, तो आदतों की अगर हम बात करें तो जंक फूड आपको बंद करना है या फिर कम करना है। अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं कम्प्लीटली तो उसकी मात्रा को सीमित कर दीजिए, यानी कि एक पोषण कंट्रोल करना सीख लीजिए। पोषण कंट्रोल करने से आप अपने पसंदीदा खाने के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी बरकरार रखते हैं। साथ ही है, ज़्यादा शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें और बार बार पेन किलर लेने से बचें। जी हाँ, अगर आप हर दिन पेन किलर या फिर एंटासिड लेते हैं तो ये आपके पेट के यानी आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो जंक फूड, ज़्यादा शराब, धूम्रपान और बार बार पेन किलर लेने से आपको बचना है। अक्सर धीरे ये सारे लक्षण, कमज़ोर पाचन के जो लक्षण होते हैं, अक्सर धीरे धीरे सामने आते हैं, लेकिन अगर आप समय रहते ध्यान नहीं देते हैं तो ये बड़ी बीमारी का भी रूप ले लेते हैं। अपने शरीर में आए संकेतों को समझें, सही खान पान अपनाएं, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, प्लस अपनी दिनचर्या को सुधारते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज ज़रूर करें, यानी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए, अच्छे पाचन तंत्र के लिए, प्लस अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मूड के लिए, एनर्जी के लिए और आपके पाचन तंत्र के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। एंड रिदम जी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें सुनते हैं मालवीय नगर से। मैम नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे आपको भी। और हमने आपको अपना नंबर भेज दिया है, है 6393316429। आप इस पे कॉल करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगनी अपनी आशुनदी के साथ। आपका अगला कार्यक्रम है सेहत या संग, जिसमें अगेन आपके लिए आपकी सेहत पर बात करने आ रही हैं सेहत या भैया और टिकिन भाभी। तो सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: नमस्कार मेरे सेहतमंद साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे आकांक्षा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके आरजे अदनान। हम फिर हाजिर हैं एक नए जोश नई उमंग और नई जानकारी के साथ आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, क्योंकि जब सेहत होगी फिट तो खर्च जाएंगे मिट।
0: बिल्कुल सही कहा, तो चलिए खोलते हैं सेहत के वो राज जो न सिर्फ बीमारियों से बचाएंगे बल्कि आपकी जेब को भी देंगे चैन की सांस। सेहतिया सिंह और टीकन भाभी के साथ।
2: अरे अरे अरे अरे, एक मिनट, मैं तो बताना ही भूल गई कि टीकन भाभी और सेहतिया भैया तो आज लाभांतरी को लेकर टीका लगवाने गए हैं पास के PHC में।
3: आज शायद वो हमसे बात करने स्टूडियो नहीं आ पाएंगे।
0: अरे तो कोई बात नहीं, आज हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, पर उससे पहले मैं सुनाना चाहूंगा आपको एक कहानी। एक युवा दंपत्ति की कहानी जो अपनी नन्ही सी बिटिया के साथ एक गांव में रहते थे। क्योंकि खुशहाल जिंदगी थी उनकी, बड़े ही प्यार से रखते थे वो अपनी उस बच्ची को। हर सुबह माँ बिटिया के बालों में तेल लगाती, चोटी बनाती और फिर पिता खुद अपने हाथों से उस बच्ची को नाश्ता खिलाते। पर एक दिन बिटिया को तेज बुखार हो गया। पहले तो दंपत्ति ने सोचा शायद ये मौसम का असर होगा, लेकिन अगले ही दिन बच्चे की सांसें उखड़ने लगी। गांव के डॉक्टर ने जांच की और बताया निमोनिया है। फिर पूछा कि क्या आपने टीका लगवाया था? माँ और पिता चुप।
2: बस वही चुप्पी बन गई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, क्योंकि कई बार जो बीमारी हमें दिखती नहीं वही सबसे घातक साबित होती है और उनकी ये चुप्पी उनके बच्चे की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बन गई।
0: बिल्कुल, और कई लोग तो कहते हैं कि टीकाकरण की आखिर क्या जरूरत होती है, पर सच तो ये है कि कई बीमारियां चुपचाप आ जाती है और वो बीमारियां होती है जानलेवा,
2: जैसे कि मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो। मीजल्स से निमोनिया और दस्त जैसी जटिलताएं हो सकती हैं और पोलियो से जीवन भर की लाचारी। हेपेटाइटिस बी से लीवर फेल हो सकता है। रुबेला गर्भवती महिलाओं के बच्चे में जन्मजात दोष ला सकती है। रोटा वायरस बच्चों में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बनता है।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम 12 खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीके देता है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, टीबी, हेपेटाइटिस बी, HIV, निमोनिया, रोटा वायरस और जैपनी इंसेफेलाइटिस।
2: और याद रखिए, 5 साल 7 बार पहला टीका जन्म के समय, फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 1.5 साल और 5 साल पर।
0: बिल्कुल, और अगर इनमें से एक भी टीका छूट गया तो सुरक्षा की दीवार कमजोर पड़ जाती है और बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है।
2: पर भैया, अब भी सवाल तो कई हैं। अगर कोई टीका छूट जाए तो? अगर बच्चा उस दिन बीमार हो, क्या प्राइवेट में टीका लगवाना बेहतर है? और वो जो कहते हैं कि सरकारी सुई में दर्द ज्यादा होता है, उसका क्या? और क्या टीकाकरण के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल हैं आपके, और जिसका जवाब भी जरूरी है। इसी सोच के साथ मैं और आरजे आकांक्षा कल पहुंचे थे एक खास वर्कशॉप में, और हमारे सारे सवालों का जवाब देने वहां कई एक्सपर्ट्स मौजूद थे। तो पेश है स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर अजय गुप्ता, राज्य टीकाकरण अधिकारी, डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण NHM, डॉक्टर दीप ठक्कर, उप निदेशक UPTSU, डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, WHO NPSP, डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज और डॉक्टर आशीष मौर्य, JSI। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो अब वही बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं, कानों को खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात है आपके बच्चे के सेहत की।
4: 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा की बात करें तो आप जानिए इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसमें ये क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि हम लाखों करोड़ों बच्चों की जान इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हम बचा पाते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो जितनी हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, वैक्सीन लगाने से हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के अगेंस्ट में काम करते हैं और इनसे हम जान बचाते हैं बच्चों की। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जितनी भी हमारी बच्चों की उम्र है वो लंबी होती है और साथ में एक हेल्दियर लाइफ जीते हैं, बीच बीच में बीमार नहीं पड़ते हैं, जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं इनकी वजह से। अगर विजन की बात करें कि किस तरह से हम इन्वेशन एजेंडे की विजन को देखते हैं, तो वर्ल्ड का कोई भी आदमी किसी भी एज का हो, उसको कहीं भी किसी भी प्लेस पे इसकी वैक्सीन से पूरी तरह से उसको लाभ होना चाहिए, जिससे वो एक अच्छी गुड और हेल्दी लाइफ जी पाए। इम्पैक्ट यह होता है कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इससे डिक्रीज करती है। मॉर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर कम हो जाता है, और साथ ही मॉर्बिडिटी का मतलब कि बीमारी से होने वाली चीज़ों से जो बचाव है या फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे वो होता है, उससे बेनिफिट मिलता है हमको, उससे हम बचा पाते हैं। साथ में ये भी हमारा एक इम्पैक्ट आता है कि कोई भी बंदा हमारा, कोई भी बच्चा कहीं से भी छूट ना रहा हो कोई भी वैक्सीन लगवाने से। इस बात के लिए हम पूरी तरह से एसेस देते हैं। कोई जेंडर इक्विटी का मामला होता है, कभी हम बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं, और ओवरऑल इंश्योर हमको यही करना है कि सभी के लिए एक अच्छी हेल्दी वेल बींग लाइफ कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो तो उसको मिलना चाहिए। इंडिया के अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो UIP बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो गोल है कि मोर देन 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। दूसरा गोल हमारा होता है कि अभी रिसेंटली हम लोग काम कर रहे हैं कि मीजल्स रूबेला जो एक बीमारी, जैसे आप जानते ही होंगे कि स्मॉल पॉक्स हम लोग इरिगेट कर चुके हैं बहुत पहले ही, MR इसी तरह से मीजल्स रूबेला भी एक खतरनाक बीमारी है जिसके कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बच्चों में होते हैं, तो आप रिसेंटली देख लेंगे बहुत ही कम इस तरह की बीमारियां आती हैं। इनको एलिमिनेशन की बात करते हैं 2026 तक इनकी बात कर रहे हैं। साथ में जो अभी 2013 में हम पोलियो फ्री हो चुके हैं पूरे मतलब अपने इंडिया से, बट अभी भी देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मुल्क हैं, उनके अंदर भी अभी पोलियो के केसेस पाए जा रहे हैं। तो उस चीज़ की स्टेटस अपने इंडिया के अंदर जो पोलियो फ्री स्टेटस, उसको मेंटेन करना। रिसेंटली पहले आपने देखा होगा बचपन में कई बार हम लोग देखते थे कि कुछ एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बच्चे अमूमन वो धनुष टंकार की बीमारी होती जिसको न्यूनेटल टेटनस कहते हैं, उनसे काफ़ी कुछ बच्चे हमारे काल कवलित असमय हो जाते थे। तो इस तरह की जो मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस है उनको एलिमिनेशन की जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक मिनिमम लेवल पे ही रखना इसकी वैक्सीनेशन से। उसके अलावा जो AFI सर्विलेंस है उसको भी हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। एक ऑब्जेक्टिव UIP का ये भी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी एक सपोर्टिव सुपरविजन होनी चाहिए, सो देट कि ये दिखाई पड़े कि जो हमारी NM है, जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, अच्छी तरीके से वैक्सीन लगा रहे हैं, प्रॉपरली लगा रहे हैं। अगर कहीं कुछ कमियां पाई जा रही हैं तो उनको हम ऑन द स्पॉट उनको ट्रेन कर पाएं, अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा है तो हम उनको रीट्रेन कर पाएं। और जो हमारा UIP प्रोग्राम है, अब तक आप लोगों ने देखा होगा अब तो हमारे मोबाइल्स में सारी उसकी माइक्रो प्लानिंग होती है, उसके अलावा डिजिटलाइज कर चुके हैं हम लोग सारे के सारे अपने उसको, और अगर ज़रूरत है फील्ड के अंदर या कहीं भी तो केस बेस्ड स्टडी के बाद या फिर डिजीज बर्डन को देखते हुए कोई न्यूअर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करनी है इस पे भी, ये भी एक हमारा एम्स का ऑब्जेक्टिव है। रिसेंटली मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली यूआईपी के अंतर्गत हम लोग एचपीवी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है टाइफाइड की भी वैक्सीन हमारी यूआईपी में फ्री हमारी जनता के लिए अवेलेबल हो।
5: सो अभी जो बात हो रही थी टीकाकरण कैसे हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है और कितना सुरक्षित है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट से कहना चाहेंगे कि जो भी टीकाकरण हम बच्चों के लिए या गर्भवती माताओं के लिए कर रहे हैं ये पूर्णतः सुरक्षित है और ये उनके स्वास्थ्य के वर्धन के लिए, यानी कि उनको जीवित बनाए रखने के लिए, उनको किसी बीमारी से बचाए रखने के लिए, उनको अच्छा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। रही बात वैक्सीन्स कैसी हैं, तो वैक्सीन्स की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं किया जा रहा है। वो मैन्युफैक्चरर से लेके बेनिफिशरी तक, चाहे वो शिपमेंट हो रहा हो बड़े लेवल पर या फाइनली ब्लॉक लेवल से किसी आउटरीच सेशन साइट पर शिपमेंट हो रहा हो, इन सभी पर वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है, जो तापमान है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए इवन नेटवर्क भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और इस नेटवर्क से हम कहीं पर भी कोल्ड चेन के ब्रेक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ, यह स्टोरेज कहाँ कितना हो रहा है ये भी हमें पता है। तो इस तरह से हमारी वैक्सीन्स बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही किफायती, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध है। अब मैं बात करूंगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, जिनसे कि हम टीका लगा रहे हैं वो क्या तालिका है और किन किन बीमारियों से हम बचाते हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ का पता चलते ही पहला टीका लगवा लेती है और 1 महीने बाद दूसरा टीका लगवा लेती है, तो गर्भावस्था में टिटनेस और डिप्थीरिया, इन दोनों बच्चों दोनों बीमारियों से वो स्वयं भी सुरक्षित रहती है, और उसके बाद उसका जो बच्चा है वो करीबन 6 सप्ताह का समय तक सुरक्षित रहता है। 6 सप्ताह के बाद हमारा वैक्सीनेशन बच्चे के लिए स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला एक बार प्रेगनेंसी में पूरा टीका करवा लेती है और विद इन स्पैन ऑफ 3 ईयर्स दोबारा उसको प्रसव होना है, तो हम टीडी बूस्टर देते हैं, तब हमें 2 बार टीके लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र 1 टीका लगाना पर्याप्त है, और ये गर्भ का पता चलते ही लग जाना चाहिए, और इस टीके को हम बूस्टर का नाम देंगे, और इस तरह से उसका टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है। बच्चों में अगर टीकाकरण की बात करें तो बच्चों में एट बर्थ जो हमारी इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हैं, जो अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, दोनों ही स्थानों पर BCG जो टीबी का टीका है इसकी पहली डोज, हेपेटाइटिस बी की 0 डोज, यानी कि बिल्कुल चूंकि जन्म के समय ही लग रही है, और इसको शून्य इसलिए भी कहा जाता है कि ये 24 घंटे के अंदर ही लग सकती है। तो अगर बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में और वहीं पर उसको 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की 0 डोज दे दी जाए, तो इसका फायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता माँ को हेपेटाइटिस बी पहले से भी बीमारी है तो बच्चे में ये ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी तरह से तीसरी जो ओपीवी की डोज है वो हम देते हैं, और ये सारे टीके बच्चे के डिस्चार्ज होने से पहले, मां के डिस्चार्ज होने से पहले अस्पताल में ही लग जाना चाहिए, और बेहतर है कि लेबर रूम में ही या पीएनसी वार्ड में पहले 24 घंटे में ही ये टीके लग जाए। अगर किसी भी कारण से ये टीके वहां पर नहीं लगे हैं, देन वी रिकमेंड की BCG का टीका तो आप साल भर तक लगवा सकते हैं, BOP भी 15 दिन तक लग सकती है, अन्यथा फिर जो OPV हमारी टीकाकरण में लगती है कार्यक्रम में वो लगेगी, लेकिन हेपेटाइटिस बी का टीका फिर आप नहीं लगवा सकते। जिन बच्चों को जो घर में पैदा हुए हैं या ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पर टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो हम उन बच्चों को सीधे 6 सप्ताह की आयु पर 5 टीके देते हैं, और 5 टीकों में OPV जो पोलियो वैक्सीन है, पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV जिस पर बात की थी अभी डॉक्टर अजय ने उसकी फर्स्ट डोज, रोटा वायरस वैक्सीन की डोज और PCV, ये 5 टीके हम 6 सप्ताह पर देते हैं। 6 सप्ताह के बाद 4 सप्ताह के अंतराल पे, यानी कि 10 सप्ताह पर हम 3 टीके देते हैं, BOPV2, Penta2, RVV2, और 14 सप्ताह पर फिर वही 5 टीके कि नेक्स्ट डोज मिल जाती है जो 6 सप्ताह पे लगाए गए थे, यानी कि OPV, Penta, FIPV, RVV, PCV। 9 से 12 महीने पर हम मीजल्स और रूबेला का एक टीका देते हैं, विटामिन ए की खुराक पिलाते हैं। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो प्रदेश के ईस्टर्न यूपी में काफी प्रभाव रखता है और करीबन 42 जिलों में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो वहां पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की फर्स्ट डोज देते हैं। पीसीवी का बूस्टर भी हम देते हैं, जिस डोज को हम फर्स्ट और सेकेंड डोज को 6 और 14 सप्ताह पर दे चुके हैं, उसका बूस्टर हम पीसीवी का देते हैं। और इसी तरह से FIPV जो इंफेक्शन IPV है उसकी भी थर्ड डोज देते हैं। इस तरह से 9 से 12 महीने पर हम टीका देते हैं, और अगर बर्थ डोज से लेके 9 से 12 महीने तक के ये सारे टीके किसी बच्चे को मिल जाए तो इस बच्चे को हम पूर्ण प्रतिरक्षित भी कहते हैं, यानी कि एक साल से कम उम्र के जितने भी टीके लगने हैं यदि वो सारे टीके इस बच्चे को मिल गए हैं तो हम बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित फुल्ली इम्यूनाइज कहते हैं। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, 16 से 24 महीने पर बूस्टर्स की नेक्स्ट डोज यानी कि DPT का बूस्टर, BOPV का बूस्टर, मीजल्स रूबेला की सेकेंड डोज, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की सेकेंड डोज और विटामिन ए, ये सभी हमें देना होता है। और इसी तरह से 5 से 6 साल पर हम DPT का सेकेंड बूस्टर देते हैं, उसको कवर करता है। यानी कि अगर 5 साल की उम्र तक 7 कॉन्टैक्ट्स में और हर कॉन्टैक्ट में ये सारे टीके लग जाएं तो बच्चा काफी हद तक सुरक्षित है, और ये जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं ये या तो बिल्कुल नहीं होंगी, और अगर हो भी जाएंगी तो उनका जो खतरा है, जो उनका उनकी धार है, उनकी जो पैनापन है जिसकी वजह से बच्चे की मौत तक हो सकती है या बच्चे को हॉस्पिटलाइज रहने की नौबत आएगी, वो सब कम हो जाएगा। फिर हम 10 और 16 साल पर TD10 और TD16 देते हैं। ये सभी लड़के और लड़कियों को जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे 10 साल के और 16 साल के, हम उनको दे रहे हैं। मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अगली 24 तारीख से यानी कि 24 अप्रैल से जब इम्यूनाइजेशन वीक भी शुरू हो रहा है, 10 मई तक हम लोग पूरे प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले 10 साल और 16 साल के जो बच्चे हैं जो कि क्लास 5 और 10 में आमतौर से होते हैं, उन सभी बच्चों को TD10 और TD16 का टीका लगाने जा रहे हैं। ये पूरी कैंपेन पूरे प्रदेश में होगी कि हम केवल अस्पतालों में ही टीका नहीं लगा रहे हैं, लगभग 92% जो टीके हैं, जो सत्र हैं, वो हमारे VHND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज में हो रहे हैं, जो आउटरीच सत्र हैं। और शहरों में भी यही है, शहरों में भी हम अपने PHCs, CHCs और जिला अस्पताल के अलावा कई घरों में, कई मोहल्लों में कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, सेशन साइट्स हैं, वहां पर टीकाकरण कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 92% तो आउटरीच के सत्र होते हैं, लगभग 5.4% सेशंस जो हैं वो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, मेडिकल कॉलेज या और भी जो सब सेंटर्स वगैरह हैं, हम वहां पर करते हैं। 2.5% अन्य स्थान हैं और 0.5% प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो योगदान है टीकाकरण में वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो संस्थागत प्रसव शहरों में हो रहे हैं या जो एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं उनके टीके वहां पर लग रहे हैं, तो हम उनसे भी संपर्क में रहते हैं और जो भी उनकी रिपोर्टें उसको भी शामिल करते हैं, टीका लगाते हैं। तो हम अभी WHO के आंकड़े में आपको दिखा रहा था कि 24-25 में लगभग 83% बच्चे तो फुल्ली इम्यूनाइज थे, लेकिन रिमेनिंग जो 17-18% बच्चे हैं वो हमारे पूरी तरह से प्रतिशत नहीं है। उनमें से कुछ तो लगभग 1-2% ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई टीका लगवाया ही नहीं। हो सकता है वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन के हों, हो सकता है वो विरोधी परिवार हों, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई टीका नहीं लगवाया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरुआती डोज लेने के बाद, चाहे वो बर्थ डोज मिली हो, चाहे वो 6 सप्ताह पर मिली हो, उसके बाद उनका टीकाकरण कंटिन्यू नहीं हो पाया और दे आर पार्शली इम्यूनाइज्ड, वो अधूरा टीकाकरण है। और ये अधूरा टीकाकरण या जिन बच्चों ने बिल्कुल भी टीकाकरण नहीं लिया है, जब उनके परिवारों से बात हुई कि क्या कारण है कि आपने टीकाकरण नहीं करवाया है, तो कई कारण निकल के आए। कुछ ने कहा सब हमसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, लगभग 25% ने कहा कि हमसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। 33% ने कहा कि सब हमें टीकाकरण के बाद कुछ दुष्प्रभाव हो जाते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उनकी वजह से डर लगता है, बुखार आ जाता है, दर्द हो जाता है, रात भर बच्चा रोता है, तो ये कुछ कारण है, कहीं फोड़ा ना हो जाए, तो ये तकलीफें हैं, इसलिए हम बच्चे को टीका नहीं लगवाते। कुछ बच्चे यात्रा में होते हैं, कहीं गए हुए थे, मौके पे नहीं थे, शादी ब्याह में चले गए थे, कुछ बहुत खुलेआम मना कर देते हैं, सब बीमार वगैरह, हम कुछ नहीं, हम तो टीका लगवाएंगे नहीं, हमारे खानदान में किसी ने नहीं लगवाया। कुछ में अवेयरनेस गैप है, उनको बताया तो गया टीका लगवाने, लेकिन उनको इतना नहीं लगता कि उनके लिए 3 बार लगाने की जरूरत है, एक बार टीका लग गया, अब बाकी कंप्लीट करने की क्या आवश्यकता है। कभी कभी हमारे भी ऑपरेशनल गैप्स हो सकते हैं कि हम जहां सत्र लगाना था एनएम बीमार हो गई, वो नहीं लगा पाई, या और कोई कारण है, बाढ़ आ गया, तो ऑपरेशनल गैप्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है उन बच्चों का जो पार्शली इम्यूनाइज हैं या अनइम्यूनाइज हैं। बट मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी हमने टीकाकरण नहीं किया है, यानी कि जो अनइम्यूनाइज हैं या जो पार्शली इम्यूनाइज हैं, जिनको पूरा टीकाकरण नहीं मिला, वो खतरे में है, और न केवल वो स्वयं खतरे में है बल्कि अपने आसपास के और बच्चों में भी टीका न लगने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके प्रसार को करने में योगदान देते हैं। वो बच्चे जो इम्यूनिटी में कंप्रोमाइज हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उन बच्चों में भी खतरा ये पैदा करते हैं। जो वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर है उस पर भी बात करते हैं, मैंने भी एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि कुछ लोग टीका लगवाना ही नहीं चाहते, चाहे वो डरते हो AFI से, या उनको कोई भ्रम हो कि बच्चा नपुंसक हो जाएगा, या कुछ और समस्या है, वो नहीं लगवाना चाहते। कुछ लोग सरकारी सेवाओं से नाराज होते हैं कि सब कंट्रोल का राशन नहीं मिला था इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे, सब हमें कॉलोनी नहीं मिली इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये तो मतलब एक इस तरह की बात हो गई कि एक सर्विस नहीं मिली तो दूसरे को मना कर दिया, बट ओवरऑल दिस विल हैम्पर देयर ओन लाइफ, उनके अपना बच्चे के जो जीवन है उसके लिए वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो इन वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर वाले लोगों से रूबरू होते हैं, आशा आंगनवाड़ी और एनएम तो स्वयं प्रयास कर ही रही हैं। इसके बाद ब्लॉक पर एक ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है, और वो ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम जो है उन लोकल इश्यूज को, कि वहाँ उस लोकली कौन प्रभावशाली है, या किसकी बात समझेंगे, या क्या मान लिया राशन कार्ड के ही इश्यूज हैं, तो उनको वो प्रशासनिक लोगों से, अधिकारियों से मिलके सुलझाने की कोशिश करते हैं।
6: पोलियो में और नियमित टीकाकरण में फर्क नियमित का ही है, जो डॉक्टर मनोज ने बताया भी था। पोलियो आपने एक बार पिला दिया, अगली बार जब आए तब आपने पिला दिया, दैट्स ऑल, उसमें कोई ऐसा फॉलो अप नहीं था। बट फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन, अगर आपने एक वैक्सीन लगवा ली, एक विजिट कर ली, उसके बाद अगर आप छूट गए तो दैट इज इनकम्प्लीट।
7: शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या CSCs है, वहां पे प्रतिदिन टीकाकरण लग रहा है, जिसका कम्युनिटी में संदेश जाना बहुत जरूरी है कि अब ऐसा नहीं है कि खाली वहां पे बुधवार और शनिवार को ही टीका लगाए जा रहे हैं, अब तो किसी भी दिन जाके लगा सकते हैं इंक्लूडिंग संडेज। जो हमारे UPSC हैं वो सोमवार को छोड़ के हर दिन टीकाकरण कर रहे हैं, और जो जिला अस्पताल है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है, वहां पे मतलब पूरे 7 के 7ों दिन टीकाकरण किया जा रहा है। सांसद, एक और भी चीज दूसरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ज्यादातर शहर के लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अर्बन के जो UPSCs हैं उतने ज्यादा अच्छे से नहीं बने हुए, वहां पर टीकाकरण की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड का सेंटर बनाने के लिए एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, जो हर जिले में स्थापित होना है। अभी तक हमारे पास लगभग 20 जिलों में 43 उन्नत किस्म के टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए, जहाँ पे उनको अच्छा सा एम्बियंस दिया जाता है, वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम्स है कि वेटिंग के लिए एक प्ले एरिया बना हुआ है, ताकि 30 मिनट तक अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ सकें, ताकि वैक्सीन के लगने से अगर कुछ दुष्प्रभाव होते हैं तो उसको, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो वो भी एक अच्छा माध्यम रहेगा लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे पास अब ग्लोबल स्टैंडर्ड के सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं।
8: एक जो जैसे आपने भी कहा, माइग्रेशन की एक समस्या है, बच्चा चला जाता है और फिर हमें नहीं पता लगता कि उसको दूसरी जगह उतने उतने टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तो ये कैसे देखा जाए कि बच्चे को सारे टीके लग रहे हैं, भले ही वो माइग्रेट हो गया है तो दूसरी जगह लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, या फिर वो आया है तो कितने लगा के आया है, इसके बारे में हम कैसे जानकारी लें? नंबर वन,
4: तो इसका सिंपल आंसर है यूविन। अभी हम लोगों ने एक यूविन ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो लास्ट ईयर से हम लोगों ने सारे बच्चों का टीका इस पे रजिस्टर्ड होता है, और ये ऑल ओवर इंडिया, ये बच्चा कहीं भी जाएगा तो ये मोबाइल नंबर से लगभग इनका रजिस्टर्ड होता है, आधार लिंक होता है, कहीं भी टीका लगवाएगा तो वो एक मैसेज क्लियर बच्चे के फैमिली के पास भी आता है, और साथ में हमारी उस एनएम के पास आता है कि उसने टीका लगवा लिया है, तो क्लियर हो जाता है कि इसने बच्चे को टीका लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा, ड्यू डेट पे इसकी मैसेजिंग भी आती है, तो अब ये समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया।
9: एक तो जो हमारी हायर सोसाइटी है, वहां भी मैंने देखा है कि जैसे गवर्नमेंट में जो है 7 या 8 टीके हैं, जो भी अभी आपने बताया है 15-16, लेकिन जब आप जाएंगे हायर सोसाइटी में या प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाएंगे टीकों के लिए, तो वहां पे कई सारे टीके हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से और भी ज्यादा है, तो क्या वो सभी भी जरूरी है जो एक्स्ट्रा टीके वहां पे लगवाए जा रहे हैं? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि वहां पे एक चीज और भी कही जाती है कि पेनलेस टीके हो गए हैं जिससे बच्चों को दर्द नहीं होगा, और जो सरकारी टीके जो मुफ्त में लोगों को मिल रही है उसके लिए वहां पे 2500 तक एक टीके के पे करने पड़ते हैं, कहीं 5000 भी होता है। तो क्या वाकई में ऐसे टीके हैं जो पेनलेस होते हैं? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हैं भी, लेकिन अगर है तो प्लीज आप बताइए हमें इसके लिए।
4: देखिए, सवाल सोना जी आपका बहुत ही अच्छा है, मेरा ख्याल है हम सभी लोग इस पे जवाब देना चाहेंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में जो अभी हमने आपको एक बीच में स्लाइडों में देखा होगा, नटागी की बात की थी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, वो डिसाइड करती है कि किसी डिजीज का बर्डन कितना है, उस वैक्सीन को लाने से मैक्सिमम बेनिफिट हमारी जनता को कितना मिलने वाला है। तो नेशनल यूआईपी शेड्यूल में, नेशनल शेड्यूल में हमेशा वो टीके लाए जाते हैं जिसमें हम कम पैसों में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे पाए और मैक्सिमम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डिक्रीज कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से वो डिसाइड होता है कि उसके बाद डिजीजेस बहुत हैं, वैक्सीन पूरी दुनिया में काफी, जब हमने बात की तो 20 डिजीजेस की बात की जो वर्ल्ड के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा था कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, बट हम लोग नेशनल यूआईपी में इसमें 12 डिजीज की बात करते हैं, तो यानी 8 अभी भी बची हुई हैं। तो ये चूंकि रिसेंटली अभी ये वैक्सीनेशन अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में है, तो डेफिनेटली वो महंगी होंगी। और दूसरा जो सवाल था आपका पेनलेस और उसकी बात कर रही है, तो ऐसी सुई का इंजेक्शन का दर्द तो सभी को होने है, प्लस जो हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर थोड़ा सा जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से दर्द होता है। डेफिनेटली 1-2 वैक्सीन ऐसी हैं, उस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि मतलब उसको पेनलेस कह सकते हैं, बट उसमें भी पेन होता है, क्वांटिटी ऑफ पेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो अपनी चीज को जैसे होता है ना, प्राइवेट में अगर हमने दुकान खोल के बैठे तो हमारी चीज बहुत बढ़िया है साहब, और गवर्नमेंट तो ऐसे कर रही है। अगर गवर्नमेंट ये एक साथ देखिए 57 लाख बच्चों को टीका लगा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर।
4: नहीं तो सरकारी में जाओ, कोल्ड चेन का मेंटेनेंस देखा किस तरीके से हम लोग, कितना बढ़िया तरीके से मैन्युफैक्चरर से हमारे पास वैक्सीन बेनिफिशियरी तक जाती है, और हर जगह टेम्परेचर लॉगर लगा हुआ है कि 2 से 8 डिग्री पे मेंटेन हो रही है।
9: सर, एक मिथ और भी है कि ये कहते से हर वैक्सीन के बाद हल्का फीवर आना आम बात है, बट उसमें ये भी कहते हैं कि जो पेनलेस वैक्सीन है उससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे मतलब सिकाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वेलिंग नहीं आएगी, फीवर भी नहीं आएगा, तो ऐसा भी है क्या?
5: केवल पेंटावेलेंट जो हमारी वैक्सीन है वो मेन फीवर का रीजन है, बाकी बहुत सारे उस पर फीवर नहीं होता है, कम ही होता है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज हम 6, 10 और 14 वीक्स पे दे रहे हैं पेंटावेलेंट, उसमें हमारा जो ये फीवर और पेन का कंपोनेंट है वो आता है, बाकी वैक्सीन में फिर हमें ज्यादा पैरासिटामोल सिरप या इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। एक चीज और जो

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: दोस्तों, आगे आके आज समता और साथ में है अंशिका। भाई, क्या हाल है आप सभी का? और आज, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज होता है सैटरडे। सैटरडे यानी कि फंडे। हम किसी के किसी भी मूड में हो, किसी भी हालत में हो, लेकिन लगता है ना कि हम सैटरडे जाएंगे तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से रिलीफ कर पाएंगे। क्यों अंशिका?
8: बिल्कुल मैम, मूड जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, बहुत ही खुशनुमा बन जाता है जब हम सोचते हैं हमारे सुपर से भी ऊपर वाले डे के बारे में, यानी कि सैटरडे के बारे में।
7: और जब हम सैटरडे के बारे में सोचते हैं ना, तो खुद की फीलिंग इतनी अच्छी सी हो जाती है, सब कुछ छोड़ करके, सारी टेंशन को छोड़ करके, ये लगता है यार कि आज सैटरडे है ना, तो शाम हमारी अच्छी होने वाली है। और फिर लगता है कि संडे है तो थोड़ा सा आराम कर लेंगे, और संडे के दिन हम लोग अपने आप को थोड़ा रिलीफ कर पाते हैं, क्योंकि संडे ही एक ऐसा दिन होता है जिसमें हमारे कॉलेज की छुट्टी होती है, हमारे स्टूडियो की छुट्टी होती है, और फिर हम लोग थोड़ा सा अपने लिए जी पाते हैं। वैसे भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट संडे के दिन ये लगता है कि हाँ, मतलब कुछ एक नया काम हम कर सकते हैं अपने लिए, कुछ ऐसी नई सोच सकते हैं। तो आज फिलहाल सैटरडे है और सैटरडे के दिन हम अपने आप को और अच्छे से कुछ थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठे हैं आज, कि आज सैटरडे है तो कुछ ना कुछ नया हम करेंगे आज। जैसा कि हमारी एक औपचारिकता है कि हम आते हैं और आपको विश करते हैं, तो सबसे पहले हम विश करेंगे, क्योंकि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
6: सुन सहेली
7: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: एंड प्यारी सी दोपहर। कल तक मैं यही कह रही थी कि प्यारा सा मौसम है और लग गई नज़र। आज सुबह जब मैं मंदिर में थी, पूजा कर रही थी, और मतलब लग रहा था कि 5 मिनट नहीं हुआ था और पूरे कपड़े गीले हो गए थे, पता है। लग रहा था कि बस मतलब अभी पूरी गर्मी का एहसास हो चुका था, प्रॉपर गर्मी का एहसास हो चुका था। तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मियाँ आज प्रॉपर लग रही हैं, एक्चुअली कल शाम से ही गर्मी लग रही है। तो चलिए एक साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों एक साथ क्या बोलेंगे,
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो आज का दिन है, यानी कि सुपर से भी ऊपर वाला हमारा फन डे, उस फन डे में हम शुरुआत करते हैं आज बहुत ही प्यारे से टॉपिक से, जो कि हमारा टॉपिक होता है एक प्यारी सी पोएट्री, जो कि आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे, जो कि है लव। आज कुछ प्यार से शुरू होगा, कुछ प्यार पर खत्म होगा, तो क्या है चलिए जानते हैं।
0: प्यार पे शुरू होगा, प्यार पे खत्म नहीं होता है। प्यार पे शुरू होता है और लड़ाई पे खत्म होती है, पता है।
1: ओके।
0: प्यार पे शुरू होता है और धोखे पे खत्म होता है। प्यार पे शुरू होता है और समझदारी पे खत्म होता है, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं ना, तो हमारे मन, हमारा दिल और हमारा मन एक बच्चा होता है, लेकिन जब हम प्यार करते हैं ना, तो साला बहुत ज्यादा हम ईमानदार हो जाते हैं।
1: ओके।
0: हमें ईमानदारी पे हम उतर आते हैं, और ईमानदारी का मतलब होता है कि हम खुद में समझदार हो जाते हैं, है ना। तो प्यार पे शुरू, प्यार पे खत्म नहीं।
1: प्यार से शुरू और समझदारी पे खत्म,
0: धोखे पे खत्म।
1: अच्छा, धोखे पे खत्म। ओके।
0: तो चलिए हम प्यारी सी पोयम को शुरू कर देते हैं। ये तो मैं अंशिका को परेशान कर रही थी, उसी की बात को लेते हैं। प्यार पे शुरू और प्यार पे खत्म। खूबसूरत सी एक कविता है, जो कि है लव पे। कुछ खूबसूरत लिखना हुआ तो तेरा नाम लिखूंगी, कुछ खूबसूरत लिखना हुआ तो तेरा नाम लिखूंगी, कुछ गहरा लिखना हुआ तो तेरी आंखें लिखूंगी, कुछ प्यारा लिखना हुआ तो तेरी सीरत लिखूंगी, कुछ समझदारी लिखना हुआ तो तेरी बातें लिखूंगी, कुछ खुशियां लिखनी हुई तो तेरा हंसना लिखूंगी, कुछ नाराजगी लिखनी हुई तो तेरा गुस्सा लिखूंगी, कुछ जख्म लिखना हुआ तो तेरी नम आंखें लिखूंगी, कुछ सुकून लिखना हुआ तो मेरे हाथ में तेरा हाथ लिखूंगी, कुछ मिठास लिखना हुआ तो तेरा जूठा खाना लिखूंगी, कुछ एहसास लिखना हुआ तो मेरे नाम के साथ तेरा नाम लिखूंगी, कुछ प्यारा लिखना हुआ तो अपनी मेहंदी में तेरा पूरा नाम लिखूंगी।
1: ओह माय गॉड,
0: बहुत ही प्यारी सी पोयम है ये। और इस पोयम से जैसे कहते हैं ना कि हम किसी की फीलिंग में घुस जाना और उसको इतना दिल से चाहना, और जैसे लग रहा है ना कि हम पता नहीं कौन से युग में चले गए, मतलब लग रहा है कि हाँ यार, कोई किसी को इतना भी चाह सकता है क्या।
1: बिल्कुल, प्यार बहुत ही प्यारी सी फीलिंग होती है किसी के लिए। जब आप कुछ महसूस करते हैं, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर, तो कहते हैं ना कि हजारों में भी कोई एक दिल को बहुत पसंद आ जाता है। कुछ उसी ख्याल को हमने यहाँ पर जिंदा किया है, यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि प्यार शब्द किसी भी रिश्ते में हो, एनी रिलेशनशिप, वो बहुत नाजुक होता है। कहते हैं ना हम कि रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो कांच से भी नाजुक होता है। तो कहीं ना कहीं संभालना है, और प्यार जो बहुत ही खूबसूरत एहसास है, उसे संभालिए, सराहिए और अपने बहुत करीब रखिए। क्योंकि कहते हैं ना कि रिश्तों में अगर हम थोड़ा सा भी ढील दे देते हैं या फिर जरूरत से ज़्यादा कस देते हैं, तो वो खिंचाव का कारण बन जाता है। अपने रिश्ते को, पता है अपने रिश्ते को कैसे रखना चाहिए? मेरे हिसाब से अपने रिश्ते को ऐसा रखना चाहिए कि अगला इंसान बिल्कुल आपके साथ में फ्री ऑफ माइंड हो, मतलब वो उसको ये ना लगे कुछ नहीं, कोई बंदिश नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछना नहीं, कुछ करना नहीं, बस फ्री ऑफ माइंड एक रिश्ता होना चाहिए। फ्री ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी करने देंगे, आप जो कहेंगे हम करने देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं, बट एक ये वाला होना चाहिए कि स्मूथ जाए आपका रिलेशनशिप, ना कि कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, वहाँ अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर वो पूरा का पूरा आपका प्यार ही सेक्रीफाइस होता है। क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व करने में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्यार को भूल जाते हैं। तो कोशिश करिए सबसे पहले तो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में। अगर हो जाती है तो हटाना है उस प्रॉब्लम को, ना कि रिलेशनशिप को। ज़्यादातर बातों में क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि वो पूरे पूरे हमारे रिलेशनशिप ही धीरे धीरे हमारे हाथ से हटता चला जाता है। तो समझिए और कोशिश करिए।
0: बिल्कुल, इस प्यारी सी पोयम से आज बहुत सारे मायने निकल के आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से लव करते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हम उन्हीं को ये डेडिकेट कर सकते हैं। इस प्यार भरी कविता को हम किसी के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अपने हस्बैंड को शेयर कर रहे हैं, अपनी माँ को शेयर कर रहे हैं, अपने पिता को शेयर कर रहे हैं, हम अपने भाई बहन को शेयर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते जो बेनाम होते हैं हम उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। इस प्यारी सी कविता के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं सीधे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, जो कि अभी बताएंगे आपको अंशिका।
1: बिल्कुल,
0: तो आज की रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में क्या है ये तो जानेंगे, लेकिन उसके बाद आज है सैटरडे, तो हम ओटीटी जैसे कहते हैं ना गाड़ी में, ओटीटी आ गया, टीटी आ गया, तो ओटीटी पे हम आज कुछ जानेंगे नए सीरियल्स, नए मूवीज के बारे में, जो कि हमारे पॉकेट में होती है। तो पॉकेट में है रॉकेट वाली जो फीलिंग आती है ना, वो हम आपको बताते हैं कि क्या नया कुछ खास आपके साथ होने वाला है। तो वो सीरीज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे, ब्रेक लेंगे, क्योंकि आज हम अपने ज्ञान को थोड़ा सा कम बोलेंगे, आपको गाने सुनाएंगे ज्यादा।
1: बिल्कुल, तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए आप तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, जो कि है प्यार नहीं करना जग सारा कहता है, पर कुछ भी कर लो ये प्यार होके रहता है।
0: नहीं, सबसे पहले रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताएंगे, उसके बाद ब्रेक करेंगे।
1: ओके, तो बता देते हैं। ओके ठीक है, तो पहले बता देते हैं, चलिए मैम ने कहा है तो पहले बता देते हैं। तो आज हम आपको जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने वाले हैं वो आपके रिश्ते में ये है कि ना कहना सीखे। आज हम जैसा कि लव को ले रहे हैं, तो प्यार
0: रिश्ते में ना कहना सीखे।
1: बिल्कुल,
0: प्यार वो लव का रिश्ता।
1: हाँ, प्यार के रिश्ते में ना कहना सीखने के अपने मायने होते हैं। कहने का मतलब है, यदि कोई कोई काम है, कोई इंसान है जो कि आपकी मेंटल पीस को बार बार कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस उसकी वजह से हार्म हो रही है।
0: हाँ, हाँ।
1: कोई पिंच करता है आपको, या कई बार होता है ना कि प्यार में हो या ना हो, बट कोई इंसान हमें कई बार गलत मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, रिलेशनशिप भी है बट गलत इंसान होता है, आपको बार बार दबा रहा है, या फिर आपको वो काम करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते। कई बार कई रिलेशनशिप में कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पसंद होती है। ज़रूरी नहीं है कि दो पार्टनर्स की एक जैसी सारी चीज़ें हों, लेकिन हम ना नहीं कह पाते। हमें लगता है कि ना कहने से रिश्ते खराब हो जाएंगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, क्यों ही कहना, चलो छोड़ो हटाओ रहने दो। लेकिन ना कहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो इससे दो तीन नुकसान होते हैं रिश्ते में। पहला कि आप ना नहीं कह पा रहे, मतलब आप वो काम मजबूरी में कर रहे हैं, इससे आपका रिश्ता खराब होता है, क्योंकि सामने वाले के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि हम किसी को कब तक, आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो काम आप कब तक कर पाओगे, एक पॉइंट के बाद तो नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन फिर भी हम करते हैं कि चलो अच्छा रहने दो, रिश्ता है खराब ना हो, बट ऐसा नहीं करना है आपको। उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए ही ना कहना जरूरी है। कई बार हम हमेशा कहते हैं ना कि रिश्तों में दूसरे की पॉइंट्स को वो मत करो, उसकी बात को काटो मत, रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कई बार रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी ये भी होता है कि हम कुछ बातों को साफ साफ क्लियर आउट करें, जो हमें पसंद नहीं है उसके लिए मना करें, और थोड़ी सी, मैंने ये बात कल भी कही थी आज भी कहूँगी, कि थोड़ी सी दूरी बनाइए। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं होता कि जब हम बात ही नहीं करेंगे और वो रिश्ता खत्म हो जाता है। दूरी बनाने का मतलब इतना होता है कि कुछ टाइम के लिए हम ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे और उतनी ही बातें करेंगे जितनी बातें ज़रूरी होंगी, और जो हम नहीं करना चाहते हैं उसके लिए मना कर देंगे कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। देखिए, इससे आपके रिश्ते में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि जब हम किसी से दूर रहते हैं तो हमें धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि कितना वो हमारे लिए या हम उसके लिए ज़रूरी है। रिश्तों में जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है वो करने से आपके रिश्ते में घुटन पैदा हो जाती है, और धीरे धीरे रिस्पेक्ट जो हमारे रिश्ते में एक दोनों साइड से होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर आप ना दिल से इज्जत दे पाएंगे, ना दिल से प्यार दे पाएंगे। लेकिन जब आप गैप करते हैं अपने रिश्ते में, कुछ टाइम दूर रहते हैं, तो वही आपके रिश्ते में पुरानी वाली अंडरस्टैंडिंग, पुराना वाला एक रिस्पेक्ट, एक प्यार लौट करके वापस आ जाता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे को फुली स्पेस देते हैं। और जो काम आपको नहीं पसंद है वो जब आपको नहीं करने पड़ते हैं तो आप भी खुश रहते हैं। आप सोचिए, अच्छा चलो इस तरह ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको दाल चावल खाने नहीं पसंद है, आपके पार्टनर को पसंद है, और उसके चक्कर में आपको डेली खाना पड़ रहा है, तो आप कब तक बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं मुझे अच्छा चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा ना। और उसी जगह आप मना कर दीजिए कि नहीं यार मुझे दाल चावल नहीं अच्छे लगते, तुम्हें अच्छे लगते तुम खा लो, मुझे कुछ और खाना है, तो इट्स ओके। हम रिश्तों में बार बार ये क्यों सोचते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाएगा?
0: बिल्कुल,
1: अगर वो आपका असली में आपको समझता है, आपसे प्यार करता है, तो वो आपकी फीलिंग को समझेगा। उल्टा पता है, रिश्ते में हमेशा उल्टा होता है कि सामने वाले को जब रियलाइज हो जाता है तो वही कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, तुम खुश रहो।
0: Exactly.
1: अगर ऐसा कोई आपको कहता है कि तुम खुश रहो, भले वो उसकी पसंद वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है, तो इसका मतलब है कि वो आपको असली प्यार करता है,
0: एक बिल्कुल
1: जो रियल लव,
0: और उसको ट्रुथ लव ही कहा जाएगा। क्योंकि जहाँ पर बांधना आ गया, तो कहते हैं ना कि मोहर नहीं है।
1: हाँ.
0: प्यार अगर आप करते हैं किसी से, तो प्यार का मतलब होता है आजादी।
1: आजाद,
0: अगर आप आजाद छोड़ रहे हैं तो ही वो प्यार है। अगर आपने बांध के रखा है तो वो एक मोह हो गया।
1: हाँ.
0: तो मोह से छोड़ना बिल्कुल है। और जैसा कि आज की रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ का सिंपल सा एक फंडा एक लाइन में आया है कि हमें प्यार करना है मोह।
1: बिल्कुल।
0: और आज चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग आ गए हैं, जैसे आशु जी आ गई हैं, अनुष्का जी और
1: शर्मिली जी।
0: शर्मिली जी कौन है भाई? तो शर्मिली जी शर्माइएगा नहीं, आज हम लोग जब गेम शुरू करेंगे तो फटाफट उसमें पार्टिसिपेट करिएगा।
1: राकेश कुमार जी भी आ गए।
0: तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे कुछ सीरियल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हम लेंगे यहाँ पर एक छोटू सा ब्रेक।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और आरजे अंशिका। जी हाँ बिल्कुल, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है, सभी को पता है। और वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का था आपको बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, जो क्या है कि गेम। भाई देखो, आज ही के दिन तो आपको अपने मन वाली करने का मौका मिलता है, क्यों अंशिका?
3: बिल्कुल, वरना बाकी 6 दिन तो आपको हमारी ही मर्जी,
2: हमारी सुननी होती है ना। तो आज फुल टास्क देखिए, हम आपको गाने भी सुना रहे हैं, ज्ञान कम दे रहे हैं, लेकिन गाने जो हमारी प्लेलिस्ट में हैं वो गाने भी आपको ज्यादा से ज्यादा सुना रहे हैं। तो चलिए गानों के साथ में हम शुरू करते हैं आज के गेम को। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी हम लोग OTT सीरियल्स के बारे में जानेंगे, तब तक हम गेम के रूल्स बताते हुए आपको पहला वर्ड भी दे देते हैं। तो भाई गेम हम स्टार्ट अभी बस जस्ट करने वाले हैं, और पहला वर्ड मैं आपको देने जा रही हूँ क। तो पहला वर्ड मैं आपको दे रही हूँ क। तो क से आप बहुत ही प्यारा सा कोई गाना लिख करके भेजें, जब तक आपके सॉन्ग्स आएंगे और तब तक हम आपको OTT के बारे में बताएंगे। एंड देन आपके सॉन्ग्स के बाद में हम शुरू करेंगे लव राशिफल भी। तो इसीलिए थोड़े से गाने, थोड़े से लव राशिफल और थोड़ा सा OTT।
3: तो चलिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि कौन क्या न्यू OTT सीरियल्स और कुछ सीरीज शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले आज जिस सीरीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका जो एक नाम है ना वो बहुत ही प्यारा सा है, और ये नाम है कर्तव्य। कर्तव्य इसका नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्तव्य नाम है तो ये है क्या? तो चलिए बताते हैं कि ये सैफ अली खान की आने वाली बहुत ही अच्छी सी सीरीज है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको अपनी लाइफ में ये लगता है कि जिम्मेदारियां बहुत बड़ा बोझ होती हैं। कई बार हमें फील होता है ना कि अरे बार बार जिम्मेदारियां ही उठानी पड़ती हैं। तो कर्तव्य में आपको ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, और अपने लिए ना सोचकर अपनी फैमिली के लिए जो जीता है वो कितना बड़ा एक रियल लाइफ हीरो होता है, ये आपको इसमें दिखाया गया है। लेकिन ये दिखाया किस अंदाज में गया है पता है आपको? ये दिखाया गया है आपको थोड़े से थ्रिलर अंदाज में, क्योंकि इसमें सैफ अली खान जी के साथ, रसिका दुगल के साथ संजय मिश्रा भी होने वाले हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिसमें संजय मिश्रा हो वो थ्रिलर ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो ये थ्रिलर ड्रामा है, आप देखिए कि ये एक ऐसे हीरो की कहानी होती है कि जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले मतलब वो कुछ करता है, और फिर करने के बाद क्या होता है ये आपको देखना है। तो फटाफट से आप इसको जरूर देखिएगा और साथ में इंजॉय भी करिएगा। तो चलिए लिसनर्स, अब आते हैं दूसरे पर, जो कि है आखिरी सवाल। नेक्स्ट है हमारा आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, तो इसके बारे में भी बता देते हैं कि ये है संजय दत्त और नमीषा चक्रवर्ती की, जो कि आखिरी सवाल एक बहुत ही अच्छी और सस्पेंस से भरी हुई सीरीज है।
2: ओके,
3: ये एक ऐसी मिस्ट्री होती है जिसमें कि ये जो हीरोइन होती है उसके साथ कुछ मतलब इंसिडेंट होता है, और उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में सब लग जाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, और लास्ट में पता चलता है कि किया किसने है। लेकिन वो आखिरी सवाल, यानी कि वो जो लास्ट सवाल उसमें वो पूछता है, और सवाल से पता चल जाता है कि कौन है इस मिस्ट्री का सस्पेंस वाला हीरो। ओ सॉरी, हीरो नहीं, विलेन। लेकिन वो कौन है, क्या होता है, ये नहीं बताएंगे हम आपको, क्योंकि अगर ये बता दिया तो फिर आप देखने नहीं जाएंगे।
2: बिल्कुल,
3: तो नहीं बताएंगे। और ये बता दूं कि आप इसको Amazon Prime पे देख सकते हैं, दोनों ही सीरीज को, तो जरूर देखिए और अपने वीकेंड को बनाइए बहुत ही शानदार।
2: तो अंशिका चलते हैं अब हम सीधे गेम की ओर, और गेम में सबसे पहला जो कि सॉन्ग भेजा है वो भेजा है आशु जी ने। तो आशु जी के सॉन्ग को सुनते हैं और हम फिर चैट बॉक्स में आपको एक वर्ड भी देंगे, यानी दो सॉन्ग्स के बाद में हम सीधे सीधे आएंगे आज के लव राशिफल को भी सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं आशु जी के इस प्यारे से गाने को। बस हम यूं आए और यूं आए, यूं आए और यूं आए, क्योंकि यूं आएंगे नहीं तो हम जाएंगे कैसे।
3: तो चलिए सुनते हैं आशु जी का सॉन्ग।
4: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए

0: जी बिल्कुल, इस प्यारे से सॉन्ग के साथ आइए हम चलते हैं अब सीधे राशिफल की ओर, जो कि आज का प्यारा सा राशिफल देखते हैं लव राशिफल में क्या बता रहा है। तो भाई लव राशिफल में सबसे पहले आता है मेष, वृष, मिथुन और कर्क। तो मेष राशि के जातक जो हैं वो तैयार हो जाएं अपनी लव लाइफ सुनने के लिए, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने एक वर्ड दिया है आपको, जो कि वर्ड क्या दिया है,
1: वर्ड दिया है हमने आपको रा, और रा से हमें सॉन्ग भी मिल गया है, राजा को रानी से प्यार हो गया।
0: किसने भेजा है?
1: जो कि भेजा है रिंकू जी ने, रिंकू जैन जी ने।
0: तो नेक्स्ट सॉन्ग यानी कि हम रिंकू जी का सुनने वाले, ठीक
1: जी
0: है
1: मैम।
0: तो आइए लव राशि फल में आज बातचीत ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। मेष राशि वालों, अपनी प्यारी बातों से आप पार्टनर का दिल जीत सकते हैं और पुरानी गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। वाओ। वृषभ राशि वालों के लिए है कि चंद्रमा के आपकी राशि में आने से रिश्तों में गहराई और भरोसा बढ़ेगा। आज की शाम पार्टनर के साथ कोई शांत और रोमांटिक प्लान बनाने के लिए बेहतरीन है।
1: ये तो फिर बहुत ही अच्छा वाला है
0: वृषभ राशि वालों के लिए है। मिथुन राशि वालों के लिए है कि आपकी राशि में शुक्र की उपस्थिति आपके आकर्षण को बढ़ा सकती है। साथी के साथ अपनी भावनाओं और निजी सपनों को खुलकर शेयर करेंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। नेक्स्ट राशि हमारी आती है कर्क राशि वालों के लिए है। पार्टनर के प्रति आपकी भावनाएं और गहरी होंगी। अपनी हिचकिचाहट या सुरक्षा की दीवारों को गिराकर साथी को करीब आने दें, इससे रिश्ता मजबूत होगा।
1: यानी कि अपने रिश्तों को आपको मजबूत करना है।
0: तो ये थी चार राशियां। अब हम चार राशियों के बारे में इस ब्रेक के बाद सुनेंगे, जो कि है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो ये चार राशियां सुनने के लिए आप रेडी रहिए, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: वापस आ गए हैं हम बहुत ही प्यारे से लव राशिफल के साथ में। अभी आपने बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुना, तो चलिए आप जानते हैं हम बाकी राशियों के बारे में, जो कि हैं सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए, लव लाइफ में आपसी प्यार और भरोसा बढ़ेगा, साथी की बातों को ध्यान से सुनना और छोटे छोटे प्यारे प्यारे इशारे करना आज आपके रिश्तों में खुशियां लाएगा। ओके। और साथ ही साथ हैं, चलिए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए है कि आज जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वो आज अपने पार्टनर के साथ किसी भी छोटी सी ट्रिप पे जा सकते हैं या फिर अकेले में कुछ बहुत ही प्यारे से रोमांटिक वाले आप पल भी बिता सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ में है कि ये समय पुरानी कड़वाहट को भूलकर नई शुरुआत करने का है। ओके। नई शुरुआत तो भाई करनी ही चाहिए और पुरानी चीजों को तो भूल जाना चाहिए, जो हो गया मिट्टी बाओ। और तुला राशि वालों के लिए बात करें तो आज आपके लाइफ लव पार्टनर को आपकी आपके मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट दोनों की जरूरत है, और साथ ही में जो भी चिंता है आपके रिलेशनशिप में, जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत भारी बनाती है, आपको उसे दूर करना। और अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आज आपका पूरा ध्यान आपके पार्टनर की तरफ रहेगा।
1: ओह माय गॉडनेस।
0: रिश्तों में आपके रिश्ते में जो भी कुछ पहले हो चुका है आप उसे भूलकर आगे बढ़ेंगे, और आज शाम जो भी आप समय साथ बिताने वाले हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा।
1: तो ये थी चार राशियां, और अब जो कि वो वर्ड दिया गया था जिसमें भेजा है सबलू जी ने गाना, तो आइए हम सबलू जी के सॉन्ग को सुनते हैं और उसके बाद में बाकी बची राशियों के बारे में बता करके आपसे करेंगे टाटा बाय बाय।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और चलिए फटाफट शुरू करते हैं अभी हम बाकी राशि फल को बताने के लिए। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो धनु राशि के जो जातक हैं वो हो जाएं तैयार प्रेम के बारे में जानने के लिए। तो प्रेम संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ सकती है। एंड अगर पार्टनर को लेकर मन में कोई संदेह या चिंता है तो उसे दबाने के बजाय खुलकर बात करें, धनु राशि वालों। नेक्स्ट राशि हमारी आती है मकर राशि वालों के लिए। आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है और पार्टनर के साथ छोटी मोटी बहस संभव है। तो भैया थोड़ा सा हो जाइए तैयार कि आप बहस वहस ना करें। हालांकि शांत रहकर बातचीत करने से गलतफहमियां जल्दी दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का लाइफ देखते हैं क्या है, यानी लव लाइफ देखते हैं कैसी है। आज आपकी लव लाइफ काफी हल्की फुल्की और उत्साहजनक रहने वाली है। किसी मजेदार डेट पर जाने या घर पर ही सुकून भरा समय बिताने के लिए अच्छा।
1: पहला वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा था,
0: डेट पर जाना।
1: हाँ, सुकून घर में ही बिताना वो थोड़ा बोरिंग,
0: पर डेट पर जाना अच्छा होगा ना।
1: हाँ, फर्स्ट वाला पॉइंट।
0: तो नेक्स्ट राशि आती है मीन राशि वालों के लिए। आज का जो दिन है वो देखते हैं कैसा है। आज का दिन आपके लिए बेहद सुखद और आनंदमय रहेगा। आपसी तालमेल शानदार रहने वाला है और आप अपनी उदारता से पार्टनर को बहुत खुश कर पाएंगे। तो भाई लिसनर्स, ये था आज का लव राशि फल जो कि हम लोगों ने आज सैटरडे के दिन आपको बताया है। तो भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट दो लिसनर्स की एक ही डिमांड है, यानी प्रीति जी एंड सुरीली जी। तो हम सुरीली जी को पसंद को सबसे ज़्यादा पहले तवज्जो देंगे क्योंकि प्रीति जी के गाने को हम लोगों ने ले लिया था। बट फॉर्चुनेट कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, दोनों की पसंद एक ही है। तो आइए सुनते हैं दोनों के एक ही सॉन्ग को, यानी कि सात समुंदर पार। और हम आएंगे गाने के मिड में आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को जो कि है सात समुंदर पार।

0: बिल्कुल सात समुंदर पार, और अब हम लोगों को भी कुछ पार करके जाना पड़ेगा। हाँ, बारिश तो हुई नहीं है, इसीलिए कुछ ऐसा भरा वरा नहीं होगा, नाला नदियाँ कुछ भी नहीं, बट हम लोगों को भी कुछ सड़कें, कुछ रोड्स पार करके हमें भी अपने घर जाना होगा। तो हम मिलेंगे अब आपको मंडे, क्योंकि कल है संडे और कल रहता है हम लोगों का वीक ऑफ, आप सभी को पता है। तो मंडे मिलेंगे फिर एक नई एनर्जी, नए एक स्वाद के साथ, एक लजीज स्वाद के साथ। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एवरीवन, और टेक केयर, बाय बाय
1: बाय बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हाँ जी, तो वक्त हो चला है आपके अपने फोनी फरमाइशी कार्यक्रम का, और आज का दिन है शनिवार। शनिवार यानी कि वीकेंड का वार, और वीकेंड का वार इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि आज हो जाते हैं आप दमदार, हम भी हो जाते हैं एकदम से दारमदार आपकी फोन कॉल्स को उठाने के लिए, और आप लगातार कॉल्स करते हैं। कॉल के लिए वही नंबर है, और आपने ट्यून करके क्या रखा उससे पहले बता दूं, हाँ जी, रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन को, और इस धड़कन के स्टूडियो का नंबर है 6393316429 यानी कि 6393316429। और देखते हैं कि पहले कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
3: प्रबल मिश्रा, राधे राधे मैम।
2: राधे राधे, क्या सुनेंगे प्रबल जी?
3: ये जाने दिल।
2: हाँ,
3: ये जाने दिल।
2: आप ऐसा करिए, लिंक शेयर करिए, तब तक हम अपनी पसंद का एक गाना चलाते हैं, ठीक है?
3: हमने लिंक शेयर कर दिया है।
2: ओके, ये बात हुई, ऐसे वो होते हैं हमारे प्यारे लिसनर, मतलब पहले से ही सारी तैयारी करके बैठे हुए होते हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारे प्रबल जी क्या सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो फिर बढ़ते हैं इन्हीं की पसंद की ओर, और फिर आते हैं नेक्स्ट नगमा लेकर के।

0: हाँ जी, अभी आपने एंजॉय किया जाने दिल, इस डिमांड को जिसकी डिमांड की गई थी हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी के द्वारा। और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए। हेलो
1: हेलो एवरीवन।
0: हाँ जी नमस्कार,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, क्या सुनना चाहेंगे देवी जी?
1: हम यही सुनना चाहेंगे, बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले।
0: हम आपको अपनी पसंद का एक सॉन्ग सुनाते हैं, क्योंकि हम सैड सॉन्ग तो नहीं बजाएंगे आपके लिए, आप कुछ भी कर लें
1: जी। Okay. अपने हिसाब से अपने मन पसंद का सुनाइए
0: जी। जरूर, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी पसंद से, हमारी प्लेलिस्ट से, आप सभी के लिए। भाई जब आप सभी आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर याद तो आना बनता है बॉस, और अपने ऐसे ही होते हैं, इसलिए आप सभी के लिए ये सॉन्ग आपने ट्यून करके रखा हुआ 89.6 FM पे। अपनी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजे आकांक्षा है, और आपका कार्यक्रम चल रहा है फोनी फरमाइश कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा।

जी, और कुछ लोग होते हैं जो सीने से दिल निकाल के ले जाते हैं। अगर आप उनको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें तो बखूबी कर सकते हैं। आप लोगों का लगातार कॉल आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स। और आज का यानी कि कॉल इन शो ऐसा ही जाता है, आप सभी को अच्छे से पता है। कॉल करते रहिए, देखते हैं आज के नेक्स्ट वाले लकी कॉलर कौन होते हैं। फिलहाल तीन से चार के सफर में मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा।

0: फिलहाल देखते हैं कौन आया है नेक्स्ट कॉलर हमारे पास में। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे रॉबिन हुड जी ने हमें कॉल किया है। हाँ जी,
1: मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ।
0: ओह माय गॉड, दोनों की एनर्जी आज मुझे सेम सेम फील हुई। कहिए क्या सुनना चाहेंगे अमित जी।
1: स्वीटी ड्रामा मचा दे हंगामा।
0: ओह माय गॉड, वाकई स्वीटी सुनना है आपको। भाई हम इतने प्यारे प्यारे सूदी सूदी सॉन्ग सुन रहे थे और हाई बीट की ओर लेके चलेंगे हमारे अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सर।
1: थैंक यू मैम।
0: तो भाई चलते हैं फिर नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे अमित जी की, और गाना, हाँ जी, म्यूजिक और बीट तो आपको पता ही चल गई होगी और अनाउंस भी कर दिया हमारे साहब ने।

0: क्या बात भाई, दो मिनट में इन्होंने हमको अर्श से नहीं फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया और हम थोड़ा सा थिरक लिया हमने अमित जी की डिमांड पे। और अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है। हेलो,
1: नमस्कार मैम। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए फटाफट से।
1: आनंद प्रताप सिंह, खेती कुरवा गुना से।
0: बहुत बहुत स्वागत है, क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: अपने पसंद का कोई बढ़िया गाना सुना दीजिए।
0: हमारी पसंद का सुनना चाहेंगे
1: जी?
0: पक्का वाला
1: जी?
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए। थैंक यू।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू। तो फिर चलते हैं, फिर हम अपनी पसंद आप तक पहुंचाते हैं। और ये डिमांड है हमारे आनंद प्रताप सिंह जी की, जो हमें सुन रहे हैं छेदी पुरवा से। एंजॉय करते रहिए तीन से चार के सफर में। मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा, लगातार आपकी कॉल्स आ रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर डिज़ाइन ऐसा ही शो किया गया है और आज का दिन इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार होता है, आपकी आवाज़ जो हम तक आ जाती है और साथ में दिल के जज्बात भी। फिलहाल ये हमारे दिल के जज्बात से पिरोया हुआ मोस्टेस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग फॉर एवर है। एंजॉय करिए।

हाँ जी दोस्तों, 90s हिट्स में से चुनिंदा नगमे हमारे भी पसंद के होते हैं और उन्हीं में से ये एक रोमांटिक हिट्स है आप सभी के लिए और इसकी डिमांड की गई आनंद जी के द्वारा छेदीपुरवा से। और अगर आपको भी अपने सॉन्ग्स की डिमांड करनी है तो कॉल मिलाना होगा उसी नंबर पर जो कि है 6393316429, जिस पर बखूबी आपकी कॉल्स आ भी रही है। लेकिन अगर कोई नया लिसनर हो तो उसके लिए ये नंबर

0: बिल्कुल, और बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी भाई हमारी प्लेलिस्ट की थी। और हमारे साथ में मौजूद है रिंकू जैन जी, शर्मिली जी हैं, एस जी हैं, साथ में प्रबल मिश्रा जी हैं, और इनके अलावा सबलू सावंत जी मुंबई बोरीवली से, और हमारे प्यारे लिसनर हैं सुरेंद्र यादव जी, और इसके अलावा है रामकृष्ण नंदन जी जो हमें सुनते हैं अलाहाबाद से। ये सारे लिसनर हमारे साथ में चैट बॉक्स में बने हुए हैं, और हमारे एक प्यारे लिसनर हैं जो कि कॉल पे भी मौजूद है, देखते कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते, निब्बर बोली सर।
0: जी निब्बर जी, स्वागत है आपका, क्या सुनना चाहेंगे?
1: जाना है
0: क्या
1: जाने के सड़क पे लोग महल वाले को जलते हैं?
0: हाँ,
1: जाने के सड़क पे लोग महल वाले को जलते हैं, मोहम्मद रफी का जाना है।
0: कौन सी सड़क पे?
1: जाने के सड़क पे लोग महल वाले को जलते हैं।
0: कोई दूसरा सॉन्ग बताइए प्लीज।
1: सुना दीजिएगा।
0: कौन
1: ओके,
0: थैंक यू सर। तो ये थे हमारे निब्बर जी, और इनकी डिमांड है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और उसको क्या पता जो कभी किसी के लिए बना ही ना हो। फिलहाल बनते हैं और आगे बढ़ते हैं इस सफर में, यानी कि 3 से 4 के सफर में, निब्बर जी की डिमांड के साथ जो हमें सुनते हैं रेलवे क्रॉसिंग गोंडा से।

अच्छा अंसारी जी भी जुड़ चुकी हैं सीतापुर से, आपको भी गुड आफ्टरनून डियर। और अगर आपको भी अपनी फरमाइशों को ट्यून करवाना है तो आप कॉल कर सकते हैं 6393316429 पर। ये है आपके स्टूडियो का नंबर। फिलहाल ये गाना निब्बर जी की पसंद का।

0: हाँ जी, और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है जो कि बन गए हैं लकी हमारे कॉलर। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज और कहाँ से सुन रहे हैं भी बताएं।
1: बोरीवली से बोल रहे हैं
0: सबलू सावन। ओ जी, बोरीवली से बोल रहे हैं सबलू सावन जी, ये बताइए जरा वहाँ की गर्मी का मौसम कैसा है?
1: यहाँ तो गर्मी कम ही है,
0: कम ही
1: है? यार और इसी के जैसा गर्मी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ का यहाँ ना ट्रांसफर कर दे।
0: इसीलिए तो पूछ रहे थे। चलिए बताइए क्या सुनना चाहेंगे।
1: मूवी है दिलासी खाना मूवी से उठा ले जाऊंगा तुझे ना डोली।
0: ओके, फिलहाल एक बार तो आप भौजाई को हमारे ले जा चुके, कितनी बार डोली में लेके जाने का इरादा है?
1: नहीं,
0: कोई बात नहीं है, लेकिन हम सोचे कि गर्मी हम जरूर आप तक डोली के साथ में भिजवा दें, क्या कहते हैं?
1: नहीं,
0: फिलहाल ये तो लगन स्पेशल सॉन्ग है, मैं समझ गई, और भाई बहन में थोड़ा सा ये नोकझोंक चलता है इसलिए मैंने कर लिया आपसे। मैं ये कह रही थी कि क्या हम गर्मी आप तक पहुंचा सकते हैं? यहाँ बहुत गर्मी हो रही है वाकई में।
1: अब ये तो नहीं कह सकते, अगर आपसे होने वाला है तो ट्रांसफर कर दीजिए।
0: आप ही ने बोला ना आप यहाँ ना पहुँचा दीजिए, तो हमने जस्ट क्लियर कर रही थी मैं कि मेरे से होगा या नहीं, आपने फिर जवाब भी दे दिया कि हमसे होगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, एंजॉय करिए। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने सबलू सावन जी की डिमांड के साथ में, और सुरेंद्र यादव जी काफी देर से लगातार हमको कॉल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सॉन्ग हम उनका ही ले लेते हैं।

0: हाँ जी, और हमने सोचा था कि सुरेंद्र जी के हम नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी थोड़ा सा और इंतजार करिएगा, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे पास में कौन है। और काफी देर से हमारे सुरेंद्र जी प्रयासरत हैं, कॉल पे कॉल मिलाए जा रहे हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं और प्लीज असली आवाज में बोले, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: मेरा नाम समरीन।
0: जी समरीन जी, क्या सुनना चाहेंगी? हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी क्या सुनना चाहेंगी?
1: जाने तमन्ना जाने अदा।
0: ओहो हो, क्या बात है क्या बात है, क्या ही बोल दिया आपने, जाने तमन्ना जाने अदा। शुक्रिया वैसे इसके लिए, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है इसलिए। थैंक यू थैंक यू, टेक केयर। तो भाई चलते हैं फिलहाल के लिए और सुरेंद्र जी की कॉल ले ही लेते हैं। और ये लीजिए, सुरेंद्र जी की कॉल कट भी गई। कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, हम आपके सॉन्ग को नेक्स्ट जरूर ट्यून करेंगे। फिलहाल हम लेंगे समरीन जी की डिमांड, फिर आते हैं सुरेंद्र जी की डिमांड के साथ में। और एक और कॉलर है, देख लेते हैं कौन है हमारे बीच में। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी, मैं राजेश मीणा बात कर रहा हूँ बेंगलोर से।
0: जी राजेश मीणा जी, क्या सुनना चाहेंगे?
2: मेरे को दो रास्ते मूवी का गाना है, ये रेस में जुल्फे सरसी आके इन्हें देख कर जी रहे सभी।
0: बहुत बहुत खूब, बहुत प्यारी चॉइस रही, थैंक यू। तो चलिए फिलहाल चलते हैं जाने तमन्ना जाने अदा, फिर आते हैं सुरेंद्र जी की डिमांड के पास और फिर आएंगे हम नेक्स्ट डिमांड लेके अपने राजेश मीणा जी की।

भाई मोहब्बत की इससे बड़ी इंतहा कुछ भी नहीं हो सकती कि अगर जीवन जिंदगी भी छोटी है आपके आगे, अगर आप मांगे तो हम जान भी हाजिर करते हैं। बहुत ऐसी डिमांड थी समरीन जी की, और अभी हम बढ़ते हैं सुरेंद्र यादव जी जो हमें गौरा चौकी से सुनते हैं उनकी डिमांड की ओर, फिर आएंगे हम अपने राजेश मीणा जी की डिमांड की ओर जो कि हमें बेंगलोर से सुनते हैं, फिर हम नेक्स्ट कॉल पे जाएंगे। तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए बस थम जाइए, कॉल मैं मिला के अपने हाथों को मत दुखाइए। 3 से 4 के सफर में आपकी होस्ट दोस्त आरजे आकांक्षा, और अगर आपको कॉल करनी है तो मिला लीजिएगा नंबर 6393316429 63 93 63 93 6391 64 29। फिलहाल ये डिमांड हमारी सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से।

0: शर्मा जी और हमारे बीच में हैं अब्दुल मुजीम जी, जिन्होंने लिखा है, शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल भी काले पड़ गए। और इसी के साथ में देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: अब्दुल मुजीम
0: जी। मुजीम साहब, आप हमें कहाँ से सुनते हैं?
1: अहमदाबाद
0: जी। क्या सुनना चाहेंगे?
1: सुना दीजिए, सराफत अली को सराफत ने मारा
0: है। सराफत अली को सराफत ने मारा? माय गॉड, फिर कौन हुआ? नहीं, फिर किसका हुआ मुंह काला, हमें ये भी जानना है।
1: ये मेरे सेठ का डेडिकेट।
0: आपके सेठ को डेडिकेट है ये?
1: जी
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए, वेट करिए। क्या बात है भाई, मुजीम साहब क्या ही बोले हम।

हाँ जी, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड है हमारे पास में राजेश मीना जी की, जो हमें सुनते हैं बैंगलोर से। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, उसके बाद में भाई अहमदाबाद से आई सेठ जी के लिए खास वाली डिमांड।

0: हैं सभी भाई, ऐसा हमारा कहना नहीं है, मोहम्मद रफी साहब का कहना है। और भाई हम अगर आप लोगों को बताएं तो हमारे चैट बॉक्स में बाल्टी भर भर के पानी भी आ गए हैं, थैंक यू पहुंचाने के लिए। और देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो मैडम।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: अरे नमस्कार, मैं रशीद भाई बोल रहा हूँ, ये गाना सुनना है, घुंघरू के तरह बजता रहा हूँ।
0: जी जी, लेकिन रशीद जी आप हमें सुन कहाँ से रहे हैं?
1: जी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी जी शुक्रिया
1: शुक्रिया।
0: हेलो
2: हेलो मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: रमेश कुमार महाराज
0: का। जी एक सेकेंड जी, क्या सुनना चाहेंगे रमेश जी?
2: सबसे बड़ा खिलाड़ी मूवी से गोली वाली लड़की सॉन्ग।
0: ओहो क्या बात है, थैंक यू।
2: ओके थैंक यू
0: थैंक यू। हेलो हेलो ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर।

0: जी हाँ, और ये गाना है हमारे अब्दुल मजीद जी की ओर से उनके सेठ जी के लिए। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
1: हेलो नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: शाहनवाज बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से सुनते हैं आप हमें?
1: जी मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ
0: जी। क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी वो रफी साहब का सुनना था, दुनिया के रखवाले।
0: ओके थैंक यू।

0: क्या बात है भाई, अपने बॉस को अगर ऐसा गाना कोई डेडिकेट कर सकता है तो वाकई मुजीब साहब ही हो सकते हैं भाई, और तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में, ये लीजिए, आके चले भी गए, कोई बात नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड है हमारे राशिद जी की, जो हमें सुन रहे हैं अहमदाबाद से। और अहमदाबाद की ओर आगे बढ़े उससे पहले हमें लग रहा है कि हमें चलना होगा नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मुझे गाने सुनना है।
0: क्या सुनेंगी सविता जी?
1: चूड़िया खनके खनकाने वाली आ गई।
0: खनकाने वाली आ गई या वाले आ गए?
1: पता नहीं, आने वाली आ गई।
0: ठीक है, आप सॉन्ग सुन के कंफर्म करिएगा। थैंक यू,
1: शुक्रिया
0: जी। हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो जी मैम।
0: हाँ जी नमस्कार।
2: हेलो
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं प्लीज।
2: आनंद शर्मा बोल रहे हैं, आवाज विकास कॉलोनी।
0: जी आनंद जी, हमारे सुनने हैं आवाज विकास कॉलोनी से, क्या सुनना चाहेंगे?
2: मैम गाना है मत कर इतना गुरूर।
0: ओके थैंक यू।
2: हम तो तेरी सूरत पे,
0: हाँ तेरी सूरत पे नहीं, हम तो सादगी पे मरते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, अपना नाम बताएं।
3: कांता मैडम नमस्ते, मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी मुमताज जी, क्या सुनना चाहेंगे?
3: अरे कोई गाना सुना दीजिए,
0: कोई भी अपनी पसंद का।
3: जी जी
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए सर, नमस्ते। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो कि है घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। और यह डिमांड है हमारे प्यारे राशिद जी की, चलिए सुन ले हम भी, और बजते तो नहीं लेकिन बजने की कोशिश कर लेते हैं इस गाने के साथ में। थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, एंजॉय करिएगा।

हैं, नेक्स्ट कॉलम आई बीच में कौन है? हेलो हेलो हेलो, हाँ अपने नाम बताएं। सॉन्ग बोले गुड आफ्टरनून। हेलो

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं प्लीज।
0: मैडम मैं बात कर रहा हूँ अनिल वर्मा, यहाँ सैदापुर से।
1: जी कहाँ से अनिल जी?
0: अनिल वर्मा सैदापुर।
1: जी अनिल जी क्या सुनना चाहेंगे?
0: जी मैडम कोई गाना आपने पसंद करना है।
1: जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए। चलिए अभी बढ़ते हैं हम भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की की ओर। और ये गाना है हुआ है रमेश कुमार जी की ओर से, महाराष्ट्र से, और इसमें हम ऐड करेंगे अपने प्यारे मुमताज अंसारी जी को, क्योंकि ये हमारी पसंद का गाना है भाई। एंजॉय करिए।

हाँ जी, और अगर मैं घड़ी की बात करूँ तो 3:44 हो चुके हैं बाई टू स्टूडियो क्लॉक, और हमारे बीच में आ गए मुस्तफा जी सऊदी अरेबिया से, और एक प्यारा सा मैसेज है हमारे द ग्रेट सेन साहब जी के लिए। भाई उनके मित्र लोग उन्हें याद कर रहे हैं, तो अगर आप तक आवाज हमारी जा रही हो तो प्लीज चैट बॉक्स में आ जाए। काफी दिनों से आपका इंतजार हो रहा है, लगातार 2-3 दिन से मैं नोटिस करी हूँ, तो मैंने कहा आप तक ये खबर पहुँचा देते हैं, या सेन साहब से जुड़े हुए अगर कोई भी उनके मित्र, तो उन तक ये खबर पहुँचा दीजिए कि उनके मित्र चैट बॉक्स वासी यानी हमारे उनका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बढ़ेंगे एक ब्लैक एंड व्हाइट जमाने वाले सॉन्ग की ओर, और ये सॉन्ग की डिमांड की गई है शाहनवाज जी की ओर से, जो कि हैं वहीं से जहां से आज हमें लगातार ढेर सारी डिमांड्स प्राप्त हुई हैं, यानी अहमदाबाद से।

हाँ जी श्रोताओं, अभी आपने सुना इस नगमे को शाहनवाज जी की डिमांड पे, और ये भूले बिसरे नगमों में से एक है, बैजू बावरा मूवी से है, और नौशाद अली जी इसमें संगीतकार हैं और शकील बदायूनी जी हैं गीतकार। और अगर गायक की बात करें तो आप सभी को पता है कि मेरा पहला प्यार, यानी कि अगर म्यूजिक की बात करूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। भाई सविता जी ने पूछा था खनकाने वाली आएगी, खनकाने वाला आएगा, तो भाई सुन लीजिए सविता जी, और सविता जी के साथ में सभी सुन लीजिए इस प्यारी सी डिमांड को। तीन से चार के सफर में आपकी होस्ट हैं दोस्त आरजे आकांक्षा, और अगर आपको कॉल करना है, अपनी डिमांड को ट्यून करवाना है, तो अभी वक्त गया नहीं है, मिलाइए 6393316429। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके।

0: चलते हैं अब नेक्स्ट डिमांड की ओर जो की है हमारे पास में, लेकिन उससे पहले एक कॉलर की कॉल। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: आवाज प्लीज आप लोग अपने रेडियो का पीछे से बंद करके तभी कॉल किया करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रीना जी को जो जिनका फीडबैक आ गया है सविता जी के सॉन्ग पे। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, ये डिमांड है हमारे आनंद जी की, जो हमें सुनते हैं आनंदित होकर के आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। जी हाँ, रुड़की उत्तराखंड से फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते चलते भाई फिर से एक कॉल आई है, ले ही लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अगर हम आवाज से गलत नहीं पहचाने तो अनुष्का जी हैं हमारी, क्या सुनना चाहेंगी?
2: ऐसा कभी हो सकता है कि मैम
0: नहीं नहीं कभी कभी पहचान लेते हैं, हमको दो दो ट्यून मतलब दो दो टोन एक ही जैसा लगता है, हार्मोटोन का इफेक्ट होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या जानना, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे प्लीज बताएं।
2: लाखों आशिक मर जाते हैं तेरे,
0: क्या गाना है, क्या बात है, लास्ट सॉन्ग होगा, एंजॉय करिए, टेक केयर, बाय बाय। जी हाँ, और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, काफी देर से बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन इस बार पक्का बढ़ जाएंगे। और बढ़ चलते हैं आनंद जी की डिमांड की ओर, जो कि हमें सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, और गाना है, सुनिए क्या है।

0: लगातार कॉल अभी भी आ रही है, कॉल ले लेते हैं। गाना प्ले हुआ या नहीं वो देखने की बात है। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून,
0: अपना शुभ नाम बताए जल्दी से। जी सृष्टि जी, हम अपनी पसंद का एक गाना आपके लिए डेडिकेट करेंगे, ठीक है डियर?
1: ओके।
0: चलिए फिर बढ़ते हैं इसी गाने की ओर। आनंद लेते रहिए आनंद जी के सॉन्ग के साथ।

बात है भाई, बहुत खूबसूरत सी रोमांटिक सॉन्ग को अभी आपने एंजॉय किया है हमारे प्यारे लिसनर यानी कि आनंद जी की डिमांड पे, और आवाज विकास से सुनने वाले सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और अनिल वर्मा जी का कहना है सादापुर से आप अपनी पसंद का ही गाना बजाइएगा। वैसे तो मेरी पसंद के सारे नगमे होते हैं, पर ये गाना खास है, और इसमें हम ऐड करते हैं अपने मुस्तफा जी को जो हमें सुनते हैं सऊदी अरेबिया से। आप दोनों के लिए ये प्यारा सा नगमा हमारी ओर से, क्योंकि वक्त हमारे पास में कम है, मात्र 6 मिनट और शेष है। इसमें हम कमल जी और अनुष्का जी की डिमांड भी ट्यून करने वाले हैं, और आपकी कॉल्स अभी लगातार आ रही है, लेकिन माज़रत चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे इस नगमे के साथ।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: सारे शहर में आप सा।
1: हाँ जी, और वक्त हो चला है नेक्स्ट वे डिमांड की ओर आगे बढ़ने का। और अगर आप कभी भी कॉल करें तो प्लीज रेडियो सेट से दूर होकर कॉल किया करें, आवाज गूंज जाती है। कितनी दफा मैं आपको समझाऊं, खैर कोई बात नहीं, बढ़ेंगे नेक्स्ट वे डिमांड की ओर। और डिमांड हमारे कलाम जी की है, और कलाम जी के इस सॉन्ग के बाद आएंगे हम नेक्स्ट वे डिमांड की ओर। लेकिन उससे पहले हम लेंगे इस कॉल को, काफी देर से आ रही है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज। जी शर्मिली जी, हम आपके लिए अपनी तरफ से एक सॉन्ग बजाएंगे, ठीक है? ठीक है, ओके बाय।

श्रोताओं, समय की कमी के कारण अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी प्यारी सृष्टि जी और हमारी प्यारी शर्मिली जी के लिए। हमारी ओर से मुखड़ा ही बजाएंगे और नेक्स्ट डिमांड लास्ट लेंगे हम अनुष्का जी की।

हाँ हमें मालूम है भाई, शर्मिली जी इसीलिए शर्माती है क्योंकि उनको किसी ने बड़े प्यार से देख लिया था, इसीलिए गाने उनको डेडिकेट किया था हमने। और सुश्री जी तो हमारी एकदम गुमसुम सी, मतलब बहुत गंभीर रहती हैं। तो लाल रेणु जी की भी कॉल आ रही, लेकिन अभी वक्त समाप्ति की घोषणा करती है आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। प्रमुख जी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और चलते आज की लास्ट डिमांड के साथ में। बाय, टेक केयर दोस्तों। अनुष्का जी की डिमांड एंजॉय करिए। बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now you're listening, 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, और हर बार की तरह हर गेस्ट में कुछ ना कुछ उनकी खासियत होती है। वो अपने क्षेत्र के खास होते हैं, और साथ ही साथ हम उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो भी किस तरह संघर्षों से आज वो इस पद पे आसीन हैं, या जो कुछ लाइफ में अचीव किया है वो कैसे कैसे किया है, क्या तरीका अपनाया, कितनी प्रॉब्लम से जूझे, और आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरी घड़ी में आज हमारे बीच में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका हम नाम बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं TN पाठक सर, जिन्हें हम लोग तुंगनाथ पाठक के नाम से जानते हैं, जो कि मैनेजर हैं विकास निलयम स्कूल गोंडा की। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने शो में।
2: थैंक यू।
1: और जैसा कि अभी हमने अपने श्रोताओं से कहा कि सबसे पहले तो हम आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने माता पिता के बारे में और अपने भाई बहनों के बारे में।
2: वैसे मेरा मूल निवास बहराइच जिले में विश्वनगर के निकट एक गाँव पाठकुरवा में है। मैं ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पैदाइश पाठकुरवा में ही हुई, और वहीं से हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, मेरी शिक्षा दीक्षा उन्हीं के सानिध्य में हुई। और शिक्षा के प्रति उनका जो मैंने डिवोशन देखा, जो समर्पण और त्याग की भावना देखी, उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा, और वो भावना मेरे अंदर कहीं ना कहीं घर कर गई। मैं चार भाई हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मुझसे बड़ी एक बहन है जो इसकी शादी हो चुकी है और वो अपने घर है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मैंने ग्रामीण अंचल में ही प्राप्त की। हमारे निकट एक विद्यालय खुला था मोक्षद्वार, वहीं से हमने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं गोंडा चला आया, और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हमने स्थानीय LBS कॉलेज से प्राप्त की। LBS कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे इस कॉलेज से काफ़ी प्रेरणा मिली। मुझे कुछ गुरुजनों का ऐसा आशीर्वाद मिला कि जिससे मेरे अंदर शिक्षा के प्रति काफ़ी समर्पण की भावना पैदा हुई। मैंने LBS कॉलेज से ही BA और की शिक्षा प्राप्त की। BEd की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेरा सिलेक्शन MEd में हो गया, और मैं काला कांकर चला गया। मैं एकमात्र स्टूडेंट था इसका सिलेक्शन हुआ था, और मदन मोहन मालवीय कॉलेज काला कांकर से मैंने MEd की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ से आने के बाद मैंने स्थानीय सिटी मार्टिसी स्कूल में एक साल वाइस प्रिंसिपल के पद पर
1: जी आपने पढ़ाया वहाँ पे
2: कार्य किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से हम आपकी बचपन की तरफ जाते हैं, और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया जहाँ के आप रहने वाले हैं बहराइच के विशेश्वरगंज के पास के, तो जहाँ तक हम सभी श्रोताओं को पता है कि बहुत डेवलप एरिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में और चीज़ों को जानने में उस वक्त बड़ा अभाव रहा होगा। आज की हम बात करें तो आज इंटरनेट है, बहुत सारे गाइडेंस से बहुत सारे विद्यालय और खुल गए हैं, आपके वक्त में और भी कम रहे हो, तो हम उस चीज़ को जानना चाहेंगे कि उस वक्त कैसा आपका पढ़ाई को लेकर अप्रोच था। आपने खुद बताया कि आपके पिताजी चूंकि एक टीचर थे, तो उनका कितना प्रभाव आप लोगों की पढ़ाई पर पड़ा, और आप भाई बहनों ने किस तरह से उस एरिया में रह के भी अपने खुद को पढ़ाई में बेटर रखा।
2: मैं एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पुत्र था। मेरे पिता बड़े प्रगतिशील विचारों के थे, वह समय समय पर मुझे शिक्षा के प्रति प्रेरित करते रहे, लेकिन हमारा वो जमाना 1965-66 का जमाना गरीबी से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय माता और पिता अधिकांश लोगों के जो है वो अशिक्षित हुआ करते थे, इसलिए उनसे कोई प्रेरणा मिल पाना, बस ये उनके दिमाग में एक ही चीज होता था कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो गरीबी के दिन थे। आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप आप देखते हैं, ऐसा हिंदुस्तान के स्वरूप की लोग कल्पना भी नहीं करते थे। जो कुछ शिक्षा मिल जाती थी विद्यालय से उसी में संतोष कर लेते थे, और आपका भविष्य उन्हीं शिक्षकों के पर जो है आधारित था। जो कुछ वो बता देते थे, जो कुछ सिखा देते थे, वही हमारे जीवन की प्रेरणा थी। लेकिन एक था माहौल, सच्चाई का था, ईमानदारी का था, कर्तव्य प्रायणता का था। बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करके, बड़ा ही संघर्ष करने के बाद तब कोई भी जो है बच्चा हाई स्कूल पास करता था। मैं स्वयं अपने परिवार का पहला बालक था जिसने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे दिन थे। न विद्यालय थे, विद्यालय के नाम पर आम के पेड़ हुआ करते थे, और पेड़ के नीचे बोरा और टाटपट्टियों पर बैठ करके जो कुछ भी एक अध्यापक पढ़ा देता था वही हमारी शिक्षा थी। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है काफी संघर्ष करना पड़ता था। उस समय गांव में जो है, जहां तक माध्यमिक विद्यालयों की बात है, माध्यमिक विद्यालय भी नहीं थे। दूर सुदूर जो है 3-4 मील की दूरी पर जो है कहीं एक जूनियर हाई स्कूल होता था, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से नाकाफी था।
1: यानी आपकी बातों से बहुत साफ जाहिर है कि उस वक्त रिसोर्सेज की कमी थी, और जिस तरह की बताया आपने, उस वक्त इस तरह हिंदुस्तान का स्वरूप बिल्कुल नहीं था जो अभी आज हम देखते हैं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सही बात भी है। आपने बताया कि आपके पिताजी चूंकि टीचर भी थे, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी बातों में लगता है कि आप पे भी आया। खेल कूद में आप कैसे थे? बचपना तो सबका बड़ा चंचल भरा होता है।
2: खेलने कूदने में तो बड़ा मजा आता था, लेकिन कोई साधन नहीं था।
1: कैसे खेल खेलते थे आप?
2: जब छोटा था तो हमारे यहाँ कबड्डी खेली जाती थी बिना इंस्ट्रूमेंटल, और इसके अलावा हम लोग जो है कपड़े की को लपेट लपेट करके गेंद बनाते थे और उसको पैरों से खेलते थे। बड़ा हुआ, वॉलीबॉल खेलने की आदत पड़ी विद्यालय से, आखिर में प्रेमचंद की तरह से जो है गिल्ली डंडा बनाया गया गांव में, रस्सी बुन करके नेट बनाया गया, और एक छोटा सा बाल जो है खरीद करके, और गांव के बच्चों को लेकर के जो है उसे गांव में वॉलीबॉल खेला जाने लगा। आज भी हमारे वो साथी जो कभी हमारे साथ गांव में उस नेट पर वॉलीबॉल खेलते थे अभी भी मौजूद हैं।
1: तो टीएन सर, मतलब जिस आया आपने कि रिसोर्सेज खेलने के लिए भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह आप लोग उस तरह कह सकते हैं जुगाड़ जिसे बोलते हैं, तो जुगाड़ कर करके खेलते थे, लेकिन उसका अपना एक अलग मजा होता है।
2: हाँ, वो तो मजा होता है, और वो मजा आज भी उसका एहसास है। खेल में एक खेल और होता था, लच्ची डाड़,
1: पेड़ों पे चढ़ के
2: एक दूसरे को पकड़ते थे, और गिल्ली डंडा तो हर बच्चे का लोकप्रिय खेल होता था।
1: तो कभी किसी की आंख में आंख अगर फोड़ा है तो बताइए, कुछ तो मतलब ऐसे कांड हुआ ही होगा खेलने के दौरान।
2: नहीं, फूटी तो नहीं, लगी जरूर।
1: लगी जरूर।
2: अब पता नहीं मेरे सौभाग्य से या उसके सौभाग्य से,
1: ये तो दुर्भाग्य हुआ ना।
2: ना लगना तो सौभाग्य है।
1: हाँ बिल्कुल,
2: ना लगना तो सौभाग्य है। अब पता नहीं उसके भाग्य से नहीं लगी या हमारे भाग्य से नहीं लगी। अगर लग जाती तो ऐसी कुटाई होती जो शायद जिंदगी भर याद कर।
1: बिल्कुल सही आपने कहा। पहले देखिए माँ बाप ऐसे होते थे कि गलती करने पे अपने बच्चों को मारते थे। अभी थोड़ा सा देखने में ये आता है कि बच्चों के लिए लड़ने तो माँ बाप आ जाते हैं, लेकिन हम लोग के भी माता पिता ने हम ही को मारा है जब गलती कभी भी रही है।
2: हाँ, व्यवहार में एक ये सच्चाई थी, ईमानदारी थी। जैसा आजकल आप लोग टीवी चैनलों पर सुनते होंगे कि कानून गरीबों के लिए होता है
1: जी,
2: और एनर्जिकल ड्रिंक जो है पिलाने से कोई बच्चा पहलवान नहीं होता।
1: बिल्कुल,
2: स्वाभाविक खेल खेलने से बच्चा होता है। आज की शिक्षक भी अगर हम कमी की ओर जाएं तो सबसे पहले आज का बच्चा कमरे में कैद हो गया है।
1: बिल्कुल,
2: क्यों? खेल के मैदान अपर्याप्त है। बच्चा टीवी और मोबाइल पर बैठ करके अपना खेल करता है और बुद्धि तो बढ़ रही है, शरीर कमजोर होता जाता है। इसीलिए आजकल के साइंटिस्टों का जो है ये एक जो है अनुमान है कि आने वाले दिनों में आदमी का ब्रेन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आदमी शरीर से कमजोर होता जाएगा। यह हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक दुर्भाग्य है।
1: जी हाँ, क्योंकि शारीरिक जो श्रम होता है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है।
2: जहाँ तक खाने पीने की बात है, न वो तो चीजें उपलब्ध है। आजकल का जो मॉडर्न फूड है वो और आज के बच्चों के लिए, आज के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी घातक बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल
2: जरूर है। मेरा अनुरोध है आज के माता से कि इस ओर वो ध्यान दें और अपने बच्चे का भविष्य बनाए।
1: बिल्कुल सही बात है आपने कहा कि अपने बच्चों का भविष्य बनाए। सर, अभी आपने बताया था कि आप पढ़ने के लिए बाहर गए थे, आपने बीएड किया, एमएड किया, किस जगह गए थे आप?
2: हम प्रतापगढ़ में एक जगह है काला काकर, काला काकर से हमने एमएड की उपाधि ली थी। पहली क्लास में उस समय केवल 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इसमें चौथे नंबर पर एक मैं भी था। काला काकर एक वास्तव में एक प्रसिद्ध जगह है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ के राजा दिनेश सिंह जो है वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं का बनवाया हुआ वो कॉलेज है। गंगा जी के किनारे काला काकर का वो राजभवन, सुमित्रानंदन पंत की वो कुटिया जहाँ पर रह करके उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की, आज भी शायद आपको देखने को मिल जाएगी
1: जी।
2: और वैसा जीवन, एक हॉस्टल, हॉस्टल में 16 बच्चे, और एक ऐसा ग्रामीण अंचल जहाँ पर जो है हमारे यहाँ उसको कहीं कहीं पर गोह कहते हैं, कहीं कहीं पर बिछखोपड़ा कहते हैं। रात दिन उसके संकट से गुजर करके 1.5 साल किस तरह कटा है
1: वो आप ही जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप बताएं कि आप काला कांकर गए, वहां से आपने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आप वापस गोंडा लौटे। इसी बीच में चूंकि छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो अपने हम श्रोताओं से कहेंगे कि हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा TN पाठक सर के साथ में, जो कि मैनेजर हैं विकास निलयम स्कूल गोंडा के। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
2: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गौधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज मौजूद हैं TN पाठक सर, जो कि मैनेजर हैं विकास निलयम स्कूल गोंडा से। तो जाने से पहले आपने बताया कि आप गए थे बाहर पढ़ने के लिए, उस दौरान जाहिर सी बात है आप रहने वाले बहराइच के विशेश्वरगंज के पास एक गाँव के थे। फिर आपने गोंडा से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद आप बाहर वापस प्रतापगढ़ चले गए। यहां से वहां में फर्क आया होगा। आपने 1.5-2 साल जो भी गुजारे होंगे उसमें बहुत कुछ देखा जाना होगा। तो कोई अगर मेमोरीज आप बताना चाहे वहां की, कोई अगर संघर्ष बताना चाहे या कोई अचीवमेंट बताना चाहे।
9: काला काकर वैसे तो एक विकसित कस्बा कह लीजिए, लेकिन गाँव के अतिरिक्त और वहां कुछ मिला नहीं। ये वो गांव है जहां पर आजादी के आंदोलन के समय विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। आज वो तिकोना पार्क आज भी काला काकर में जिंदा है। गंगा के किनारे ये ऊंची जगह है, यहाँ पर हैंडपाइप सक्सेस नहीं होते थे, कुओं से पानी भरा जाता था। स्नान के लिए गंगा जी में ही रोज प्रस्थान करना पड़ता था। चूंकि हम लोग जो है, एक हॉस्टल था जो है लगभग उसमें 20 कमरे थे, 16 का ही सिलेक्शन हुआ था और 16 लोग जो है हम लोग यहाँ से गए गंगा स्नान करने के लिए उस काला काकर के राजभवन में, जिसकी नींव आज भी जो है गंगा जी के थपेड़ों को झेलती है। हम लोग स्नान करते रहे, लेकिन बाल जीवन बालक भी न कहे वयस्क, हम लोग गंगा जी में पानी कम था। आगे बढ़ते गए, अचानक क्या हुआ कि हमारा एक साथी जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव था, वह गंगा जी में डूबने लगा। हम लोग बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, गोरखपुर के लड़के, किसी को तैरना नहीं आता था। परिणाम यह हुआ कि वो लड़का गंगा जी की धारा में डूब गया। सब लोग बैठकर रोने लगे। अब यही सोचा जाने लगा कि वार्डन से क्या जवाब देंगे, उसके माँ बाप से क्या जवाब देंगे। अचानक देखा कि उसकी जो है बॉडी गंगा जी में ऊपर तैरने लगी। हम लोगों ने बगल से एक बांस उठाया और बांस लेकर के हम उसको धीरे धीरे धीरे धीरे उस बॉडी को बाहर लाए। देखा कुछ बॉडी गर्म थी, तो जैसा कि हमें प्राथमिक चिकित्सा में सिखाया जाता है कि अगर कोई पानी में डूबता है तो वो उसके पेट में पानी भर जाता है। हम लोग उसके पेट पर चढ़ कर के उसके पेट का पानी निकाला। निकालने के बाद जो है उसको देखा जो शरीर गर्म है, वहीं से एक जीप अरेंज की और जीप से लेकर के उसे प्रतापगढ़ भागी, जो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर था। 80 किलोमीटर ला करके उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 3 घंटे के बाद हमारा सौभाग्य जाग गया। हमारा वो साथी, उसकी आंखें खुल गई। यह घटना आज भी याद है 35 सालों के बाद।
8: क्या बात है, ये एक बहुत बड़ी घटना है कि दोस्तों के साथ आप लोग गंगा जी में स्नान करने गए, उसमें आपके एक फ्रेंड को इस तरह से डूबते हुए आपने देखा, बाद में एक बॉडी की तरह वो पानी के ऊपर आ गई और उसके बाद आपको अगर ये आभास हुआ कि अभी ये जिंदा हैं, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बात कही कि आपने फर्स्ट एड का एक नाम लिया। फर्स्ट एड शायद हम लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, यानी प्राथमिक उपचार हमने नाम तो सुना है लेकिन हमको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट एड का काम ही होता है जहाँ पे सडन कोई चीज़ हो जाए वहाँ डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ आसपास के लोग ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपकी बात से मुझे ये समझ में आता है कि प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है एक इंसान की कीमत का पता होना या किसी भी जान की। आप लोगों ने उनको बचाया, 80 किलोमीटर दूर लेके गए, फिर उनकी तीमारदारी की, 3 घंटे बाद उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। तो ये जो एक इंसानियत वाला पार्ट है, एक भला करने वाला पार्ट है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक विद्यार्थी के जीवन में ये सारी चीज़ें कर करके सीखना ये बहुत बड़ी बात है। आपने उस टाइम किया था लेकिन उस टाइम का असर जाहिर सी बात है लाइफ के इस पड़ाव तक भी आपके साथ में ही होगा। आज भी जहाँ भी मौका पाते होंगे लोगों की हेल्प करते होंगे, क्योंकि वो चीज़ें जब आपने बताया कि उस टाइम में जवानी में आपके साथी वयस्क अवस्था में थी, जब आप पढ़ रहे थे किशोरावस्था में थी, तो वो तो आज भी रही होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने बड़ा एक अच्छा सफ़र गुजारा कह सकते हैं, या संघर्ष भरा भी बोल सकते हैं इसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आप गोंडा आ गए। गोंडा आने के बाद सबसे पहला अगर हम जॉब की बात करें, क्योंकि भाई अब वापस आ गए थे तो घर वालों को भी होता है कि ठीक है हमने पढ़ा तो दिया है, भाई आपने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, अब बताइए करना क्या है। तो उसके बाद आपने सबसे पहली जॉब के रूप में क्या किया और कहाँ किया?
9: सबसे पहले हमने यहाँ के स्थानीय सिटी मार्टिस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर नौकरी की। कितनी सैलरी मिलती थी उसे छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लगभग 1.5 साल हमने यहाँ पर नौकरी की और उसके बाद में मेरी जिज्ञासा थी कि जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने आज तक अर्जित किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराया किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। अगर हम ज्ञान अगर किसी के काम नहीं आता, वो ज्ञान नहीं है। अगर कोई भोजन किसी की सेहत नहीं बनाता तो वो भोजन नहीं है। इसलिए हमने गोंडा में ही एक विद्यालय खोलने के बारे में सोचा और यही के साहबगंज बोलने में हमने एक 500 रुपये किराए पर मकान लेकर के हमने विद्यालय की शुरुआत किया। जिस समय मैंने विद्यालय खोला उस समय मेरे पास केवल 120 रुपये थे। 120 रुपये में ही 55 रुपये क्या हमने एग्रीमेंट कराया और उस मकान की चाबी लिया। 9 जुलाई 1984 को हमने विद्यालय का शुभारंभ किया। चूंकि मैं विद्वता को बहुत प्राथमिकता देता हूँ, इसलिए ढूंढने लगा। लोगों ने कहा किसी अधिकारी को, मैंने अधिकारी की जगह जो है एक विद्वान आदमी को चुना और स्थानीय नगर के निवासी पंडित शांति प्रसाद शुक्ला के द्वारा हमने उसको उद्घाटन कराया और विद्यालय का शुभारंभ किया। मेरा सौभाग्य रहा, विद्यालय का सौभाग्य रहा कि इस विद्यालय की स्थापना के समय हमें कुछ ऐसे लोगों का सानिध्य मिला जिन्होंने विद्यालय की बहुत बड़ी सेवा की। उनमें तीन नाम प्रमुख रूप से है आते हैं। एक है मोतीगंज के निकट एक गांव है पंडित तुरवा, वहाँ की श्री राजेश स्वर्गीय श्री राजेश पाठक जी, भरतलाल मिश्रा और के पी तिवारी जैसे कर्मठ लोगों का साथ मिला और हमने अपनी यात्रा शुरू की और विद्यालय को अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किया।
8: जी, आपने बताया कि आपने विद्यालय की स्थापना कुछ कर्मठ लोगों के साथ मिलकर की, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहते भी हैं कि जब नियत होती है तो रास्ते अपने आप दिखते जाते हैं, खुलते जाते हैं और आप उस पर कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं। आपने विद्यालय कब खोला?
9: 9 जुलाई 1984 को।
8: आज इतना समय बीत गया है, आप विद्यालय चला रहे हैं, आपने एक पूरा सफर देखा है अपने विद्यालय का। आज गोंडा के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके विद्यालय को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने विद्यालय डाला था तो मन में क्या सोच के डाला था कि आप क्या करने वाले हैं, और आज इतने सालों बाद क्या उन चीजों को आप पूरा होते देख पा रहे हैं जो आपने तब सोचा था?
9: मैंने जब विद्यालय की स्थापना की और विद्यालय को जब मैंने खोला तो मेरा पहला उद्देश्य यही था कि जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको क्यों ना प्रयोग में लाया जाए, वो क्यों ना किसी के काम आए। इसलिए मैंने विद्यालय की शुरुआत किया और हम लोगों ने अटूट परिश्रम किया। इस प्रयास में हमने कई शिक्षा प्रणालियों का भी प्रयोग किया, मोटिवेशन, के अलावा बच्चों से आत्मीयता का भाव, एक ऐसा व्यवहार जिससे बच्चे और हमारे में कोई दुराव न हो महसूस हो, मैंने उसका सफल प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ आज दर्जनों जो है लड़के हमारे विद्यालय के आईएएस पीसीएस करके आज भी टीएन पाठक जैसा शब्द नहीं भूलते हैं, और यह मेरा सौभाग्य।
8: क्या बात, तो आपने बताया कि दर्जनों ऐसे लोग हैं जो आईएएस पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पे भी आसीन हैं, जो कि आपके यहां से पढ़ के निकले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कॉलेज के बारे में बताइए अपने कि ये कॉलेज एग्जैक्ट कहां मौजूद है, कितने स्टाफ हैं, किस क्लास तक का आपका कॉलेज है और क्या मान्यता है?
9: यह विद्यालय बड़गांव पुलिस चौकी के से फैजाबाद सर्कुलर रोड पर स्थित है। उससे पहचान तो स्कूल होती है, लेकिन हम अपनी पहचान बताने के लिए श्री राम नर्सिंग होम का नाम लेते हैं। पहले किसी न किसी चीज का तो सहारा लेना पड़ता है।
8: बिल्कुल,
9: मेन रोड से लगभग 50 मीटर अंदर ये विद्यालय स्थित है। विद्यालय में लोअर केजी से लेकर के हाई स्कूल तक शिक्षा दी जाती है। इसमें विद्यालय में लगभग 18 टीचर और 3 जो है फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं। विद्यालय में विद्यालय की अपनी 2 निजी बसें हैं जिससे बच्चे उनके घरों से लाए जाते हैं, और विद्यालय के पास जो भी आवश्यक संसाधन होने चाहिए उसको विद्यालय ने अपने प्रयास से उसको सुसज्जित किया है।
8: जी, तो आपने बताया कि ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं मौजूद हैं जो एक बेसिक्स कॉलेज की एक नीड होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि हमारे श्रोताओं को हम बताएंगे कि एक म्यूजिकल ब्रेक का भी टाइम हो चला। आने के बाद हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपका विद्यालय किन मायनों में बाकी विद्यालयों से अलग है, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है, किस तरह टीचर को आप हायर करते हैं, किस तरह बच्चों को आप शिक्षित करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको कितनी देते हैं, कल्चरल इवेंट किस तरह के आप कराते हैं बच्चों में, उनके सर्वांगीण विकास को लेके उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गौधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं TN पाठक सर, जो कि विकास निलयम स्कूल के मैनेजर हैं। तो अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले सर आपसे ये जानने के लिए कहा भी था अपने श्रोताओं से कि हम आने के बाद आपसे जानेंगे कि आपका विद्यालय किन मायनों में बाकी विद्यालयों से अलग है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें।
9: पहली बात तो यह है कि हमारा विद्यालय दिखावे से दूर है। हम हमारे शिक्षकगण यह पूरा प्रयास करते हैं कि स्कूल में किसी भी तरह का दिखावा न हो। आपको अधिकांश है, आपको देखने को मिलेगा कि हर विद्यालय में दुनिया भर की चमक धमक, गार्जियन को अबलाइज करने के लिए फर्जी नंबर देना और यह प्रयास करना कि अगर संभव हो सके तो आउट ऑफ 100 वर्ड तक दे देना। ये जितने भी आजकल आपके माफिया के स्कूल हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ए ए ए ए ग्रेड 100 100 100 100, मुझे उन पर दया आती है। कंप्लीट कोई नहीं होता, न शिक्षक होता है कंप्लीट, सिर्फ भगवान को माना जाता है और कंप्लीट दुनिया में कोई नहीं होता है। एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला एक टीचर जो है वो उसको भी जो है सीख के आना पड़ता है, तब क्लास में पढ़ाना पड़ता है। अगर ये कहे कि हम अपने आप में पूर्ण हैं तो ईश्वर के अलावा और किसी व्यक्ति को पूर्ण नहीं माना जा सकता, इसलिए उन अंकों पर हमें दया आती है। दूसरी चीज, जहां तक टेक्निक का सवाल है, आज के विद्यालय टेक्निक से तो पूरी तरह दूर है। समय बदल गया है, माहौल बदल गया है, परिस्थितियों के अनुकूल हमें अपनी भाव भंगिमा भी बदलनी पड़ेगी। हमारे देश में NCERT ऐसी संस्थाएं हैं जो निरंतर इस पर शोध कर रही हैं, उनकी विधियों को अप्लाई करना, स्मार्ट TV, स्मार्ट इक्विपमेंट्स, का प्रयोग करना आज के परिवेश में आवश्यक हो गया है। हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं, हमारे कई कक्षाओं में आपको स्मार्ट टीवी मिलेगी। हम लगभग 8 साल तक जो है स्मार्ट टीवी से ही अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए हमें अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करना पड़ता है, और प्रशिक्षित करके उनको हमें वो टेक्निक बताना पड़ता है, तब जा करके हम अपनी शिक्षा विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों की परेशानी, बच्चों से लगाव रखना, उनसे अपने को जोड़ना शिक्षण की का जो है एक सबसे प्रमुख अंग है। जब तक हम अपने आप को जो है उससे जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। शिक्षा एक मानसिक प्रक्रिया है। जब तक कोई बच्चा मन से नहीं जुड़ेगा, घोड़े को पानी की बाहुली तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन जबरन पानी नहीं पिला सकते। शिक्षा देने के लिए मन से बच्चों के साथ जुड़ना पड़ता है, और जब तक यह गुण हमारे शिक्षकों में नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देगा।
8: बिल्कुल सही कहा आपने।
9: हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन जितना एक डेवलप्ड कंट्री में है, लेकिन फिर भी जितना है उतने में ही हम पूरा प्रयास करते हैं।
8: ओके, आपने बताया कि स्मार्ट क्लास के थ्रू आप पढ़ाते हैं, और ये बहुत सही बताया आपने कि बच्चों के लेवल पे जाके ही उनको पढ़ाया जा सकता है, उनसे घुल मिल के, यानी उनको जान के। आपने शिक्षकों की बात की कि शिक्षक सबसे अहम रोल अदा करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपके यहाँ जो शिक्षक रखे जाते हैं, आप उनको किन बिहाफ पे रखते हैं? इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा आप किन चीजों पे फोकस करते हैं कि आपके विद्यालय के शिक्षक में क्या चीजें होनी ही चाहिए?
9: विद्यालय के शिक्षक में पहला तो यूनिफॉर्म आता है।
8: यूनिफॉर्म आपके यहाँ शिक्षक को भी है?
9: हमारे यहाँ साड़ी पहनना अनिवार्य है। यहाँ पर एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अगर आप एक सत्यनारायण व्रत कथा के लिए एक पंडित को आमंत्रित करते हैं, अगर वो पंडित जींस टॉप पहन के आता है और टाई लगा के आता है, तो क्या वो अपने धर्म का पालन करता है? क्या वो उसका ड्रेस आपको अखरता है या नहीं अखरता है? शिक्षक का की एक वेशभूषा होती है, शिक्षक का एक पहनावा होता है, शिक्षक के अपने एक विचार होते हैं।

0: मैथ की योग्यता का आकलन करते हैं, अगर हमारी लैंग्वेज के लिए है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो हम उसकी योग्यता को जांचने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षक को। दूसरी चीज होती है पंक्चुअलिटी। हम भी शिक्षक हैं, आज हमको जो है 40 साल हो गए यही काम करते करते, लेकिन हम भी अपने आप से जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, और हमें आज भी सीखना पड़ता है और आज भी सीख करके क्लास में जाना पड़ता है। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। मैं बाहर जो है जाड़े का दिन था और मैं बाहर कुर्सी पर बैठा था। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आती है और जो शायद लोअर के जी की थी, उसने हमसे कहा, गुड मॉर्निंग सर। कहा गुड मॉर्निंग। कहा सर जी एक बात बताएं। कहा बोलो। कहा आप गुस्सा मत किया कीजिए, आप जब हंसते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो ये सीखना लर्निंग एक आजीवन प्रोसेस है, और इसको इससे हमें अपने को हटाना, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कर्म के प्रति विलग करना।
1: बिल्कुल सही बात बताया आपने, और आपकी बात सुनने के बाद मुझे बड़ा एक अच्छा सा फील आया कि एक छोटी सी बच्ची अगर आपसे आगे कहती है तो उसके बाद भी आप अपनी पर्सनालिटी में ये देखते हैं कि हाँ क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है, और उसके बाद आप उस पर काम भी करते हैं। इस एज में आके अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप सीख रहे हैं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी बात है कि सच में छोटे से छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बशर्ते हमको इतना फ्लेक्सिबल होना है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि हाँ हो सकता है हमारे अंदर भी ये कमी हो, ना कि ये कि नहीं हमको तो सब कुछ पहले से ही आता है, और यही चीज़ शायद फिर आगे बढ़ने नहीं देती है कि आपको जब पहले से सब कुछ आता है तो आपका माइंड कोई फिर कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं आजीवन विद्यार्थी रहूँगा, सीखता रहूँगा, तो फिर वो कोई जानवर हो, वो इंसान हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो आदमी हो, वो औरत हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप सीखते हैं और सीखते चले जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आपके जीवन का हिस्सा है। सबसे अच्छी बात तो ये है। इसी के साथ बच्चों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए महज पढ़ाई तो ज़रूरी नहीं होती है, उनको वैल्यूज सीखनी होती है, उनको दुनियादारी समझनी होती है, उनको साहित्य को समझना होता है, जिसके लिए बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स कराए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, उसका आपके कॉलेज में कितना ध्यान रखा जाता है?
0: हमारे कॉलेज में वैसे अब तो पाठ्यक्रम में भी आ गया है डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता बच्चों में, और उसके माध्यम से बच्चों की योग्यता परीक्षण किया जाता है, उनको सिखाया जाता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। उनमें तार्किक जो है तार्किकता का भी जो है भाव लाया जाता है। हम लोग कुछ डेली तो नहीं संभव हो पाता है, लेकिन हम लोग जो है वीकली या हाफ मंथली हम लोग इस तरह का जो है सब्जेक्ट दे करके बड़े बच्चों को में ऐसी योग्यता का विकास करते हैं। छोटे बच्चों में अपने को एक्सप्रेस करने की भावना, अपने आप को व्यक्त करने की भावना, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, हम लोग बराबर यह बच्चों को, और उसमें काफी कुछ बच्चे उसमें हम, जबकि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं, लेकिन चोरी छुपके है उस योग्यता का विकास करते हैं। और कभी कभी देख करके तो हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चों में ऐसी योग्यता का विकास हुआ, कहीं ना कहीं हमारा प्रयास सार्थक रहा।
1: क्या बात है, ये बड़ी प्यारी बात आपने कही, और कहीं ना कहीं आपको इन बच्चों का ख्याल रहता है कि उनमें तार्किकता आए, वो थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ आती साथ

0: आपने बताया कि अपने जो भावनाएं होती हैं या जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका पोएट्री भी होती है, डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है यानी गायन भी होता है, नृत्य भी होता है और काव्य पाठ भी होता है, ताकि बच्चा हर तरह से सीखे, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ये बात तो बहुत अच्छी लगी। और आज इवन बल्कि जो भी कुछ हमने आपसे पूछा आपके कॉलेज के बारे में, आपके बारे में, जान के बहुत खुशी हुई। और आपका जो एक जीने का पैटर्न है, जो तरीका है, वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगा। हमारे इस वक्त बहुत सारे श्रोतागण आपको सुन रहे हैं और उनको काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं और आप हमारे बड़े भी हैं और बड़े हमेशा मार्गदर्शक हैं।
1: बीच में एक बात टोकना चाहेंगे आपको।
0: जी जी जी बताइए।
1: शिक्षा आत्मा से जुड़ी हुई एक चीज है। हमने वो दिन देखा है जब आकाश में उड़ती हुई चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी है, सवेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में दिखाई दिए हैं, उन्हीं को पालने में हमारा जीवन बीत गया है, उन्हीं के साथ खेलने में हमारा बचपन बीत गया है। इसीलिए इतना लगाव है उनसे कि चाहे दिन हो या रात हो उनको भूल नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बड़ी विचित्र बात यह है कि कभी कभी तो जब हफ्तों क्लास नहीं लेते हैं तो कभी कभी रात में स्वप्न में भी उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर
0: सिखा देते हैं। क्या बात है।
1: रहते हैं वो जीवन से इतना भी जुड़ा है, इतना जुड़ गया है कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी नित्य कम से कम 3 पीरियड 4 पीरियड पढ़ाना जीवन का एक अंग बन गया है और उसी में हमारी सुख, हमारा सुख है, उसी में हमारी शांति।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। 3 से 4 पीरियड पढ़ाना मतलब ये है कि आपके डेडिकेशन को दिखाता है, आपका जो भी झुकाव है शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति एक सिखाने की जो ललक है वो कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या में नजर आती है और साफ नजर आती है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप स्वस्थ हो जाएं जल्द से जल्द और आप बच्चों से और ज्यादा जुड़ पाएं और ज्यादा एफर्ट लगा पाएं, क्योंकि इसमें आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। और हमारी ऐसी मनोकामना है कि ये जल्द ही होगा और जिस तरह से आप लगे हैं, आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो आप जिस सोच के साथ इस काम को करना आपने स्टार्ट किया था 1984 में, वो सोच आपकी पूरी हो 2023-24-25 में और भी बच्चे आईएएस पीसीएस बन के निकले या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं और कामयाब हो और एक नाम वो हमेशा याद करें, टीएन पाठक। ये हमारी आपसे कहेंगे कि एक दुआ है आपके लिए, एक प्रार्थना है कि ये ऐसे ही हो और ज़रूर हो। अच्छा सर, अब ये जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे कि हम हर गेस्ट से करते हैं कि आप इस वक्त बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है, तो आपको क्या लगता है, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बताइए कि आने वाले दिनों में ये गोंडा वासियों के लिए या इसको सुनने वाले जो लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, उनके लिए क्या बदलाव ला रहा होगा?
1: उसका बदलाव तो मैं खुद बैठा हूँ। आज मैं गोंडा के सभी विद्यालयों से अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करें, बच्चों के साथ जुड़े, हमारी बात उन तक पहुंचाने में आपका जो चैनल है एक अद्भुत माध्यम है। आपका प्रयास बड़ा ही सार्थक है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और हम लोगों का सहयोग भी यदि आवश्यक हो तो हम इसके साथ जुड़ते जाए। यह हमारे जिले के लिए, हमारे नगर के लिए एक गौरव की, एक कार्य सम्मान की बात होगी। इससे बढ़िया क्या होगा अगर हमारा गोंडा कुछ अलग होगा।
0: क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसा कि आपने कहा, अगर जरूरत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें जरूरत है, आप सभी की जरूरत है, क्योंकि आप गोंडा वासियों का प्यार ही हमको दिन ब दिन मिलता जा रहा, उसी से ही हम बढ़ रहे हैं। और हमारी भी कोशिश है कि अपने समाज के लिए, अपने शहर वासियों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस वालों के लिए ऐसी चीज़ों को लाए, ऐसे लोगों से मिलाए ताकि उनको प्रेरणा मिले, वो भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ, उनकी भी काम की चीज़ों को हम बता पाए, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में एक स्माइल लाने का, एक मुस्कुराहट लाने का हम काम करें। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अपने श्रोताओं से एक बार हम फिर बता दें कि आज हमारे बीच में मौजूद थे तुंगनाथ पाठक जी, जिनको हम सभी लोग टीएन पाठक के नाम से जानते हैं, जो कि विकास निलियम स्कूल के मैनेजर हैं और साथ ही साथ दो जगह इस स्कूल की ब्रांच है, एक गोंडा में जैसा कि आपने बताया सर्कुलर रोड पे है, एक है आर्यनगर गोंडा में। और जिस तरह से हमने सर के बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनके कॉलेज के बारे में जाना, वो सब कुछ इंस्पायरिंग था। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर से हम यही अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई कल फिर हम हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनसे जुड़ी हुई जिंदगी के बारे में, उनके किस्सों के बारे में, उनके काम के बारे में जानेंगे। सो इसलिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सारे बोलो बेवफा, जैसे लग रहा है जयकारे लग रहे हैं। लेकिन सच पूछूं तो शनिवार को जयकारे वाला ही सीन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बेवफाओं ने परेशान किया होता है। लेकिन उस परेशानी से परेशान होने का क्या मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और हम परेशान हो चुके हैं, और अगर बेवफाई का भी बिल्ला साथ लेके चलेंगे तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो चलो चलो चलो चलो भाई, सारे बोलो बेवफा। बेवफाई को कहते हैं टाटा बाय बाय, और हम बस कहेंगे कि हमें बताएं और क्या होने वाला है, कब और कहाँ कैसे। तो बिल्कुल, जब भी कब कहाँ कैसे वाली सिचुएशन में आप आ जाते हैं, दुविधा में, तो आपकी दुविधा दूर करती है आरजे बीना और आपके डॉक्टर लव। तो बिल्कुल, अपनी तबीयत को अगर करना चाहते हैं वापस से पहले जैसा, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, सिर्फ डायल करिए 6393-31-64-29। आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, अपनी पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 93.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

और हाँ हाँ कह के हम लोगों ने भाई देखिए क्या हाल करा दिया है, और हमारी जो कहते हैं ना कि सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। हाँ हाँ ये वर्क फ्रॉम होम वाला स्ट्रेस भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, और जैसे लग रहा है कि क्या हो जाएगा, और उसमें भी कुछ लोग दिल तोड़ने जैसे काम भी कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। और यार मैंने हाल ही में सुना है कि अभी एक और ड्रम मैटर आ गया है सामने, ड्रम मैटर तो समझ ही रहे होंगे, अब क्या ही शब्दों में बयां करूं भाई, आजकल लड़के खतरों से मतलब एकदम खाली नहीं है, लड़कों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल मैं नहीं चाहती कि हमारे लड़कों के ऊपर भी किसी तरह का खतरा मंडरा है, लेकिन सतर्क करना मेरी मतलब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो जितने भी लोग हैं खास तौर पे मेरे मतलब जितने भी लड़कों की मतलब वो है, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज जरा कोशिश ये करें कि हमारी तरफ से अपने घर के आसपास जहां भी नीला बड़ा किसी भी तरह का ऐसा साइज का ड्रम या कुछ भी दिखे जिसमें आप आ सकते हैं, उन सबको हटा दें, नहीं तो आपकी मतलब जिंदगी जो है वो खतरों से खाली नहीं होगी, ठीक है? तो इस बात पे ध्यान दीजिए, नहीं तो भाई मशक्कत हो सकती है। और इसी के साथ मुझे ये गाना याद आ जाता है, मैं हारा जैसे टूटा हुआ हूँ सितारा, क्या बताऊँ, सच्ची बता रही हूँ, सितारे जैसे हम कहीं टूट ना जाएं और कहीं नीले ड्रम में भर ना जाएं। अभी जल्दी वहाँ से मतलब न्यूज़ आई है मुंबई से कि एक लड़कों को फिर से मतलब ड्रम में पैक करके फेंक दिया गया है, और ये एम्प्टीनेस जैसी सिचुएशन खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

हाँ, एक बात और मुझे याद आ रही है कि ना सिर्फ नीले ड्रम में बल्कि इस बार वाला जो मैटर सामने आया है वो हरे ड्रम में सामने आया है। तो सिर्फ नीले ड्रम को टारगेट मत करिए, आपके साथ हरे ड्रम में भी कांड हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जनहित में जारी है ये जो सूचना है, और मैं नहीं चाहती आपके साथ कोई भी खतरा या खतरे से जुड़ी कोई चीज़ हो, इसीलिए मैं मतलब बहुत डरती हूँ। हमारे साथ सिर शर्मिली हैं। शर्मिली कैसी हैं? गुड इवनिंग, इतने सारे कप चाय, थैंक यू सो मच। और अनिल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। इंतज़ार कर रही हूँ क्या करने वाले हैं आप लोग। एंजॉय करिए और सतर्क रहिए।

0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: तो डॉक्टर लव साहब, क्या हाल है? क्या आपको पता चला एक खतरनाक बात?
1: जी हाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले स्वागत नहीं करेंगे हमारा?
0: स्वागत है आपका, वैसे तो स्वागत आपका हम क्या करेंगे, आपके क्लिनिक पे मिठाइयों के डब्बे से स्वागत होता है, तो यहाँ बातों से स्वागत करके क्यों ही आपको मतलब परेशान करें।
1: हाँ मतलब वही ना। हाँ चलिए।
0: हाँ वैसे भी आज आपको मतलब आज आपकी बात से खिली है, मार गिफ्ट से लदे हुए हैं, बट सावित्री था, एक एक पत्नी ने एक एक गिफ्ट दिया होगा तो 30 गिफ्ट हो गया।
1: नहीं ये उल्टा कह रही है, एक एक पत्नी को गिफ्ट देना पड़ा।
0: ओ क्या कहने,
1: अब जान लीजिए एकदम हालत टाइट है
0: सर जी। पहला तो दुख ये था कि डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा दाम, लेकिन अभी न्यूज जो मैंने देखी है मेरा दिल तार तार कर दिया।
1: क्या हो गया?
0: मतलब तीन तार की चाशनी बना दिया। एक लड़का मुंबई में, उसकी गर्लफ्रेंड ने की पत्नी प्रेमिका ने, उसने उसको हरे ड्रम में पैक करके नदी में फेंक दिया। सच्ची घटना। हमको लड़कों की चिंता होने लगी और आपकी ज्यादा।
1: मतलब हरे ड्रम में पैक किया और फिर फेंक दिया,
0: मतलब जान से मार दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेचारा मार डाला गया। तब से मुझे अपने लड़कों की चिंता होने लगी, लिसनर्स की। बड़े दुख में रहते हैं, किसी को बेवफाई का मैटर चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, और ये वाला जो ड्रम वाला मैटर था ये फिर से हाईलाइट हो गया। मैंने बता दिया है, मतलब अभी तक मैंने वही बात क्लियरिफाई की कि रंग पे मत जाओ, वो सब आकार की चीजें जिसमें तुम फिट हो जाओ वो सब हटाओ
1: घर से, मतलब अब कनस्ता
0: नहीं। नॉट ओनली द नीला ड्रम, मैं तो कहती हूँ घर में बॉक्स वाला बेड भी रखना बंद कर दो।
1: हाँ ये बात एकदम सही, मतलब ये जनहित में जा रही है।
0: बिल्कुल भाई, हरे ड्रम का मैटर सुना मैंने, कहा ये लोग नीला नीला करके चिल्ला रहे थे।
1: हाँ।
0: अब मतलब जब जिंदगी आपकी किसी भी ड्रम में फिट होके खत्म हो सकती है, तो घर में कोई बड़ी ऐसी आकार की चीज ना रखें जिसमें आप, तो सर जी थोड़ा लंबे चौड़े तो आपके घर में तो ऐसे सामान कम ही होंगे।
1: हाँ,
0: 6 फुट के आदमी के लिए 6 फुट का ड्रम होना मुश्किल है। हाँ लेकिन पहले के जमाने में वो चलते थे, वो याद है आपको, गेहूं रखते
1: क्या कहते हैं
0: आप, उसमें आराम से फिट हो जाएंगे।
1: नहीं वो मैं पाया ही नहीं।
0: वो नहीं है, गेहूं किसमें रखते हैं?
1: गेहूं किसमें रखते हैं? बोरी में रखते हैं।
0: अच्छा बोरी में ही रखते हैं, बोरी में भी फिट हो सकते हैं।
1: नहीं बोरी में,
0: बोरी में फिट हो सकते हैं।
1: 30 किलो की बोरी में कैसे फिट हो जाएंगे?
0: तो बड़ी बोरी, 2 बोरी में। किसने कहा गालिब कि हमें सीधा भेज दिया जाएगा?
1: अच्छा
0: किसने कहा गालिब हमें सीधा भेज दिया जाएगा? उस बेवफा के पास आ रही थी, वो काट करके भी हमको दफनाएगा।
1: ये मतलब गालिब ने नया शेराज कहा।
0: हाँ गालिब ने तो भाई कट पीस करके 2 बोरी में डाल सकते हैं।
1: अच्छा ये बात है, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन हमारी सभी पत्नियाँ बड़ी समझदार जागरूक।
0: बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समझदार में दिक्कत आ रही, कम समझदार वाली क्यों करेंगी इतना कांड?
1: नहीं कम समझदार वाली
0: प्रॉब्लम बड़ी समझदार वाली में ही है। तो थोड़ा हमारे मतलब मैं कहूंगी कि लिसनर्स, और लिसनर्स खास तौर पे मेल, मैं ऐसा नहीं, हमारी महिला लिसनर जितनी भी है सब बुद्धिमान है और ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगी, लेकिन बाकी जो हमारे मेल लिसनर्स हैं उनको अगर डर सता रहा हो, भाई देखिए दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से पहले सावधानी भली,
1: सावधानी
0: हटी दुर्घटना घटी पूरी सब्जी बटी।
1: अच्छा तो ये इससे ये अगर कहा जाए कि शादी नहीं की जाए तो क्या अच्छा है?
0: तो गर्लफ्रेंड बनाना कौन बंद कर देगा? नहीं तो हमारे यहाँ इतने बुद्धिज्म वाले लड़के नहीं हैं कि भगवान बुद्ध बन के बैठ जाएंगे मोक्ष की उसमें।
1: नहीं तो लड़के ऐसे नहीं है, तो उनके अंदर जो है वो संन्यास के लिए प्रेम जागृत किया जाए। आवाज से जो है वो हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर लव बन जाए।
0: ऐसा ना करिए, प्रेम ही दुनिया का आधार है।
1: तो प्रेम हो, लेकिन
0: आपने ये वाली ये कृष्णा हृदयम देखी?
1: नहीं देखी।
0: मूवी आई है?
1: नहीं देखी।
0: उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण अपना हृदय छोड़ के गए थे धरती पे, और कहा जाता है बद्रीनाथ में भगवान के अंदर वो हृदय अभी भी धड़क रहा है धक धक।
1: अच्छा।
0: हाँ भगवान कृष्ण का, और द्वापर से सोचिए अभी तक रखा है वहाँ पे, मतलब डॉक्टर हैरान है कि क्यों इसमें धड़कन की आवाज आ रही है।
1: अच्छा ऐसा है।
0: हाँ लकड़ी का दिल उसमें रखा है, अब लकड़ी के अंदर असली दिल है क्या है भाई, मैं तो भगवान नहीं जाने ये सब, लेकिन आप ये सोचिए भगवान अपना हृदय क्यों छोड़ के गए?
1: क्यों छोड़ के गए? ताकि प्रेम करना बंद ना हो।
0: बिल्कुल,
1: लोग हमसे प्रेम
0: का असर, प्रेम धरती पे ही सब कुछ बचा सकता है, प्रेम युद्ध रोक सकता है, प्रेम दुनिया का संचार कर सकता है। प्रेम अगर आपने वृक्षों से कर लिया तो प्रदूषण हट सकता है।
1: हाँ।
0: प्रेम जीवन का आधार है।
1: हाँ, प्रेम जो है अगर आपने भगवान की भक्ति में कर लिया।
0: अब तो, देखिए अब भक्ति भक्त तो लोग तो थोड़ा कम ही हमारे जान पहचान वाले, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं बहुत ही निजी बात कह रहे हैं कि हरा ड्रम वाला मैटर देखने के बाद हमारे मन में बस एक डर बैठ गया। क्योंकि मैंने हाल ही में एक जनाब के घर गई, मेरे लिसनर ही हैं, उन्होंने कहा कि मैडम चाय पे आइएगा। हम कहे कि चलो नाश्ते पे चलते हैं, चाय पे जाने का क्या मतलब, कोई जाओ भी और चाय पी के चले आओ,
1: उनसे ज्यादा तो सीधे खाने पे जाना चाहिए आपको।
0: नहीं, हम नाश्ते पे चले गए थे, नाश्ते का टाइम था। बहरहाल हम खाना खा के उठे, टाइम था नाश्ते का, खाने तक रुके, नाश्ता खाना दोनों करके आए। तो नाश्ता खाना करने के बाद मुझको ये बात पता चली कि उनके घर में ना सिर्फ नीला ड्रम बल्कि काला ड्रम भी था। भाई हम देख के तो डर गए, लेकिन मैंने कहा कि अभी नाश्ता और खाना दोनों ही नहीं मिलेगा अगर मैंने डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दिया। जाते जाते मैंने लिसनर मारे, मेल थे चूकी, मैंने कहा आपके ये सब ड्रम हम आप बेचते बेचते हैं, इसका अच्छा दाम मिल जाता है, सेकंड हैंड बेचिए इसको, बढ़िया स्टील स्टील की अलमारी अलमारी कुछ बढ़िया खरीदे, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अब क्या कह देते कि भाई मार डाल जाओ, कह देते तो उनके मेहरबाना मारे खुद तो मार डाल।
1: सही बात।
0: तो इस बात का डर मुझे था तो मैंने इनडायरेक्टली उनको दिया, मतलब मैं उनकी पत्नी बहुत सज्जन थी भाई, नाश्ते पे गई थी, खाना खिला के भेजा, तो सज्जन थी तभी।
1: हाँ।
0: सज्जन थी तभी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कलयुग
1: घोर कलयुग,
0: बिल्कुल अभी तक वो पेट्रोल कह रहे थे सब लोग कि पर्याप्त है, अब पता चल रहा है कि नहीं नहीं कम है, ऑफिस मत जाओ, पैदल चलो, डबलिंग करो, साइकिलिंग करो, ये सब आ गया, तो मतलब पेट्रोल नहीं है इसका मतलब, तो कोई भी चीज हो सकती है, क्यों डॉक्टर लव?
1: बिल्कुल हो सकती है, मतलब होने को कुछ भी हो सकता है।
0: लिखते हैं सबलू जी, सावत जी कि दीवार की डायलॉग है जहां अमिताभ बच्चन विजय कहते हैं आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? नीला ड्रम।
1: क्या बात।
0: तो चलिए जनहित में जारी, अभी डॉक्टर लव इस पे विश्लेषण करेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं और जागरूकता कैसे फैला सकते हैं। मैं तो कहती हूँ नुक्कड़ नाटक वाटक भी चला सकते
1: हैं। चला सकते हैं, और जो है वो लड़कों को जो है वो साधना की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए।
0: तो चलिए आप लोग के दिल के दर्द को, जो करारा दर्द है उसको हटाते हैं और चलिए कुछ बढ़िया सा सुनाते हैं। थोड़ा पॉजिटिव रहिए भाई, पॉजिटिव रहने से ही आप किसी तरह से मतलब परेशानी आपकी दूर हो सकती है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डॉक्टर लव के साथ बात करने के लिए नंबर डायल करते रहिए 6393-3164-29, और ये आप ही का नंबर है, डायल करिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। क्या आपके मन में भी कोई दुविधा है, क्या आपको भी लगता है कोई आपको नीले ड्रम में पैक कर सकता है, तो बिल्कुल ये नंबर आपके लिए बना है।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: यहाँ कोई परेशान और आप यहाँ ड्रम बजवा बजवा के लोगों को मस्ती करा रहे हैं।
1: देखो आपने कहा कि मतलब अब नीला ड्रम नहीं, अब जो है वो हरा ड्रम भी खतरनाक हो चुका है। तुमको लगा कुछ भाई इंसान गाने बजाने से पहले धूम मचा ले।
0: जीना इसी का नाम है।
1: नहीं तुमने तो पहले ये कहा कि भाई कहो ना प्यार है, जब प्यार हो गया
0: मतलब किसी किसी का मतलब जिंदगी जो है ना वो ना सिर्फ अपने मतलब लय से बल्कि म्यूजिक की लय से चलती है।
1: वही तो।
0: किसी में मतलब शुरुआत में कहो ना प्यार है, मैंने कह दिया, फिर उसके बाद में तेरा प्यार झूठा, तू झूठा, तेरा प्यार झूठा, कॉलर ट्यून आ जाता है बीच बीच में। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे गौरव जी लिखते हैं, जैसे ही ऑनलाइन आता हूँ कंप्यूटर हैक हो जाता है, ट्रेन में सफर पर निकलूं तो पूरा ट्रेन चेक हो जाता है। अब किस्मत को कोसूं या अपनी जिंदगी को, इधर शादी को सोचता हूं तो उधर कोई नीले ड्रम में पैक हो जाता है। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता। लव गुरु आप ही बता दो हिमालय को कौन सा रास्ता जाता।
1: हाँ बिल्कुल, हमने वही आपसे कहा था कि संन्यास जो है वो इस समय का सबसे जो है हमको लगता है कि बेहतरीन तरीका है। तारक नाना जंजाला तेर दुर्गम शैल विशाला। तो भाई दुनिया इस समय भारतवर्ष में तीन लोग बहुत काबिल हैं।
0: कौन कौन?
1: धनपति से पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, पीछे कोई स्त्री नहीं। फिर आयत ले आइए भाई अपने उत्तर प्रदेश जी के मुख्यमंत्री की तरफ, पत्नी रहित। अब चले आइए फिर आप पतंजलि, जिसने जो है वो बड़े बड़े जो कहा जाता है कि हम इनका प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, पतंजलि के प्रोडक्ट खुद बिक रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन और टाटा साहब की बात करें, बहुत कामयाब इंसान।
0: आप ये बताइए मतलब, प्रेम में प्रगति को सपोर्ट करने वाले हैं या प्रेम में विराम को?
1: नहीं हम देखिए असलियत में एक लड़की थी।
0: देखिए प्रगति भी एक लड़की ही है और विराम एक लड़का है, अब आप खुद डिसाइड करिए।
1: नहीं आप जो है हमको आपने छेड़ दिया है तो हम आपको बता देते हैं।
0: नहीं हम छेड़ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं।
1: तो एक जो है कॉलेज में लड़का पढ़ता था।
0: ओहो, एक कॉलेज में? दो कॉलेज में नहीं।
1: हाँ, एक ही कॉलेज में एक ही लड़का पढ़ता था। अच्छा, उसके साथ दिक्कत उस लड़के के साथ थी कि वो एक लड़की से जो है वो प्रेम करने लगा।
0: अच्छा,
1: अब जब लड़की से प्रेम करने लगा तो उसने प्रेम का इजहार किया। अच्छा, वो जो लड़की थी उसका नाम वही था जो धड़कन फिल्म में शिल्पा शेट्टी का था।
0: शिल्पा शेट्टी क्या नाम था?
1: अब आप बताइए।
0: हमने मतलब धड़कन फिल्म बचपन में देखी थी तो इसलिए याद नहीं है।
1: अच्छा, धड़कन फिल्म में शिल्पा शेट्टी का नाम रहता है अंजलि।
0: अंजलि?
1: अंजलि, अंजलि।
0: ओके।
1: हाँ, तो उन्होंने जो है वो उसको प्रपोज किया अंजलि को।
0: ओ।
1: और अंजलि ने उनको मना कर दिया, उस लड़के को।
0: किसको?
1: उस लड़के को जो कॉलेज में पढ़ता था। और उसके उसका कारण सिर्फ ये था कि जो है वो उस लड़के में बाकी सारी अच्छाइयाँ थी, सिर्फ एक छोटी सी बुराई थी कि उसकी जो है वो एक आँख हल्की सी फड़फड़ाया करती थी। तो उसने कहा कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो आगे चलकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बने और वो लड़की जो है वो शादी हो गई उसकी। तो शादी हो गई, तो शादी हो गई उसको तो उसके पति ने कहा कि आज हमारे मालिक के यहाँ पार्टी है, तुमको लेकर चलते हैं। उसके साथ वो लड़की गई और देखा कि उसका जो पति है वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका मालिक वही लड़का है जिस लड़के को उसने मना किया था।
0: ये तो एक फिल्म हो गई, वो गोविंदा वाली एक फिल्म हुआ करती
1: है। नहीं सुनिए, पूरी बात सुनिए। और उस कंपनी का नाम था पतंजलि। जब वो लड़की नहीं पटी तब उन्होंने लिखा पट अंजलि और दोनों को मिलाकर बना
0: पत अंजलि।
1: जी पतंजलि
0: मतलब वो हमारे बाबा जी थे।
1: अरे अब हम ये कैसे कहेंगे, ये आप कहिए। हाँ, हम कहने के
0: बड़ा दर्दनाक किस्सा।
1: सोचिए मतलब हम सोच रहे थे कि नाम पतंजलि क्यों रखा गया, तो ये उसके पीछे का तथ्य है जो पूर्णतया काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप इतना आश्चर्यचकित होकर मत देखिए, मतलब हमारी कल्पना शक्ति ने उड़ान भरी और हमने आपको बताया।
0: ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। और आपकी कल्पना को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहेंगे कि चलिए हम लोग हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ना डराते हुए प्रेम की दुनिया में ले जाएं, क्योंकि हम बायोलॉजी को समझते हैं और बायोलॉजी प्रेम के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं
0: है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ प्रेम नगरिया के, तुम भी डगरिया चलो।
1: एक तो अपने बता रही है कि नीला की जगह हरा ड्रम आ रहा है।
0: अरे मतलब ऐसा उन लोगों के साथ है जिनके प्रेम में कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम इशू मतलब कष्ट मुसीबत है, और बाकी कष्ट मुसीबत का तो दवा आप है।
1: हाँ सही बात है।
0: तो फिर क्यों हो? तो चलिए आप दुनियादारी छोड़िए, फिलहाल प्रेम की नगरिया में चलते हैं हमारे साथ, एक प्यारी सी नाव में बैठ जाइए।

0: तो डॉक्टर लव
1: जी,
0: पेशकार पांडे जी हमारे साथ हैं।
1: पेशकार मतलब इनको पेश किया जाए।
0: हाँ, पेश हो चुके हैं। और गौरव लिखते हैं, जिसकी शादी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है।
1: ये मतलब ये थेरेपी,
0: ये सादा जीवन उच्च विचार वाला
1: नहीं, नहीं, ये थेरेपी बहुत अच्छा है।
0: मतलब ये सेटिस्फेक्शन,
1: उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम।
0: सबलू जी लिखते हैं, फिल्म धड़कन में अक्षय कुमार का नाम है राम, सुनील शेट्टी का नाम है देव, और शिल्पा शेट्टी का नाम है, शिल्पा शेट्टी है।
1: हाँ, शिल्पा शेट्टी है भाई।
0: हम कई दिन तो ये समझते थे कि सुनील शेट्टी और ये शिल्पा शेट्टी दोनों भाई बहन है। फिर उसके बाद कुछ दिन तक समझे कि दोनों पति पत्नी है। फिर दोनों ही भ्रम मेरे बाद में दूर हुए जब मैं बड़ी हुई। अंजलि नाम, अंजलि की जगह पतंजलि रखना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबलू जी लिखते हैं कि आप बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। बिल्कुल
1: बिल्कुल अफसाने।
0: और जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसे देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। वाह वाह, बड़े स्पिरिचुअल बात कर दी। क्या क्या
1: हजार टके की बात।
0: ऊपर वाले की लाठी की पावर तो है इंसान से नहीं तो खुदा से डर, उसकी लाठी जब भी लगती है तो समझ आता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, ड्रम काटने वाली लड़कियों थोड़ा सुधर जाओ, हम भी किसी दिन बोरे में मिल सकते हैं।
1: बिल्कुल मिले हैं।
0: हाँ, ये बात सही है।
1: नहीं नहीं, बोरे में नहीं, रेफ्रिजरेटर।
0: हमको लड़कों की सिचुएशन पे कुछ पंक्तियाँ अर्ज करने का मन कर।
1: जी जी बिल्कुल, आप कर दीजिए।
0: कि लड़कों की हालत भी क्या गजब हो गई है जनाब,
1: गजब हो गई।
0: ऑनलाइन देखते ही दिल हो जाता है खराब। ध्यान से सुनिएगा कि लड़कों की हालत क्या गजब हो गई है जनाब, ऑनलाइन देखते ही दिल हो जाता है खराब, हाय भेजो तो सीन करके निकल जाती हैं, और डीपी पर किसी और संग फोटो लगा जाती हैं। रिचार्ज कराओ, कॉफी पिलाओ, गिफ्ट भी दिलाओ, फिर भी आखिर में सुनो तुम अच्छे दोस्त हो, बताओ
1: क्या। ये अक्सर होता है।
0: दिल टूट तो लड़के का बहुत पहले ही बड़ी शान से जाता है, पर इतने से वो बाज नहीं आता है।
1: बाज नहीं आता है, कुछ और चाहिए।
0: प्यार वार के चक्कर में वो काफी मतलब खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करता है, पर सारा कॉन्फिडेंट धरा का धरा रह जाता है जब नीले ड्रम में पैक हो जाता है।
1: पैक हो जाता है।
0: मोहब्बत में लड़कों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, नींद कम और रील ज्यादा आती है, ऊपर से दोस्त बोलते हैं भाई मूव ऑन कर जाओ, और जो नीले ड्रम से बच जाते हैं वो अरिजीत सिंह के गाने सुन सुन के घूमते हैं छत पर।
1: क्या बात है, मतलब एकदम दर्द बयां कर दिया। अच्छा, मैं आपसे एक कहूँ कि अगर दुनिया की सबसे छोटी लव स्टोरी बताइए तो आप क्या बता पाएंगी?
0: छोटी लव स्टोरी?
1: हाँ,
0: अब मुझे जानकारी तो बहुत ज्यादा नहीं है।
1: मैं आपको दुनिया की सबसे छोटी लव स्टोरी सिखा
0: बता रहा। छोटी लव स्टोरी?
1: हाँ, बताऊँ दो लाइन में?
0: बताइए।
1: नीला ड्रम? नहीं, एक इंस्टाग्राम पर, एक लड़की के इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने मैसेज भेजा, उसकी डीपी देखी, और डीपी देखने के बाद कहा कि वास्तव में आप बहुत खूबसूरत हैं।
0: फिर
1: उधर से जवाब आया, ये मेरे शादी की पहले की फोटो है।
0: बस कहानी शुरू हुई और खत्म।
1: एक लाइन पर कहानी शुरू और एक लाइन पर।
0: क्या बात है। और बंटी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, हमें सुन रहे हैं ये आप राजस्थान से, और रजत राम चौरसिया जी, क्या बात है रजत जी, आपका नाम बहुत प्यारा है। चौरसिया जी कहाँ से सुन रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और दिखा कि देखे तो कॉल की अगर बात करें तो बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो पर्सनली मैसेज कर करके सवाल करें। तो अभी हमारे एक लिसनर का सवाल था जो मतलब ऑन एयर चैट रूम में नहीं आ सकते क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी से हमें सुनते हैं
1: जी,
0: तो व्यस्तता के कारण लाइव सवाल नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने सवाल मुझसे पूछा तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर लव
1: जी।
0: सवाल उनका ये है कि आम का सीजन आ गया,
1: आम का सीजन आ गया,
0: इनकी पत्नी ने इनको आम लाने के लिए बोला अचार के लिए।
1: हाँ।
0: आम तो ले आई है,
1: आम ले आए,
0: लेकिन ये पिट गए,
1: पिट गए क्योंकि वो पका हुआ आम ले आए
0: जी।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोला कि मैंने बस ये कहा कि तुमने तो बताया नहीं था।
1: हाँ।
0: और पिट गए,
1: और पिट गए,
0: तुमने पूछा क्यों नहीं,
1: तुमने पूछा क्यों नहीं। अच्छा ये बात है, नहीं हमारी भी आज मेरी पत्नी थोड़ी सी तूतू में हो गई।
0: आम को लेकर?
1: हाँ नहीं, आम को लेकर नहीं,
0: आजकल बहुत आम बात हो चुकी है।
1: आम बात नहीं, हम दूध की बात करेंगे। उन्होंने जो है वो दूध चढ़ाया गैस सिलेंडर पर और कहा कि दूध उबलेगा तो देखते रहिएगा। तुमने कहा ठीक है, इतना कहकर वो छत पर चली गई गेहूँ सुखवाने के लिए। अब वो दूध उबलता रहा, हम देखते रहे, और उबल करके वो नीचे आकर पूरा का पूरा दूध गिर गया। अब वो नीचे उतरी तो उसने कहा कि मतलब आपसे कहे थे कि देखते रहिएगा, तुमने कहा मैं पत्नी भक्त हूँ, आपने जैसा ही कहा था कि देखते रहिएगा, मैं तब से निरंतर लगातार बिना पलक झपकाए देख रहा हूँ।
0: पिटने से आप बच गए?
1: नहीं तो हमने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन किया है, तो मतलब आपकी एक तो आपकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, उसके ऊपर से हमको कहेंगे कि अकल नहीं है। अरे आपको कहना चाहिए कि भाई ये जो है वो अगर उबलने लगेगा तो गैस बंद कर दीजिएगा। आपने कहा उबलने लगेगा तो देखते रहिएगा, तो हम देख रहे थे।
0: मुझे तो जगजीत सिंह की गजल याद आ गई।
1: गजल याद आ गई, अच्छा इस मौके पर।
0: हाँ आपको देख कर देखता रह गया।
1: क्या बात,
0: क्या

0: वो मेरे सामने ही बह रहा था और मैं दूध के लिए आप कहेंगे
1: अच्छा अच्छा
0: वो मेरे सामने ही बह रहा था और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। तो बड़ी दर्दनाक स्टोरी आपकी हो सकती थी लेकिन आपने मौके पे अपने आप को संभाला और बेलन और चप्पल खाने से आप बच गए।
1: बिल्कुल, ये बेलन हम रखते ही नहीं घर में, मशीन ले आए हैं आटा,
0: रोटी में करो
1: नहीं, मतलब उसमें हम मशीन ले आए हैं आटा, वो पानी मिक्स कर दिया जाता है बस, वो दोनों को
0: पकी हुई रोटी बना के
1: निकाल, हाँ ये निकाल देता है। और कुछ दिन तो व्यवस्था ये बन जाती है कि आप मुंह खोल के देखिए रोटी स्वतः मशीन से आपके मुंह में चली।
0: तो क्या करने के लिए मुंह भी चलाएंगे आप, जाइए ग्लूकोज लगवा लीजिए।
1: नहीं, ग्लूकोज
0: इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी,
1: नहीं मतलब ऐसा
0: आप रोटी मत खाइए, जबड़ा चलेगा, एनर्जी लगेगी। आप ग्लूकोज दोनों हाथ में लगवाए रहिए, मस्त पड़े रहिए। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप बिल्कुल ऐसे मस्त मखमल के बिस्तर पे पड़े रहिए, दोनों तरफ ग्लूकोज लगवा लीजिए। ना पानी पीना है और ना ही आपको खाना खाना है।
1: नहीं वो दिक्कत, लेकिन हमारी क्लिनिक का क्या होगा?
0: क्लिनिक का क्या होगा?
1: हाँ मतलब
0: क्यों नहीं
1: मतलब क्लिनिक
0: मशक्कत होगी आपको, लेकिन हाँ प्रेम थोड़े दुनिया में बंद हो जाएगा।
1: नहीं प्रेम हमी ने जैसे से
0: रजित जी हमें सुन रहे हैं बग्गी रोड गोंडा से, क्या
1: बग्गी रोड, क्या बात है बग्गी रोड,
0: मतलब ये क्या सीन है कि बग्गी चलना बंद होगी तब भी रोड का नाम बग्गी रहेगा?
1: बग्गी अच्छा उसका नाम बग्गी रोड था क्यों पता है कि नहीं?
0: बग्गी चलती होगी हमको ऐसा लग रहा है।
1: अच्छा
0: दर्जी कुआं, वही कुआं था, बास में बैठ के दर्जी कपड़े सिलता था, एक दिन कुएं में गिर गया, तब से दर्जी कुआं
1: हो गया। हाँ अच्छा, कुछ नाम जो है वो अजीब से होते हैं शहरों के, जिलों के, स्टेट्स के।
0: किसके?
1: जैसे देखिए जो रणथंभौर सुना है कभी? राजस्थान में जाइए। हाँ तो हम एक बार राजस्थान में गए तो राजस्थान वीरों की भूमि कही जाती है, तो वहाँ पर एक मेरे कवि मित्र रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं वीरभूम राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं वीरभूम उत्तर प्रदेश से आपका प्रणाम स्वीकार करता हूँ। तो हमने उनसे पूछा भाई तुम काहे के वीर? उन्होंने कहा हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए, कई नाम उन्होंने, महाराणा कुंभा हुए, बहुत सारे नाम गिनाए, तो कहें इसलिए हम वीर। तो हमने कहा हम बात पे जानते देते हैं। तो उन्होंने फिर हमसे पूछा कि आप काहे के वीर? हमने कहा कभी घोंडा हो कहीं, क्यों? हमने कहा तुम बात पे जान दे देते हो, हम बिना बात के जान दे देते हैं। मतलब हमारे हमसे ज्यादा वीरता के यही नहीं, गोंडा ज्यादा वीर पुरुष पूरे गोंडा में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आपको क्या लगता है?
0: बिल्कुल गोंडा जिला है,
1: गोंडा जिला है कि नहीं? और ये भी आपने वो गाना भी सुना था प्रेम नगरिया कि तुम भी डगरिया चलो,
0: बात तो सही।
1: तो ये डगरिया है और वीरभूम से हम आपको प्रणाम जो है स्वीकार करते हैं। तो अच्छा कुछ जिलों के नाम, राज्यों के नाम ऐसे हैं जो उसमें शर्म आ रही हो।
0: हमारे एक सरोता का कॉल आ रहा है।
1: हाँ, सरोता।
0: हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं अनु, क्या हाल है, शुभ संध्या?
2: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस आप बताइए आप कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं, हम एकदम फर्स्ट क्लास हैं, हम एकदम ठीक ठाक हैं, हम जिंदा है, सांसें चल रही है, और क्या चाहिए।
2: अरे मैम ऐसा न बोलो, चाहते हैं ऐसा चलती रही, मेरी भी उम्र आपको लग जाए।
0: नहीं अब ऐसा नहीं, ऐसे उम्र लगेगी तब तो क्या चाहती हैं कि बुढ़ापे में मैं मतलब जिंदा रहूं और आप लोग आके ग्लूकोज लगा के कहें कि अरे बाबीना जी तो जिंदा है। ऐसे
2: नहीं मैम, पता है हम क्या चाहते हैं? आप इतनी मतलब इतनी उम्र आपकी लंबी हो जाए कि क्या बताएं, आपको पूरी हो जाए और हम भगवान की हजार फिर वापिस आए, फिर हम आपके सामने लंबे बच्चे रहे।
0: वाह वाह वाह, मतलब
1: पुनर्जन्म
0: या आप मुझे मतलब इससे अच्छा बद्दुआएं कोई दे दे, ऐसी दुआएं खतरनाक। तो चलिए ये बताइए सवाल।
2: नहीं मैं कि आपको ना बहुत ढेर सारे पुरस्कार भी मिलेंगे ना,
0: पुरस्कार
2: और आपको साथ हम जाएंगे आपकी हेल्प करते हुए, तो हम भी वही कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे।
0: तो चलिए क्या बात है, तो ये बताइए अनु क्या सवाल है डॉक्टर लव से आज, कोई खतरनाक सवाल लेके आई है या फिर इनको सवाल?
2: मैम सवाल भी तो खतरनाक है, और पहली बात ये गोंडा सच में बहुत वीर है, वो हर तरह से बहुत वीर है, और मेहमान नवाजी में भी गोंडा बहुत नंबर वन है।
1: अरे जहाँ पर आपके जैसी वीरांगना हो वीर नहीं है।
2: हमारी मैम भी किसी से कम नहीं है।
1: वो तो बात सही है, अरे 150 लोग लेने के लिए अकेले उधर से चले गए तो वीर नहीं है।
0: ये बात
1: भाई महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वीर होती हैं, 150-200 लोग जाते हैं इकलौती लड़की को लाने के लिए, उधर से शेरनी अकेले चली आती है, कहती है सबको देख लूंगी।
2: और जब मेरा सवाल यही था ना, आपने पहले ही
1: और जब आप जब जो है वो दामाद से कहा जाता है कि बेटा ख्याल रखना, तो इसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। पापा जानते हैं कि बिटिया तो हमारी राज करेगी करेगी, झेलोगे तुम ही।
2: हाँ। अभी आपने मेरा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ था, पर आपने ये टॉपिक पहले ही छेड़ दिया, बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको थैंक्स। लड़कियाँ हाँ शेरनी तो होती ही है, क्योंकि एक साथ दो घर क्या हजारों घर संभालती है, पूरे रिलेशन रिश्तेदारी
1: संभालने वाली ने हरे ड्रम का प्रयोग किया बता रही थी।
2: लड़कियाँ ससुराल संभालती है, मायका संभालती है, मायका और ससुराल के साथ साथ जो रिलेशन के घर है उनको भी संभालती है।
1: हाँ,
2: पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो आप लोग ना 150-200 लोगों के साथ आते हो, तो आप इसलिए आते हो क्योंकि अभी आप ढेर सारे लोगों के साथ एक लड़की को लेने आते हो। अभी तो आप आते हो ढेर सारे बरातियों के साथ, बराती आगे रहते हैं, आप पीछे पीछे चल के आते हो, लेकिन जब एक बार आप लोग लड़की लेकर चले जाते हो तो फिर पूरी उम्र लड़की को पीछे चलाते हो, खुद आगे चलते हो, फिर क्या करते हो लोग आप लोग पूछिए मत।
1: अच्छा, लेकिन हम लोगों ने कभी कनस्तर का इस्तेमाल नहीं किया।
2: क्या नहीं किया? अरे किया सर, वो सूट केस है तो क्या है तो क्या है, मुझसे मत कहलवाइए।
0: फ्रिज वाला मैटर भूल गई?
1: हाँ, नहीं अभी बीना जी कह रही थी कि अभी तक नीला ड्रम था, अब हरा ड्रम भी आ गया, तो लड़कों की बड़ी
2: अगर लड़के नहीं नहीं सर, जो कुछ भी करते हो आप लोग करते हो, एक पुरुष करता है, जब पुरुष सब चीज करके लड़कियों को महिलाओं को सिखाता है तो महिलाएं भी कदम से कदम नहीं मिला सकती है पर थोड़ा बहुत पीछे तो चल ही सकती है, तो
1: मतलब
2: भी आ जाती
1: निकट भविष्य में आपसे भी यही उम्मीद
0: की जाए। बात तो सही है।
1: मतलब
2: आप जब ऐसा कर सकते हो तो कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हम भी कर सकते हैं,
1: मतलब,
2: जब आप कर सकते
1: मतलब
2: हो
1: निकट भविष्य
2: में आप हमारे गुरु हो,
1: आप निकट भविष्य में हरे या नीले ड्रम का इस्तेमाल कर सकती हैं।
2: नहीं हमको ड्रम की जरूरत नहीं है।
1: हाँ
2: ड्रम की जरूरत आपको है।
1: अच्छा हमको क्यों, हमको क्यों भाई?
0: हम तो भाई यही कहेंगे कि जस गुरु तेस चेला।
2: हाँ मैम सही है, जब गुरु ही ऐसे है जो शिक्षा देंगे वही तो हम लोग जानेंगे।
1: हाँ,
0: बात तो सही है।
1: जो हमने नहीं बताया वो आपको थोड़े आता है
2: ना, जितना बिल्कुल नहीं आता, जो आप सिखा रहे हो वही पता है। और आप लोग जो करते हो आगे पीछे, हम लोग भी उन्हीं कदमों पे चलते हैं, चल पाते हैं तो चलते हैं, नहीं चल पाते हैं तो भी चलते हैं, क्या करें।
1: एक पैसा लग रहा
2: है, आप लोगों का हुक्म है, आप लोगों का आदेश रहता है तो पालन तो करना ही पड़ेगा।
1: पालन करना पड़ेगा, पालन किया जाना चाहिए।
2: तो सब मामले में सर आप ही लोग आगे हो, हम लोग अभी तो इतना आगे आते हुए भी बहुत पीछे हैं।
1: अभी तो आप लोगों ने शुरुआत की है।
2: शुरुआत ना की है और ना ही कभी शुरुआत करेंगे, लेकिन आप लोग जो करवाएंगे वही करेंगे।
1: नहीं नहीं वो बात नहीं
2: है, ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग क्या करवाना चाहते हैं हम लोगों से।
1: हाँ ये बात है, मतलब आपकी बात से पूर्णतः सहमत, क्या लगता है आपको? जो कुछ मुझे कह रही है एकदम सही कह रही है,
0: बिल्कुल सही है।
1: अच्छा आपसे
2: सर लोग करवाएंगे तो हम लोगों को करना पड़ेगा।
1: अच्छा बताइए किस फिल्म में रेखा का नाम अनु है?
2: क्या है?
1: किस फिल्म में रेखा का नाम अनु है?
2: हम मूवी इतना देखते ही नहीं है तो हमको क्या पता, आप बताइए फिर हम बताएंगे, आप पहले सिखाइए बताइए।
1: नहीं नहीं हम आपको गाना बताए दे रहे हैं कि आपको फिल्म का नाम पता है?
2: गाना बताइए, अगर जानेंगे तो बताइए, वरना फिल्म का नाम भी बता देंगे।
1: क्या लगती हो?
2: धर्मात्मा, धर्मात्मा।
1: हाँ जी हाँ बिल्कुल, धर्मात्मा फिल्म में रेखा जी का नाम अनु है।
2: और इससे क्या हुआ?
1: मतलब आपने कहा कि जितना आप बताएंगे हम उतना जान पाएंगे, तुमने कहा कुछ आपको आज बता दूं।
2: हाँ अभी बता दिया है।
1: हाँ।
2: अब याद रखेंगे।
1: अनु भी कोई नाम है तो आप उसको बता पाएं कि धर्मात्मा फिल्म में जो है वो रेखा का नाम अनु है।
0: वाह वाह।
1: हाँ जनहित में जारी
2: सर, इतना अच्छा मतलब आपने सिखाया भी, ये बताया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स।
1: जी हाँ धन्यवाद।
0: आप बताइए हमको, ये बताइए आप लोग कि कंक्लूजन क्या हुआ इस बात का?
1: कंक्लूजन कुछ नहीं, कंक्लूजन क्या, सब सही है, सब सही चल रहा है। जो चल रहा
2: नहीं बहन बता है, मेरे बाद में दिमाग में ये बात आ रही थी, मैंने देखा एक दिन ऐसे बारात हमारे घर से जा रही थी कि सर बोलते हैं लड़कों का जनाजा निकलता है, शादी नहीं होती है, पर वो लड़कियों का जनाजा निकालते हैं, इसीलिए जिन्हें ढेर सारे बरातियों को ले जाते हैं कंधा देने के लिए लड़कियों के,
0: ये बात तो सही,
2: उनके जनाजे निकालते हैं, तभी तो इतने ढेर सारे लोगों को लेकर जाते हैं कंधा देने के लिए, लड़की तो बेचारी एकदम अकेले आती है, वो क्या जनाजा निकालेगी।
0: बात तो सही है, थैंक यू सो मच अनु जी, और
1: हम आपके उज्जवल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं आपको।
0: मैं चाहूंगी,
2: अरे सर अभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ, नहीं
0: अरे आगे जब भी करोगी तो सर की दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी अनु।
2: अरे सर इतनी एडवांस दुआएं मत दो, अभी बहुत टाइम है।
0: थैंक यू, और अगले कॉल को हम देते हैं मौका, थैंक यू सो मच। तो अनु से बात हो गई, और अनु के साथ साथ भाई मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि बात तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई एक इंसान की सुन के हमें सबको नहीं जज करना चाहिए, पर हाँ कभी कभी जजमेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका। हेलो,
3: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सृष्टि, कैसी हैं आप, क्या है आपका सवाल?
3: मैं अच्छी, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सवाल
3: क्या, मैं आप लोग को गुंडी दिखती हूँ
0: क्या? आप
3: गुंडी दिखते हैं आप लोग को?
0: क्या दिखती है, गुंडी?
3: Yes,
0: नहीं तुम गुंडी तो नहीं, बिल्कुल प्यारी दिखती हो।
3: मैम एक भैया है वो बोलते हैं कि आप गुंडी लगती, तो हमने कहा हम तो गोंडा वाले तो गुंडी तो दिखेंगे, तो बोल रहे हैं कि हम भी गोंडा वाले हैं, तो हम कहे आप भी गुंडा बन जाइए फिर।
0: तो समस्या क्या है, आप गुंडी दिखती हैं और दिखना नहीं चाहती हैं, या फिर आप गुंडी दिखती हैं तो आपको सब गुंडा ही बोले?
3: मैं लगती हूँ, मैं तो इतनी नॉर्मल हूँ।
0: तो मतलब उन्होंने आपको गुंडी कह के गलत किया?
3: यस मैम बहुत गलत किया है।
1: आप अभी साबित कर दीजिए कि आप गुंडी हैं, जाइए उनको दो चार तलवार मार दीजिए।
0: अगली बार से गुंडी कहने के पहले कई बार सोचेंगे,
1: तलवार
0: अगली बार से उनके दिमाग में जैसे गुंडी शब्द आएगा वो अपने जिंदगी में गुंडी शब्द डिक्शनरी से मिटा देंगे कि अरे ये शब्द भी होता है मुझे पता ही नहीं है। ठीक है,
3: पर उसके लिए
0: क्या सलूशन?
1: तलवार उठाइए मारिए फने से,
0: जैसे जो जो जो इंसान जिस चीज के लिए कहे ना, कि जैसे कुछ लोग कहने की आदत होती है तुम बहुत बदतमीज हो, ठीक है भाई, तो भैया बढ़िया बदतमीजी, जैसे चलते चलते कोल्ड ड्रिंक मुंह पे चले जाइए डाल के, कहेंगे अरे कहना तुम्हें तो कहा था बदतमीजो, मैंने कर दी।
1: हाँ। गुंडी कहा है आपका,
0: जैसे आप वो कह रहे हैं गुंडी गुंडी हो तुम, गुंडे क्या करते हैं? गुंडे करते क्या है, तलवार दिखाओ जेब से पैसे निकाल निकल जाओ, तो आपने मुझे गुंडी कहा ना, तो गुंडा तो यही करेगा।
3: तलवार दिखाने के लिए उनके जेब में पैसे भी तो होने चाहिए।
1: मतलब क्या वो भिखारी है क्या?
3: भिखारी
1: समझिए, भिखारी मतलब आपका वास्ता ऐसे ही लोगों से पड़ता है जिनके पास भिखारी होते जो पैसे नहीं होते।
3: ओपन माइक में एक आदित भी आते हैं, तो वो उनके फ्रेंड है, तो मेरा उनसे एक बार बहस हो गया, तो उन्होंने बोल दिया बहस बहस में कि तुम गुंडी तुम सब नहीं जीत पाएंगे।
1: अच्छा तो अच्छी बात है, सिकंदर के बाद
0: आप जीतने मत दीजिए उनको, जीतने की जरूरत भी नहीं है, बस आप इस बात पे फोकस करिए कि कैसे कैसे कैसे करके आप
1: अपनी
0: गुंडाई साबित कर सकते। थैंक यू सो मच सृष्टि, और उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्दी आपका पेपर में नाम आएगा। सुबह ही बहुत अच्छे हमारे कॉलर्स हैं, और कॉलर्स में हमारी लड़कियां भी, देखिए लड़कियों के अंदर भी पावर है, और मुझे दिख रहा है कि हाँ धीरे धीरे लड़कियों के अंदर गुंडापन मतलब जो है वो क्या हो रहा है, तो चलिए सुनते हैं एक लेटेस्ट सा प्यारा सा गाना, और इसी के साथ आपके कॉल्स की भी मतलब कहते हैं ना कि हमने जो कहते हैं ना आगाज कर रखा है, तो आप बिल्कुल कॉल करके अपनी मतलब कहते हैं ना कि फेवरेट डॉक्टर लव से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो रोज नहीं सिर्फ एक दिन आते हैं। लेट्स एंजॉय दिस गाना, नए स्टाइल वाला गाना, पुराना लिरिक्स वाला गाना, फिल्म पति पत्नी और वो दो से।

0: कुड़े मैनु भी आपका गीत सुना दियो।
1: तो डॉक्टर लव, इतने प्यारे प्यारे गाने सुनने के बाद अब मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम लोग भी विदाई ले लें। लेकिन देखिए, चलते चलते मुस्तफ़ा जी आ चुके हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं? सऊदी से हमें सुन रहे हैं और लिखते हैं सबलू जी कि ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, जिंदा थे तो तैरने ना दिया और मर गए तो डूबने ना दिया।
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: और लिखते हैं सबलू जी, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाली मेरे नाम से जलते क्यों हैं? और नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आके छत पे टहलते क्यों हैं? मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहाँ आके फिसलते क्यों हैं?
2: क्यों हैं, क्या बात है, क्या बात है।
1: गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? और सभी का स्वागत, और समय हो चुका है आप लोगों से विदाई लेने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपने वाले गाने, और आप सुन रहे हैं अगर कुछ बेहतर तो डेफिनेटली आरजे बीना के साथ सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें

सो नमस्कार आदाब इन सच अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में खास खास बहुत खास बात जरूर बताइएगा। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी सैटरडे नाइट स्पेशल वाली प्लेलिस्ट को नहीं टटोली है, भाई अपना पिटारा खोल लो, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लो, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दो और लगा दो जितने चांद आप लगाना चाहते हो, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका जज्बात आपकी, ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा के लिए आपकी, और गीत आपके नाम से तो ऑब्वियसली बजेंगे ही बजेंगे ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, आपके फरमाइशी की महफिल को तरोताजा और रंगीन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मालवे नगर से, राजेश सिंह जी जग्गू दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सबलू सावंत जी बोरीवली मुंबई से, रिंकू जैन पंडित आशीष शुक्ला फ्रॉम गोंडा आहा स्टे ट्यून्ड, शशि सिंह जी आपका भी स्वागत है, और सुरेश कुमार जी चौक से, राजेश कुमार जी गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बर जी गोंडा से, राजेश मीना, एवरीवन स्टे ट्यून्ड और एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली पहली पहली फरमाइश, जो कि है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। फरमाइश को एंजॉय करेंगे और सैटरडे नाइट है, एनर्जी भरपूर होनी चाहिए, आई नो वेरी वेल, लेकिन दोस्तों गर्मी ने ऐसा हालत टाइट करके रखा है ना मेरा, ऐसी हालत हो रखी है कि इस गर्मी के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा कि आज सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है इस टाइम पे तो ये गर्मी, ये उमस, ये सफोकेशन, ये एंजाइटी, ओ माय गॉड। सो इन सब को दूर करने के लिए और जिंदगी में थोड़ा सा सुकून भरने के लिए इंजॉय कर लेते हैं आशु जी का पसंदीदा नगमा। जी हाँ दोस्तों, आशु जी को सुनना है गाना आजा आई बहार, दिल है बेकरार, तो एंजॉय करेंगे ओल्ड इज गोल्ड नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, रजित राम चौरसिया स्वागत है आपका।

सो दोस्तों, ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी आशु मिश्रा जी की तरफ से, जो कि है लखनऊ से। लता जी की आवाज़ में हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही सुरीला सा ओल्डिस गोल्ड नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले किसी का कहना है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सो ये लाइन्स थी पंडित आशीष शुक्ला की तरफ से। पत्रकार कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आपका स्वागत है, स्टे ट्यून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मुस्तफा जी। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है रफी जी की आवाज में गाना तकदीर के कलम से। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार रफी जी की आवाज में, मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, ये फरमाइश थी मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, मीन्स जुगल किशोर वर्मा की, एमपी से। जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से धरती पुत्र का गाना सुनना है, मेरा तोहफा तू कर ले कबूल। सो एंजॉय करेंगे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

के सोने पे छाई महंगाई में चांदी ले आई, हमने एंजॉय किया है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। जग्गू दादा की फरमाइश पे ये वाला गाना जो कि है एमपी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से, उनको सुनना है गाना मोहब्बत हो ना जाए। सो एक बार फिर से अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में कसूर मूवी का गाना एंजॉय करते हैं, लेकिन इस बार सबलू सावंत जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, कैफ मोबाइल वाले गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से और मुमताज अंसारी जी गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे तू पता। हमने एंजॉय किया कसूर काल का याग्निक कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है पंडित आशीष शुक्ला की। पंडित आशीष शुक्ला जी को गोंडा से सुनना है बेवफाई वाला गाना, तो अल्ताफ रजा की आवाज में सुनते हैं ये बहुत ही दर्द भरा सा नगमा हमारे पंडित आशीष शुक्ला जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रमोद श्रीवास्तव जी गोंडा से और सुमित मिश्रा स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।
1: वो क्या जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को
0: जी। अच्छा।
1: मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानू या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

आँखों में उदासी छाई है, होंठों पे हंसी का नाम नहीं। आँखों में उदासी छाई है, होंठों पे हंसी का नाम नहीं। रातों में भी मुझको चैन नहीं, दिन में भी मुझे आराम नहीं। है मौत से बदतर गम तेरा, दोजख की तरह है घर मेरा। आंगन में जुदाई के लम्हे, बिखरे हैं गुलाबी शाम नहीं।

दिल में रह के अपना कह के दिल में आग लगाई है, दिल में रह के अपना कह के दिल में आग लगाई है, उसने पराए घर में जाके अपनी सेज सजाई है। अब वो मेरे साथ नहीं है मेरा साथ निभाने को, मेरे आंसू साथ है मेरे उसके साथ खुदाई है।

आँख ही ना रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। अल्ताफ रजा की आवाज में हमने ये बहुत ही दर्द भरा सा नगमा एंजॉय किया है, पंडित आशीष शुक्ला की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन सबलू सामंत जी का कहना है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे अधिक सच्चे किस्से शराब खाने ने सुने, वो भी हाथ में जाम लेकर, और सबसे अधिक झूठे किस्से अदालत ने सुने, वो भी हाथ में गीता और कुरान लेकर। वाह, आपने एकदम सही बात कही है। और एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश। रिंकू जैन को सुनना है गाना प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। आहा, एक बार फिर से दर्द भरा नगमा एंजॉय करते हैं।

इश्क क्या है ये जमाने को बताने आ जा, और तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा। रिंकू जैन की फरमाइश पर बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों ये जो दर्द का इतना बौछार लगा हुआ है ना, दर्द की सैलाब जो आ रही है ना बैक टू बैक हमारी फरमाइशी गीतों में, उसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी आप सभी से कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राहत इंदौरी जी की ये बात है, और ये एकदम सच्ची कड़वी और कायदे की बात है, जिसको अगर हम मान के चलेंगे ना तो जिंदगी में दुखों का सैलाब किसी और की वजह से तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल नहीं आना है। सो दुखों की सैलाब से अगर टाटा बाय बाय करना है, छुटकारा पाना है, तो राहत इंदौरी जी की ये बात आपको जरूर मानना है। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रजित राम चौरसिया की, उनको सुनना है गाना दिल तो पागल है। सो इंजॉय करते हैं उदित नारायण और लता जी की आवाज में ये दिल पागल होने वाला गाना। और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि अपने दिल को सबको पागल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पागल नहीं हो तब तक आप, जब तक आप दीवाने नहीं हो तब तक आप मेरी समझ से अच्छे इंसान नहीं हो, जिंदगी में मजा नहीं आएगा। सो पागल होना, दीवाना होना, बेवकूफ होना बहुत नेसेसरी है जिंदगी में।

0: रचित राम चौरसिया की फरमाइश पर उदित नारायण और लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है दिल तो पागल है नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की, उनको सुनना है गाना जब दर्द नहीं था सीने में। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये शायद फिर से दर्द भरा नगमा, लेकिन इस बार शशि सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: इंसाफ करना

ओह माय गॉड, तो ये दर्द भरा नगमा हमने एंजॉय किया है शशि सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना तेरा झुमका, सो एंजॉय करते हैं अनुष्का की फरमाइश पर फाइनली ये थोड़ा सा एनर्जी से भरपूर नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो हमने एंजॉय किया है अनुष्का की फरमाइश पर ये तड़कता भड़कता सा सपना चौधरी का नगमा, हरियाणवी गाना तेरा झुमका। वाव अनुष्का, मजा आ गया। फाइनली हम लोग इतना स्लो स्लो इतना दर्द भरा गाना सुन रहे थे कि इस ब्रेक की, इस पॉज की, इस रिफ्रेशनेस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो थैंक यू सो मच। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की और उनको सुनना है गाना हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, और जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम। और जो ये कहते हैं कि ना जुदा होंगे हम, ना जुदा होंगे हम, ना जुदा होंगे हम, सारे के सारे षड्यंत्र भी उन्हीं की तरफ से रचे भी जाते हैं, चाहे उनके द्वारा चाहे कायनात द्वारा। क्यों सही कहा ना मैंने, स्टे ट्यून्ड। अजीब ही खेला है ना इस प्रेम इश्क मोहब्बत का।

हम तुम्हारे हैं तुम्हारे संग। हमने एंजॉय किया है अनुराधा जी और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा सीधे 9 बजे तक रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है कृष्ण कुमार मिश्रा की, पत्रकार कृष्ण कुमार मिश्रा की। उनको सुनना है गाना बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जिनके लिए दर पे आंखें लगी रहती हैं ना, अक्सर वही हुजूर आने में देर कर भी देते हैं जनाब। इसीलिए आंखें कभी किसी के लिए बिछानी ही नहीं चाहिए, पलके कभी किसी के लिए बिछानी ही नहीं चाहिए। इंजॉय कर लेते हैं आशा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। मिलते हैं सीधे 9 बजे, खा पी के पेट भर के आइएगा, क्योंकि मेरे पिताजी का कहना है कि बेटे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट पूजा करके आएंगे और फिर इस शाम की महफिल में और सुकून भरेंगे और रंग भरेंगे और जज्बात भरेंगे। स्टेट

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership.

0: With Sweden on defense.
1: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और अभी आपने जिस बहुत ही खूबसूरत से नगमे को एंजॉय किया है वो फरमाइश थी सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, मुकेश यादव गोंडा से, उस्मान खान जी आप भी गोंडा से, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना संग संग चलूंगा मैं। सो एंजॉय करते हैं निशा की फरमाइश पर कुमार सानू की आवाज में दिव्य शक्ति का ये गाना। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए अपना फेवरेट सेगमेंट फरमाइशी रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड।

आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन संग संग चलूंगा मैं। हमने एंजॉय किया कुमार सानू की आवाज में दिव्य शक्ति का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुमित मिश्रा की। सुमित मिश्रा को सुनना है गाना तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। सो एंजॉय करेंगे सड़क का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कुमार सानू अनुराधा जी की आवाज में। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका स्वागत है। इसी के साथ में मुकेश यादव का गोंडा से कहना है सिंपल जी मत सताओ हमें हम सताए हुए हैं। अच्छा जी हमसे ज्यादा मत सताओ हमें हम सताए हुए हैं अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं। खिलौना समझकर ना खेलो हमसे हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। सो एंजॉय करते हैं सुमित मिश्रा की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

मेरी नस नस में तू बनके लहू समाई है और तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। कुमार सानू की आवाज में 90s का सदाबहार नगमा हमने एंजॉय किया है सुमित मिश्रा की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री की गोरखपुर से और नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को और अनिल शास्त्री को सुनना है गाना दिल तो बच्चा है जी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

0: और
1: दिल तो बच्चा है जी।
0: सो दिल तो बच्चा ही जी, अनिल शास्त्री और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की, उनको सुनना है गाना मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अर्पण का मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

तिजारत बन गई है और तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। हमने एंजॉय किया है ये अर्पण का नगमा। मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा की गोंडा से, दुखरन नाथ से, और उनको सुनना है गाना दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में और अमित कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राकेश वर्मा की फरमाइश पर जो की है दुखरन नाथ गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। आखिर क्यों का लता जी की और अमित कुमार की आवाज में हमने गाना एंजॉय किया है। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश है हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश भी मुकेश यादव को गोंडा से और उस्मान खान को सुनना है गाना। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। सो एंजॉय करते हैं हर दिल जो प्यार करेगा सिर्फ और सिर्फ मुकेश यादव की और उस्मान खान की फरमाइश पर। और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर बालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करना है, बहुत सारा मिस करना है, ढेर सारा मिस करना है, क्योंकि कल है संडे। संडे मीन्स फंडे, फंडे मीन्स हॉलीडे और हॉलीडे मीन्स आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल कल आप लोगों के बीच में आपके फरमाइशी प्रोग्राम में नहीं रहेगी। सो आरजे मनु के साथ में अपने फरमाइशी महफिल को एंजॉय करिएगा। सो चलती हूँ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं सीधे मंडे को। सो चलूं क्या, जाऊं क्या, जा ही रही हूँ, कल बात याद करना, मुझे गाना भी डेडिकेट कर देना, मेरे लिए गाना भी सुन लेना, शेरो शायरी भी चैट बॉक्स में पेश कर देना। आरजे मनु को लगना चाहिए कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो, है ना। बाय बाय। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिल जो प्यार करे वो सुबह शाम तन्हाई में आहे ही भरे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना दोस्तों। बाय बाय।

0: पापा मम्मी के लिए बेस्ट।
1: तेरे रहने की खुशी में मैं इतनी बड़ी पार्टी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। बस तू मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारा रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: हो शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: जी हाँ, वो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश क्लिक 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और आज है सैटरडे का स्पेशल यानी शनिवार खास, जहाँ गजलें हमारी और गीत आपके। तो एक गजल हमने आपको रफ़ी साहब की सुनाई, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। और अब चलते हैं भाई, चूँकि हमने सुनाया रफ़ी जी को, इसलिए शुरुआत भी रफ़ी जी से ही करेंगे। तो उम्मीद है कि साथ आपका मिलेगा। हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं। गुड इवनिंग मनु सर, आपको वेलकम जी। हाँ प्रणाम करते हैं मनीष शर्मा जी आपको। नेहा जी बैराइस से आदाब, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। कायनात जी हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार सर जी, आपको भी नमस्कार। मेरा नाम जी, बिल्कुल आपका नाम, अच्छा अच्छा क्या बात है। तो इसलिए हमने बताया था कि आपका नाम आ जाए। और सुशील यादव जी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो नसीब, सब कुछ हो फिर भी दुख हो तो बदनसीब, और थोड़ा पाकर भी खुश रहे तो खुश नसीब। क्या बात है भाई, कभी किसी को माफ़ नहीं करना, अगर रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। ओह हो कायनात ने, अरे भाई लिख दिया, अरे मतलब अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। जी हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और पहला गीत आज की महफिल का हम सुनना चाहेंगे आपसे। एहसान तेरा होगा मुझ पर। हाँ, लगता है फ़ोन भी हमारे पास चुका है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते सर
0: जी। जी नमस्कार, प्रणाम, आपका शुभ नाम।
1: मैं अस्मिता बात कर रही हूँ।
0: अरे अस्मिता जी, कैसी हैं आप भाई?
1: ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: बहुत बहुत मतलब आपकी याद आती रहती है।
1: अरे थैंक यू सर।
0: और आप सकुशल हैं?
1: जी हाँ हाँ बिल्कुल।
0: चलिए, तो मतलब
1: तो गाना
0: आज रफी जी का गीत आपने चुन लिया है, एहसान तेरा होगा मुझ पर।
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ सर।
0: जी बिल्कुल।

खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, रहने दो मुझे तुमसे।

0: थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ढेर सारे हैं, राजेश सिंह ने कहा है, टोटल लता जी क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। कायनात जी ने कहा है, बहुत ही अच्छा लगा उनको। मोना जी हैं गोंडा से, और जी हाँ उन्होंने कहा भी गुड। और अनूप मिश्रा जी ने क्या बात है, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी, लेकिन इतने दिनों तक तो कहाँ गायब रहते हैं हुजूर, वाह क्या बात है, कुछ भी कहूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, लाजवाब, सुपर्ब, क्या बात है। और भाई नेहा जी ने भी आपकी तारीफ बहराई से कर दी, आउटस्टैंडिंग स्मिता। और श्री त्यनारायण शुक्ल जी ने उन्होंने कहा बेहतरीन शुरुआत, और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिल चुका है, वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व तो है अपने आप में, क्या बात है, शांत रहा होगा मुझ पर। और नेहा जी खुद भी भाई बहुत अच्छा गीत गाती हैं, रफी जी का मन्ना डे को भी उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। और आज तो अनूप जी बहुत दिन के बाद आए हैं, लगता है आज अच्छे अच्छे श्रोता आज वक्ता बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा प्रणाम। और क्या बात है भाई, अनिल शास्त्री जी ने लिख दिया है भाई, बहुत ही खूबसूरत गीत, जी जी बहुत प्यारा। अरे ये सब आपके बच्चे सीख रहे हैं भाई आप लोगों से। चलिए अब कार्यक्रम को दूसरा रुख देते हैं और दूसरी तरफ बढ़ते हैं।

0: जी हाँ, अगला प्रश्न यही है आपके लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवाज। देखते हैं, शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है भाई। आधारशिला बहुत अच्छी रखी गई है, न्यू बहुत अच्छी रख दी गई है। अब देखना यह है कि इस गीत को भाई एहसान तेरा होगा मुझ पर कोई, तो अस्मिता जी ने बहुत शानदार निभाया। और अब जो हमारे पास आने वाले हैं, क्या देखते हैं कौन है मैसा। जी हाँ, फोन आ चुका है, देख लेते हैं मैसा कौन है। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूर्व दिशा का आगमन हो चुका है।
1: जी जी, पूर्व दिशा का आगमन हो चुका है।
0: तो आप प्राची जी ही बोल रही हैं?
1: जी बिल्कुल
0: जी। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: बस आपका आशीर्वाद।
1: थैंक यू सर।
0: तो मतलब कभी कोई बात बिगड़ी है?
1: नहीं, अभी तो कभी कोई बात नहीं बिगड़ी। कभी कभी बिगड़ जाती है।
0: कभी कोई बिगड़ जाती है। अच्छा, तो ये आप किससे कहती हैं कि तुम देना साथ मेरा?
1: अभी तो फिलहाल फैमिली से कह रही हूँ।
0: मतलब फिलहाल फैमिली से कह रही है, मतलब आगे ज्यादा नहीं फैमिली से कहने का?
1: नहीं, आगे कोई और अगर सुनने वाला होगा तो पहले उससे बोलूंगी, फिर फैमिली से बोलूंगी।
0: अच्छा, ये बात है, मतलब भविष्य की योजना तैयार होती जा रही है। चलिए, आपको आपके बेहतरीन उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं, और उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी भी रहेगी।
1: थैंक यू
0: जी। तो सुनते हैं जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: जब कोई

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, इस गाने को आपने गाया नहीं है, इस गाने को आपने निभाया है।
0: थैंक यू थैंक यू,
1: मतलब बहुत ही फील करते हुए गाया है मुझको लगता है।
0: थैंक यू सर।
1: और नेहज ने लिखा है, वाह भाई, एक से एक बढ़कर एक परफॉर्मेंस और सुपर्ब।
0: मतलब
1: क्या बात है भाई जी, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप ऐसे ही गाती रही है, मुस्कुराती रही है।
0: जी
1: जी
0: जी सर, नमस्ते।
1: जी नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ, बढ़ते भाई एक नाथ शरीफ की तरफ और देखते हैं इसको कौन पूरा करता है।

जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी ये नात शरीफ है और लगभग लगभग सभी लोगों ने सुनी होगी। और अगर आप इसे गा सकते हैं तो हमको लगता है ये बहुत अच्छी बात होगी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना तेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया तेरी। इसमें जो बात कही गई है, अगर उन बातों को सच माना जाए तो स्वर्ग हम जमीन पर ला कर रख सकते हैं। मतलब हो मेरा काम ज़ईफ़ों की हिफाजत करना, दर्दमंदों व ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, इस तरह से हो मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो बहुत ही प्यारी ये नात है और हम चाहेंगे ज़रूर कि भाई सुना जाए इसको। और भाई राजेश सिंह जी ने मालूम नगर से लिखा है, कायनात मैम जी प्लीज़ एक सांग आप भी। जी हाँ कायनात जी, आप राजेश सिंह जी की बात को ठुकरा नहीं सकती, वो एक वरिष्ठ नागरिक है और अगर उन्होंने आपसे कह दिया है कि भाई कायनात जी एक गाना आप गा दीजिए तो हमको लगता है कि गाना चाहिए आपको। और सर सुरेश जी, जी जी, और उसके बाद आज बस फ्यूचर सिंगर को क्या चाहिए भाई, हम समझ नहीं पाए। आज बस फ्यूचर सिंगर को मौका दिया जाए। जी हाँ जी हाँ, और उसी में से आप भी एक शामिल है, मतलब फ्यूचर में होने वाली सिंगर एक आप भी है। मुझे पता है भाई कि बहुत अच्छी आवाज़ आपकी, और राजेश सिंह जी भी आज को सुनाने के मूड में है। तो क्या भाई ये नात शरीफ संभव है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और अगर ये नहीं आ रहा है किसी को, चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगर किसी को आ याद आ जाएगा भाई, देखिए नेहा जी को याद होना चाहिए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, 100% उनको आना ही आना चाहिए। तो और तब तक आगे बढ़ते हैं और गीत है, प्रश्न है

0: हो जी हाँ, खिलौना फिल्म का गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, और अभिनय सम्राट मतलब संजीव कुमार ने इस को इसके पर्दे पर इतना जीवंत इस गीत को उतारा है कि आप ने अगर कभी देखा होगा इस दृश्य को तो वास्तव में उस पागल का रोल कर पाना बहुत कठिन काम था जी। और देखते हैं मेरे साथ कौन है भाई। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: अरे भैया ये बताइए कि मतलब देव दर्शन से दुर्लभ भी आपका दर्शन है, मतलब इस समय कहाँ इतनी मसरूफियत है?
1: मसरूफियत नहीं है सर, बस थोड़ा सा काम धाम में बिजी है इस समय, इसीलिए
0: मतलब रात के नहीं दे पा रहे। रात के 9:30-10 बजे भी आप काम धाम में बिजी हैं?
1: आप बताइए कैसे हैं?
0: बस जैसा आप रख ले वैसे हैं, आपकी यादों में है, आपकी दुआओं में है, आपके आपकी शुभकामनाओं में है।
1: गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बड़ी उदास बड़ी सोगवार गुजरेगी।
0: ये यही हाल इसमें मेरा आपने कर रखा है, मतलब पिछले कई बुधवार और शनिवार से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ।
1: आई थिंक मुझे 2 महीने से ऊपर हो गए हैं।
0: अब सोचिए मतलब कुछ मतलब ऐसा क्या हो गया?
1: नहीं नहीं सर, वो एक्चुअल में एक तो मेरा रेडियो खराब है
0: जी,
1: थोड़ा सा ये भी एक सीन है कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ
0: जी,
1: मैं सुनता ही नहीं हूँ तो फिर मन भी नहीं करता, ये भी एक सीन है।
0: हाँ।
1: अगर अगर मोबाइल से सुनता हूँ तो फिर प्रोग्राम में शरीक होने में दिक्कत होती है
0: जी,
1: तो इसीलिए। लेकिन अभी ठीक
0: मतलब
1: है,
0: कुल मिलाकर रेडियो को आप बनवाना नहीं चाहते या बनवा नहीं रहे हैं?
1: वो जवाब दे गया सर, वो उसने कहा दिस इज माई लास्ट ब्रीथ।
0: जिस परंपरा से आपने उसको निभाया है वास्तव में
1: जी,
0: उसको म्यूजियम में रखने के लायक है और उसको लोग आकर के देखें कि इसे किस परंपरा से चुना गया था।
1: 2003 से मेरे पास था वो। हाँ। अभी खराब हुआ है 2026 में।
0: हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत क्लियर आवाज
1: जी।
0: तो अब आप एक रेडियो खरीद लीजिए, हम तो ये कहेंगे।
1: है सर मेरे पास, अब मैंने उसको बनवाया है, वो चल रहा है इस समय।
0: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी, तो रात बनाई जाए।
1: हाँ सर, मैं शुरू करूँ?
0: जी निसंदेह,
1: क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत पसंद है।
0: हाँ।
1: और इसमें मुमताज जी का जो रोल है वो काबिले तारीफ है।
0: हाँ।
1: तो इसकी एक गजल है मुमताज जी की, जो वो है क्या नाम है, अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए,
0: मंजूर हो
1: जाए, नाम से मशहूर हो जाए।
0: अरे अरे क्या बात है। हाँ।
1: जी।
0: लेकिन इसमें जो संजीव कुमार ने अभिनय किया है वो बहुत जानदार किया है,
1: बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। और साथ में शायद जहाँ तक मुझे याद है बिहारी बाबू हैं, शत्रुघ्न सिन्हा।
0: हाँ जी, वो विलेन के रोल में,
1: और उनका नाम शायद निरंजन रहता है इस मूवी में शायद।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कंफर्म तो नहीं है। चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ सर।
0: जी।
1: ओ खिलौना जान।

खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूं, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं, मजबूर हूं लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूं और तुम

कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल

0: लिए मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो।
1: थैंक यू सर।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। वास्तव में ये गीत बहुत कठिन है वास्तव में, लेकिन आपने निभाया क्या शानदार तरीके से। देखिए भाई, ऐसी महफिलों में आते रहा कीजिए, नहीं तो ये जान लीजिए कि महफिल सुनी हो जाएगी।
1: भाई सुनी नहीं होने देंगे सर, हम आते रहेंगे।
2: हाँ मतलब अब आपसे करबद्ध निवेदन है। और मुन्नत ने लिखा है गुना से वाह सर नाइस, और नेहत ने लिखा है अनूप सर क्या बात है जबरदस्त, और राजेश ने जानकारी दे दी है कि आनंद बख्शी और लक्ष्मी कांत प्यारेलाल का म्यूजिक है।
1: जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही,
2: जानकारी के भंडार है मेरे राजेश जी, मैं गाते नहीं है पता नहीं क्यों। बहुत अच्छा लगा
1: जो है, जैसे जी जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ा था, काचू के साथ रहा बलवाना, किसी दिन मिलेंगे राजेश जी तो मैं उनको याद दिलाऊंगा।
2: जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको बल याद दिलाया जाए।
1: जी जी
2: ठीक है, अच्छा प्रणाम।
1: यस सर, थैंक यू सर।
2: हेलो,
3: हाँ नमस्कार भैया।
2: अरे क्या बात है भाई, दर्द कुमार जी हमारे महफिल के भाई, दर्द कुमार जी क्या बात है। पहले तो आपका बहुत
3: अरे भाई जी, हाँ अरे ठीक है, सबको मेरा नमस्कार
2: जी।
3: मैं जो है अनु मिश्रा भाई को बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ, अच्छा गाया जो भी निभाया।
2: हाँ।
3: मेरा दिल जानकर तुम तोड़ जाते हो।
2: हाँ, सही
3: बहुत सही, बहुत अच्छा निभाया
2: जी। और
3: अनिल
2: जी ने भी कहा था।
3: चलो भाई आओ तो ठीक है।
2: जी जी तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
3: अरे अब देखिए हम क्या सुनाने वाले हैं, प्रोग्राम चल ही रहा है
2: जी।
3: चलो और कोई क्वेश्चन तो है नहीं मुझे
2: नहीं, नहीं, तो। हाँ हाँ आप अरे आप कुछ भी गाएंगे तो बहुत शानदार गाएंगे।
3: चलो अपनी मर्जी से सुना देते
2: हैं। राजेश ने लिख दिया है भाई, सुरेश जी वेलकम, आपका स्वागत है।
3: हाँ ठीक, चलो भाई सुना देते हैं। हाँ अभी नहीं, चलो तभी पहले देखा नहीं ये शमा, ये मैं भूल से आ गया यहाँ, मैं अजनबी हूँ यहाँ, मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ कहाँ शहर ये, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए हैं यहाँ जज्बात मेरे,

वही सदियों पुराना, मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना मेरी गुस्ताखियों को, खुदा रामा करना, यहाँ मैं

देखो सनम गैरों की बाहें मिलाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें।

मना बैठे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं।

0: मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है ये वहीं पे वो खिलेगा। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा सितारा, जहाँ मैं अजनबी हूँ, जहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, जहाँ मैं अजनबी हूँ। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, अनूप मिश्रा जी ने कहा है बहुत खूब। सुरेश जी, अनिल शास्त्री जी जो स्वयं रफ़ी जी को बहुत अच्छा गाते हैं, कहा है बहुत खूब। राजेश सिंह ने लिखा है क्या बात है सुरेश जी, क्या बात है भाई, क्या वास्तव में क्या बात है।
0: और
1: अरे क्या मतलब, क्या दर्द है, क्या दर्द है जी। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: प्रणाम आपको, चल स्पर्श
0: भगवान खुश रखे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, और कल गोंडा में बाहर आने वाली है, क्योंकि कल गोंडा में नेहा जी आने वाली हैं। तो भाई अगर आप हमारे शहर में आ रही हैं तो रेडियो गणेश 89.6 FM ज़रूर आइएगा। ओपन माइक 1 से 2 हम प्रतीक्षा करेंगे भाई, अनूप जी को ही बुलाएंगे और जी सुरेश जी को ही बुलाएंगे, शानदार बातें होंगी और प्रतीक्षा रहेगी आपकी इस स्टूडियो में। नंबर आपके पास है स्टूडियो का, आप कल भी कर लीजिएगा। और कल आपसे 1 बजे मिलते हैं ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। कोशिश कीजिएगा कि आप पहुँचें और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। हेलो,
2: नमस्कार।
1: अरे दादा प्रणाम, दादा प्रणाम, कैसे हैं दादा?
2: अरे भाई, अरे सुरेश जी ने तो बहुत प्यार
1: है। अरे तो सुरेश जी भाई, उनको हम दर्द कुमार यूं ही थोड़े कहते थे।
2: मैं चाह रहा हूँ कि उसी पिक्चर का मैं एक गाना गा दूँ।
1: आय हाय हाय हाय हाय, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
2: एक बोला हूँ
1: अरे अरे क्या बात है,
2: इन्होंने बात है गाना सुनाया, मैं उसके पहले का सुना दूँ। जहाँ पे मोहब्बत की शुरुआत है
1: जी, मेरे नाना कहते थे
2: जी। हाँ, एकदम एकदम एक्चुअल है, एब्सोल्युटली राइट
1: जी।
2: तो क्या मैं, लेकिन मैं पूरा एक्चुअली सुनाऊंगा नहीं, रियल बता दूं, क्योंकि गाना बहुत लंबा है।
1: हाँ जी, पता है मुझे।
2: और मैं चाहूंगा कि बहुत लोग कम से कम पार्टिसिपेट करें
1: जी।
2: तो मैं छोटा सा शुरू करूं
1: जी? निसंदेह, अरे हम आपके आवाज के लिए छटपटा रहे।
0: एक था बुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना ये कहते थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना ये कहते थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो, वो गुल कुछ ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ, बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था, वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था, गुल के दिल

0: ये दिल में ही रहते थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल।
1: धन्यवाद सर,
2: क्या
1: पूरा कवि सुना दूंगा आपको।
2: क्या बात है रे, ये बहुत प्यारा गाना है। वो उसको नायिका को बिठा ले रहता है और ये घोड़े पे और ये गाना चलता रहता है। बहुत प्यारा गीत है ये।
1: मैं कभी आपको इसको पूरा सुना दूंगा।
2: हाँ, और लेकिन फिर हम चलते हैं जिनके बिना आप अधूरे हैं उनकी तरफ।
1: अरे वो आप तो गई हुई है थोड़ा सा बाहर एक फंक्शन में।
2: अच्छा, थोड़ा सा गई मतलब थोड़ा सा अंदर है।
1: नहीं मतलब वो गई हुई है फंक्शन में।
2: अच्छा, मतलब ये हमारी बदकिस्मती है।
1: नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है,
2: जी
1: बदनसीबी भी नहीं है, मेरी खुशनसीबी भी है।
2: हाँ, जीवन में सुख ही थोड़े सब कुछ होता है।
1: एकदम एकदम
2: जी। अच्छा, चरण स्पर्श और प्रणाम।
1: खुश रहिए सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे श्रोतागण।
2: जी जी प्रणाम, बहुत प्यारा।
1: थैंक यू।
2: जी हाँ भाई, तो ये गोरखपुर से मैं साथ, और फिर लल्लू प्रताप नारायणपुर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? जी हाँ, और ये आए कैसे? कायनाथ जी को भाई जैसे कहा गया गाने के लिए, क्यों गायब हो गई भाई? ये राजेश सिंह जी का जो है वो जान लीजिए कि मतलब निवेदन है कि कायनाथ जी गाना गाए, और मनीष शर्मा जी ने बहुत सारे दिल भेज दिए हैं। और लगता है कि अब गोंडा के उदित कुमार जी का फ़ोन कई बार आ चुका है, और उदित नारायण जी का, तो उनको भी हम सुनेंगे हमको लगता है। जी हाँ, देखिए हमने तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो,
3: अजय सर नमस्कार।
2: जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दुनिया के सबसे गहरे महासागर प्रशांत महासागर, कैसे हैं आप?
3: बस बस बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
2: बस आप लोगों का आशीर्वाद।
3: चलिए सर, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको गाना सुनाता हूँ।
2: बिल्कुल। और आज बिटिया रानी सो गई है कि नहीं?
3: हाँ वो तो सो गई है। जी तो एक मन्नाडे जी की शायद आवाज है, मैं इसको सुना रहा हूँ आपको।
2: अरे वाह, क्या बात है।
3: ये रात भीगी भीगी ये मस्त सजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के

0: थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। मतलब इसे कहते हैं कि आपने मतलब उदित नारायण जी को छोड़कर एक बार जो है वो किशोर जी को भी गाया, बहुत शानदार, कुमार शानू को भी गाया, तो शानदार। हमको लगता है आपको वो वर्सेटाइल सिंगर की पदवी अब देनी पड़ेगी।
0: जी जी सर, एक छोटा सा गाना मैं और गाना चाहूँगा।
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: आप अपना नाम बता दीजिए भाई। मनीष शर्मा जी जानना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारे दिल भेज दिए हैं, और आपका नाम जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप ही बता दीजिए।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है
1: जी, मनीष शर्मा जी, और ये दुनिया के सबसे गहरे महासागर का नाम है, और फिलहाल इनके अगले गीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
0: तो ये गाना मैं आपको गाऊंगा सर, कुमार सानू जी का।
1: आए हाय हाय हाय हाय, क्या बात है।

0: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। थैंक यू सर, थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। बीच से आपने स्टंजा उठाया और क्या मतलब क्या शानदार तरीका भाई भाई। और अनिल शास्त्री लिखते हैं क्या बात है भाई, और योगेश कुमार ने लिखा भाई बहुत अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है भाई। बीच की कड़ी से उठाकर जी हाँ, मतलब आप चैट बॉक्स में आकर भी धन्यवाद उनको दे सकते हैं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको इस शाम खास बनाने के लिए।
0: प्रणाम प्रणाम
1: जी। तो भाई गजलें हमारी, गीत आपके, और अब अगर कोई कुछ गाना चाहे तो 5 मिनट का समय बचा है तो गा सकते हैं, नहीं तो अब हम चलते चलते आपको एक लोरी सुनाते हैं और लोरी के ही साथ आपसे लेते हैं अनुमति। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को। फिलहाल ये प्यारी सी लोरी आप सभी के लिए।

0: जी हाँ नेहा जी, और कोशिश कीजिएगा कि कल आपकी मुलाकात हो ओपन माइक अपने टैलेंट अपना एफएम में। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 1 बजे आपसे मिलेंगे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। तब तक सुनते रहिए रेडियो 90.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। देखिए और जी हाँ, बीच में फोन आ चुका है और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हाँ जी सर।
0: जी सर
1: बताएं।
0: जी बताएं आपने फोन किया है।
1: मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी हाँ दादा, प्रणाम।
1: सुन रहिए
0: जी,
1: क्या टाइम है क्या
0: जी?
1: टाइम है?
0: हाँ अभी तो है, 4 मिनट समय बचा है।
1: तो क्या मैं छोटा सा मुखड़ा सुना दूँ?
0: जी बिल्कुल सुना दीजिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
1: नहीं बिल्कुल सर,
0: तो बिल्कुल नहीं।
1: एक मैं सेकंड लेना चाहता हूँ।
0: अरे आप पूरी जिंदगी मांग लीजिए, हम दे देंगे आप।
1: अरे नहीं सर, मैं बहुत प्यारा एक गजल ही है।
0: अच्छा
1: रफी साहब का।
0: अच्छा रफी साहब की गजल, क्या बात है। कभी कोशिश कीजिएगा तो वो सुनाएगा, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए।
1: यही सुना दो।
0: गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, मतलब ये हमको उनकी गजलों में एक बहुत शानदार गजल लगती है।
1: लेकिन मैं थोड़ा सा प्यारा सुनाना चाहता था।
0: हाँ तो आप प्यारा ही सुनाइए इसको, मतलब अगले बुधवार के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की है।
1: अरे बिल्कुल सर, मैं सुना दूंगा इसको।
0: जी जी
1: तो मैं सुना चाहता हूँ, छू लेने दो नाजुक होठों।
0: इस मैं को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बदनाम है।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: अच्छों को बुरा साबित करना, क्या बात है। जी हाँ चलते हैं बिना देरी किए हुए।
1: तो मैं सुना रहा हूँ
0: जी।
1: छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है। छू लेने दो नाजुक।

जाम है छू लेने दो ना दुख

0: क्या बात है दादा, आप शाम बना दी, आपने शाम बना दी। मुना जी लिखती है गोंडा से, गुड भाई, बहुत अच्छा और नाइस, मन समाज ने बहुत सारे स्टार दिए, बहुत ही प्यारा गाया आपने
1: सर। प्रयास किया हो सर, बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। और बुधवार को आपसे वो सुनेंगे, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी
1: सुनेंगे। हाँ, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है।
0: हाँ, तो इसको बुधवार को सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: अच्छा दादा, दादा चलो स्पर्श।
1: थैंक यू सर, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
0: ये देखिए, ये देवी जी अब पधार रही है, शिल्पी बनर्जी जी, वाह दादा, मतलब ये ये तो मतलब गायब ही हो गई, मतलब हम क्या बताएं, मतलब चलिए हो सकता है हमसे कुछ नाराजगी हो, लेकिन मतलब आवाज सुने सदियां बीत गई लगता है।
1: अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी जी जी। प्रणाम जी। हाँ, शुभरात्रि भाई, अब घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपसे अनुमत लेने का वक्त आ चुका है। शुभरात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल 1 बजे आपसे फिर मिलेंगे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणस्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: पर क्या हुआ ऐसा उस दिन, या कहें उस रात?

0: किस ग्रह से आई है तू? एक दिन भी तुझसे शांति से नहीं काटा जाता।
1: चुप रहे आशु, एक तो जसमीत की वजह से हमारी बोरिंग कॉलेज लाइफ में मस्ती का तड़का लग जाता है, और एक तू है कि
2: अरे चल ना, तेरी जिंदगी अगर स्मार्टफोन में सिमट कर रह गई है तो हम क्या कर सकते हैं? दिन भर कैंडी क्रश, जितनी कैंडी क्रश की है ना, अगर उसकी आधी भी बच्चों में बांट दी होती तो दुआएं मिलती तुझे।
0: यार तुम लोगों को तो मेरी बात मजाक ही लगती है।
2: सच ही तो बोल रही हूँ, जितना तू रोज टेम्पल रन में भागता है ना, उसका अगर 1% भी रोज सुबह भागे ना, तो तेरा ये मटके जैसा पेट है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा।
3: अरे आशु, कभी इस स्मार्टफोन की दुनिया से भी बाहर निकलो और देखो दुनिया कितनी हसीन है।
2: हाँ एग्जैक्टली, खासकर BSc फर्स्ट सेम में जो एडमिशंस हुए हैं ना वो।
3: यू आर टू मच जसमीत, पर उस रात वो बाइक राइड के बाद तेरे दिमाग में कोई नया कीड़ा नहीं जन्मा?
2: जन्मा तो है, और वो भी कीड़ा नहीं, कीड़े का डैडी। पर तुम लोग शायद ही राजी हो गए।
1: क्या बात करती है जसमीत, आज तक हमने तेरे किसी प्लान को ना कहा है
3: सिवाय इस फट्टू आशु के। तू प्लान बता, वी आर विद यू।
2: अच्छा तो सुनो, क्या तुम में से किसी ने कभी प्लानचेट या वीजे बोर्ड के बारे में सुना है?
1: नहीं तो, ये क्या होता है?
2: यार ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके जरिए हम आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं।
3: हाँ मैंने मूवीज में देखा है, तो तेरे कहने का मतलब है?
2: बिल्कुल
0: नहीं यार, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिंदा लोगों तक तो ठीक था, पर आत्माओं को यूं परेशान करना ठीक नहीं, उन्हें उन्हीं की दुनिया में रहने दो।
2: अरे यार मुझे पता था ये फट्टू आशु। यार लिसन, मैंने भी सिर्फ सुनाई है, और सच बताऊं तो मुझे तो विश्वास भी नहीं है, इसलिए तो सोच रही हूँ ट्राई करके देखते हैं।
1: पर ये बोर्ड मिलेगा कहाँ?
2: उसकी चिंता छोड़ दो, मेरा एक फ्रेंड है जो ऐसी चीजों पर रिसर्च कर रहा है, और वो कह रहा था उसने ना कई बार हमारे कॉलेज में ऐसी आत्माओं को महसूस किया है।
0: यार मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, प्लीज मुझे इन सब में मत घसीटो।
3: अरे इसकी पतलून तो अभी से गीली होने लगी।
0: ओके यार, तुम्हें जो करना है ना वो करो, मैं तो चला।
3: उसे छोड़ो, हम दोनों तो तैयार हैं तेरे साथ आत्माओं से बात करने के लिए।
1: हाँ बिल्कुल,
2: पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये ओउija बोर्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आसपास कोई और ना हो, यानी कि देर रात, और देर रात ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जो खुला रहता हो, तो फिर हम ये एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे?
3: मुझे पता है, लाइब्रेरी।
1: ये कहाँ है?
2: अबे डम्बो, कभी तू गई होगी ना तो तुझे पता होगा कि लाइब्रेरी कहाँ है।
3: हमारी कॉलेज लाइब्रेरी रात भर खुली रहती है, और सबसे बड़ी बात, रात में वहाँ कोई चौकीदार भी नहीं पहरा देता।
2: ओए तुझे कैसे पता?
3: अरे वो यार क्या है ना कि 2 दिन पहले ऐसे ही गया था मैं।
2: ओए होए अमित, तो डनरा, आज रात को 12:30 बजे लाइब्रेरी पे
4: पक्का।
5: जसमीत जो करने जा रही थी, जो आगे जाकर उस पर भारी पड़ने वाली थी, जैसा कि आशु ने कहा था कि हमारी और आत्माओं की दुनिया बहुत अलग अलग है। इस दुनिया के लोगों का आत्माओं की दुनिया में जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर ऐसा कोई ब्रिज या पुल बना दिया जाए जिसकी वजह से वो आत्माएं अपनी दुनिया छोड़ हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाएं, तो उसका नतीजा इतना भयानक हो सकता है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं। ऐसे ही एक दरवाजे का नाम है ओउija बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर अंग्रेजी के A से लेकर Z तक के अक्षर, 0 से लेकर 9 तक के नंबर लिखे होते हैं, साथ ही इसमें यस और नो भी लिखा होता है। कई लोगों का दावा है कि वो इस बोर्ड की मदद से उन आत्माओं से बात कर सकते हैं जिन्हें किसी कारण से मुक्ति नहीं मिल पाई है, जिन्होंने शरीर तो छोड़ दिया है पर अपनी किसी अधूरी ख्वाहिश या अप्राकृतिक मौत की वजह से वे हमारे आसपास ही भटकते हैं, और ऐसे किसी भी बोर्ड की मदद से वो हमसे संपर्क साध सकते हैं। ऐसा करना अपना पांव कुल्हाड़ी पर मारने जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि इनको बुलाना तो हमारी मर्जी पर होता है, पर इनका जाना वो ये खुद तय करती हैं। ये सुनने में जितना डरावना है, हकीकत में उसे करने से कई गुना खौफनाक था। जिस राह पर जसमीत और उसके दोस्त चल पड़े थे, क्या वो सही सलामत वहां से वापस लौट पाए?
4: क्या जसमीत, कितनी देर कर दी? हम दोनों कब से तेरे वेट कर रहे हैं, ऐसा लगा कि तू आएगी नहीं।
2: अरे यार क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे यहाँ आने से रोक रहा हो। पहले रूम का दरवाजा जाम हो गया, बड़ी मुश्किल से खिड़की से कूद कर आई हूँ, और उसके बाद सड़क पर एक बिल्ली रास्ता काट गई। यार बड़ी मुश्किल से आई हूँ।
4: यार ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, और आज मौसम देखा, दोपहर तक कितना शांत था और एकदम ही ये तेज हवाएं। आर यू श्योर जसमीत, हमें ये करना चाहिए?
1: यार तू उस फट्टू आशु की तरह बातें मत कर, अब यहां तक आए हैं तो
2: चलो अंदर चलते हैं।
5: रात के 1 बजे जैसे ही उन तीनों ने उस लाइब्रेरी का दरवाजा खोला,
6: जसमीत
7: ये डफन चिल्ला क्यों रही है?
2: मरवाएगी सबको।
7: सिर्फ कबूतर ही तो है।
1: सॉरी सॉरी गाइस,
4: आओ ऊपर हॉल में चलते हैं, और इस बार कोई आवाज मत करना।
5: कभी कभी जब हम कोई गलत काम या ऐसा कोई काम जिससे हमें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं करने को निकलते हैं, तो प्रकृति हमें रोकने के लिए कई संकेत देती है, पर हमारा पढ़ा लिखा दिमाग उन्हें समझकर भी नजरअंदाज कर देता है। जसमीत और उसके दोनों दोस्त अब लाइब्रेरी के हॉल में बैठे हुए थे। जसमीत ने अपने बैग से वो बोर्ड बाहर निकाला जिस पर A to Z अक्षर यस और नो और 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखी थी। फिर उसने बैग से निकाली एक कटोरी, उसके बाद उसने 5 मोमबत्तियां निकालकर चारों कोने पर एक एक मोमबत्ती जला दी। इसी के साथ एक मोमबत्ती जलाकर उसने उस कटोरी पर रख दी। फिर मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने जसमीत और उसके दोस्तों की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया।
2: अब तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ो और याद रखना, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना।
4: यार जसमीत, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है यार।
1: सच कहूं तो मुझे भी।
2: लिसन गाइस, अब हम पीछे नहीं हट सकते। यहां तक आ गए हैं तो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? ओके, अब सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो और मैं जो बोलूं उसे मेरे पीछे पीछे दोहराते जाना। क्या यहां कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहे?
8: क्या यहाँ कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहे?
2: हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हमसे बात कीजिए।
8: क्या यहाँ कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहे?
2: अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे बात करो।
8: हाँ हमसे बात करो। हाँ हमसे बात करो। हाँ हमसे बात करो। हाँ हमसे बात करो। हाँ हमसे बात करो। हाँ हमसे बात करो।
5: ये सब चल ही रहा था कि अचानक लाइब्रेरी के दूसरे कोने से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर तीनों दोस्त अंदर तक कांप उठे। अब लाइब्रेरी में गहरा सन्नाटा था। उन तीनों के दिल मानो एक साथ डर के मारे बहुत तेज धड़क रहे थे। तीनों के पसीने छूट गए थे। तीनों की जबां पर मानो दहशत का ताला लग गया हो। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी हिम्मत करके जसमीत बोली,
2: गाइस, कुछ भी हो जाए तुम दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना, और कोई भी प्लीज अकेले मत भागना, इससे आत्मा नाराज हो सकती है।
5: इतना कहकर जसमीत ने फिर हिम्मत करके आत्मा को आवाज दी,
7: अगर कोई आत्मा यहां पर है तो प्लीज हमसे बात करे।
5: जसमीत का इतना कहना था कि उनके ऊपर लगा पंखा अपने आप ही चालू हो गया, जिसे देखकर उन तीनों के खौफ का कोई ठिकाना ना रहा। वो पंखा अपने आप ही चलता और बंद हो जाता। अब उन तीनों को समझ आ गया था कि उन्होंने इतनी रात यहां आकर कितनी बड़ी बेवकूफी की थी, पर अब काफी देर हो गई थी। लाइब्रेरी के सन्नाटे में उन्हें कुछ भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्हें इस बात पर अब पूरी तरह यकीन आ चुका था कि हो ना हो इस लाइब्रेरी में उन तीनों के अलावा कोई चौथा भी है। कुछ समय तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, और फिर वो कदमों की आहट अपने आप ही बंद हो गई। और फिर उनके सामने जलती मोमबत्तियां अपने आप ही बुझ गईं। अब उन तीनों को लगने लगा था कि उन्होंने अपनी मौत को बुलाया है, और उस लाइब्रेरी से लौट पाना उनके लिए मुमकिन नहीं। लाइब्रेरी में खामोशी पसरी हुई थी। इसके अलावा वहां इतना अंधेरा था कि एक दूसरे का हाथ थामे उन तीनों को एक दूसरे की शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी
9: वहां पंखे पे किसी की लाश लटकी हुई है।
7: क्या बकवास है, ऊपर कुछ भी नहीं है।
9: यार हम यहाँ आए ही क्यों? आशु सही कह रहा था, हमें यूं आत्माओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
5: तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कभी हंसी में तो कभी रोने में बदल जाती। इस बार दहशत

0: उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो नहीं कर पा रहा था। जसमीत ने उसका हाथ इतना जोर से पकड़ रखा था कि उसे छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन था। अमित को यह समझते देर नहीं लगी कि इस लाइब्रेरी में जो कोई भी था वो अब जसमीत के शरीर में प्रवेश कर चुका था। उसने हिम्मत करके जसमीत को देखा और जो नजारा उसने देखा उसने उसे भीतर तक दहला दिया। अमित जोर से चीखा। जसमीत अब जसमीत नहीं थी। जो चेहरा अमित ने देखा वो बहुत डरावना था। अमित ने बहुत कोशिश की पर वो अपना हाथ छुड़ा ना सका। तभी जसमीत के अंदर से एक आवाज आई।
1: तुमने आज मुझे यहां बुलाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।
0: इतना कहना था कि अमित ने पूरी ताकत से जसमीत को धक्का दिया और लाइब्रेरी के गेट की ओर भागा। उसे महसूस हुआ मानो जसमीत उसके पीछे हो। रीना भी सब कुछ समझ चुकी थी और वो भी अमित के साथ भागी। अमित पूरी हिम्मत करके लाइब्रेरी के गेट के बाहर आया पर अफसोस रीना वहीं रह गई। अमित ने दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की पर वो दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था और रीना जसमीत के साथ अंदर ही बंद हो गई थी। उसे अंदर से चीखने चिल्लाने की बहुत आवाज आई। अमित भागता हुआ वार्डन के पास गया। वार्डन और कॉलेज के कुछ टीचर्स और गार्ड्स लाइब्रेरी के पास पहुंचे। गेट अंदर से लॉक था। अंदर से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। उस खामोशी ने अमित का डर दुगना कर दिया। जैसे ही गार्ड की मदद से दरवाजा खोला गया अंदर का आलम देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। रीना पंखे पर लटकी हुई थी। उसके नीचे ही जसमीत खून से लिपटी जमीन पर पड़ी हुई थी। अंदर क्या हुआ यह आज तक कोई नहीं जान सका। पर इस हादसे को जिसमें जसमीत ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया इस वजह से वो सदमे में चली गई। अमित के लाख समझाने पर कि इसमें सिर्फ जसमीत की गलती नहीं है, जसमीत खुद को दोषी मानकर मानो जैसे एक अंधेरे में डूब गई रीना की झूलती लाश, मानो आज भी जसमीत की आंखों के सामने थी।
2: The Haunted Place।
3: सोचिए अगर आप देर रात एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और आपसे सफेद साड़ी में एक औरत रास्ते में लिफ्ट मांगती है। जैसे ही आप उसे लिफ्ट देने के लिए अपनी गाड़ी रोकते हैं तो वो औरत पलक झपकते ही गुम हो जाती है। आप इसे अपना कोई भ्रम समझते हैं

0: अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। पर जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के कांच पर पड़ती है, आप उसी औरत को अपनी पिछली सीट पर बैठा पाते हैं। मान लीजिए इसके उलट आप रास्ते पर उस औरत को देखकर रुकने की जगह डर से गाड़ी की स्पीड दुगनी कर लेते हैं और 100 से ऊपर की स्पीड में अपनी कार भगाते हुए डर से भीगे अपने माथे पर पसीने की बूंदें पहुंच ही रहे होते हैं कि खिड़की के बाहर आप उसी औरत को अपनी कार के साथ चलता पाते हैं। सौ के ऊपर की स्पीड के साथ किसी औरत का यूं आराम से चलना नॉर्मल तो कतई नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि दिल्ली कैंट के हाईवे पर होते हादसों की एक बहुत बड़ी वजह है। यहां के स्थानीय लोग डरते हुए उस औरत के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने अक्सर देर रात दिल्ली कैंट के रास्तों में बैठा हुआ तो कभी लोगों से लिफ्ट मांगते हुए देखा है। सफेद साड़ी पहने धुंधली सी छवि वाली ये औरत अक्सर दिल्ली कैंट के रास्तों पर होते हादसों की वजह बनी है। पर यहां के लोगों का यह भी कहना है कि बहुत साल पहले ये खुद सड़क के किनारे किसी तेज गाड़ी का शिकार हुई थी, तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। वो ना वहां से जा पाती है और ना चैन से वहां रह पा रही है। ये कितना सच है और कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि उसकी वजह से दिल्ली कैंट का रास्ता एक हॉन्टेड प्लेस बना हुआ है।
1: The Haunted Night। डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां और सच्चे अनुभव।

समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, तेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा, तेरे अंबर सात समंदर सारी दुनिया।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आज एक ख्वाहिश और आज कुछ ऐसे नगमों के साथ मैं आपको फिर से ले चल रही हूं उसी दौर में। संगीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं होता, ये यादों की वो पोटली है जिसे खोलते ही जिंदगी के कई हसीन पल मुस्कुरा उठते हैं।
1: आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां गीतों में सादगी थी, अल्फाजों में गहराई थी और हर धुन दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती थी।
0: तो हो जाइए तैयार बीते जमाने की उन्हीं सुनहरी यादों को फिर से जीने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का एपिसोड भूले बिसरे गीत, जहां हर गीत आपको आपकी अपनी नई कहानी सुना जाएगा। तो आइए सुनते हैं अपनी आरजे ख्वाहिश के साथ में आज एक और आरजे जिसका नाम है आरजे गुमसुम। तो आरजे गुमसुम की आवाज आपको सुनने से पहले हम जानेंगे एक छोटा सा परिचय जो कि आज हमारे साथ में कौन है। आज जिन एक पार्श्व गायिका को हम लेकर के आए हैं उनका नाम आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि है उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा परिचय आरजे गुमसुम।
1: नमस्कार, मैं हूँ आरजे गुमसुम। भूले बिसरे गीत की इस नई श्रृंखला में हम जुड़ेंगे आपके साथ लेकर उषा मंगेशकर जी को। उषा मंगेशकर जी का जन्म 15 दिसंबर 1935 गोवा, तत्कालीन पुर्तगाली भारत में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार व गायक थे। बहन लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर।

0: आपको पता है आरजे गुमसुम कि जब इन सारी बहनों ने मिलकर के इंडस्ट्री में कदम रखा तो सबकी आवाजों को एक साथ एक ही माला में पिरो करके कहा गया था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हर एक गायक की, हर एक गायिका की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक गाने का तरीका, एक टोन और एक लहजा होता है?
1: बिल्कुल सही कहा आरजे ख्वाहिश। हर किसी का गाने का लहजा अलग होता है, आवाज भी अलग होती है, कहीं ना कहीं तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। पर वो कहते हैं ना कि सुरों की सरगम तो सभी में एक होती है।
0: बिल्कुल, यहाँ लहजा जो कि हमने कहा गया है, ये इसलिए कहा है क्योंकि शब्दों का हेर फेर। आपने लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर के गीतों को सुना, क्या आपने कभी ध्यान से सुना है कि वो शब्दों से कैसे खेलती हैं? क्योंकि कई ऐसे शब्दों को उनके लहजे, उनके बोलने के तरीके से ही हम जान जाते हैं कि ये आशा जी ने गाया है, लता जी ने गाया है। आशा जी के साथ में मीना जी ने भी इन सारे गानों को कई तरीके से हृदय में पिरो दिया। तो चलिए आरजे गुमसुम, चलते एक प्यारे से गीत की ओर।

0: उषा मंगेशकर ने 1950वीं सदी में 70 के दशक में उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। वो कहा जाता है ना कि अगर भाई बहन एक ही खून के हों तो सब में कोई ना कोई चीज एक चीज सेम होती होती है ना आरजे गुमसुम?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश।
0: तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बात मेरे जहन में आ रही है, तो मैं आपको बताऊं क्या?
1: बताइए।
0: उनकी आवाज को अक्सर भोली, चुलबुली और मासूम किरदारों के लिए चुना जाता था। आपको पता है ऐसा क्यों होता था?
1: क्यों?
0: क्योंकि आशा मंगेशकर की आवाज को भी हम लोगों ने जब भी सुना है, एक बच्चों सी मुस्कान और एक बच्चों का चुलबुलापन, भूलापन मासूम किरदारों के लिए चुना जाता था। क्या आपने नहीं सुना आरजे गुमसुम?
1: सुना है आरजे ख्वाहिश, और आवाज भी ऐसी मासूम कि उन किरदारों में बिल्कुल सच जाया करती थी।
0: बिल्कुल, और उन्होंने कई मराठी गीत हो, नाटक हो, संगीत हो या फिर फिल्मी गीत भी गाए। क्या आप जानती हैं कि आशा जी की आवाज में और उषा जी की आवाज में क्या भिन्नता थी?
1: क्या भिन्नता थी?
0: आपने सुना होगा आशा जी के गानों को कई बार सुना है, लता जी के गानों को कई बार सुना है और उषा जी के गानों को भी कई बार सुना है। उषा जी के गानों में एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, दिल ढूंढता है कहीं कहीं फुर्सत के लम्हे।
1: जी
0: सुना है ना? तो कितना ठहराव, कितनी प्यारी आवाज, एक ठहराव के साथ उनकी, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कोई भी अगर हम घर में चीज बनाते हैं, मान लो कि हम किचन में ही हैं, अगर हम कोई खाने की चीज बनाते हैं तो कितनी मन से चाव से बनाते हैं, तो उसमें उसका रस चार गुना बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, कहते हैं ना कि जब कोई काम मन से किया जाता है तो वो कुछ बहुत ही बेहतरीन सा होकर निकलता है।
0: बिल्कुल, तो सेम इसी तरीके से उषा मंगेशकर भी हमारे साथ में, जब उनको कई बार हम लोगों ने उनके गाने सुने तो ऐसे ही था। और साथ ही साथ में आइए अब हम चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि उषा जी ने बड़े ही चाव से, बड़े ही प्यार से हम सबको सुनाया था। क्यों आरजे गुमसुम?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश।
0: तो मुझे कहीं से पता चला कि आपका फेवरेट सॉन्ग जो है वो दिल ढूंढता है कहीं, तो दिल ढूंढता है कहीं, चलिए तो दिल ढूंढ लेते हैं फिर।

0: तो चलिए अब हम उषा मंगेशकर जी के सम्मान व योगदान के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। उषा मंगेशकर ने केवल गाने ही नहीं बल्कि मराठी संगीत को भी लोकप्रिय बनाया। वह कुछ युवा गायकों को मार्गदर्शन देने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। उषा मंगेशकर जी के बारे में कुछ ऐसी विशेष बातें भी हैं जो आज की श्रृंखला में हम आपको बताएंगे। भले ही वे अपनी बहन लता मंगेशकर जितनी फिल्मी शोहरत में न रही, लेकिन मराठी संगीत और भक्ति संगीत में उनका स्थान बहुत ही सम्मानजनक है।
1: बिल्कुल, आज ये कुमसुम आपको पता है ना कि हम एक ही घर के हैं, और अगर एक ही घर में दो बहनें हों या फिर चार बहनें हों, तो एक का सम्मान अगर किसी भी क्षेत्र में हो रहा है तो दूसरी बहन को एक गर्व महसूस होता है कि हमारी बहन आज इस मुकाम पे है। जो शोहरत उसे हासिल उसने की है खुद अपने अपने जैसे कहते हैं ना कि उसने मेहनत करके, तो अपनी छोटी बहन हो या फिर बड़ी बहन हो, उसे एक गर्व महसूस होता ही है। कहीं ना कहीं यही पूरी बातें इन चारों बहनों में थी, खास करके लता जी, आशा जी और हमारी दोनों बहनें और साथ ही उनके भाई को। तभी तो आज उनके इस प्यार को, उनके इन विश्वास को, उनकी आज की जो कि जो भी जनरेशन है उन्हें याद करते हुए नहीं भूलती है। तो आइए चलते हैं एक प्यारे से गीत। मुझे लगता है कि आरजे गुमसुम भी गुमसुम होके बैठी हुई है और ये जानने के लिए कि अगला गीत कौन सा होगा।
0: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश,
1: तो मैं बताऊं कि अगला गाना कौन सा होगा।
0: बताइए।
1: आप सुन करके ना बिल्कुल आपके आसपास ना वो पानी पानी सा एक सीन दिखने लगेगा। अब आप समझ गई होंगी कि वो कौन सा गाना है।
0: जी
1: मैं बताऊं?
0: बताइए।
1: मेघारे मेघारे, ये प्यारे से गीत को सुनते हैं आइए आज के इस उषा मंगेशकर के एपिसोड में।

0: आरजी ख्वाहिश, तो चलिए अब बात करते हैं उषा मंगेशकर जी की शादी को लेकर।
1: बिल्कुल आरजी गुमसुम, लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ, यानी कि हम अपने लिसनर्स को भी एक बात बता देना चाहते हैं आपके साथ में, कि कभी कदार ऐसा होता है ना, हम जब सुनते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, मतलब उसके विवाह को लेकर के होता है या फिर निजी जीवन को लेकर के होता है, शायद आपने भी सुना होगा, है ना? तो शायद वैसे ही एक सफल व्यक्ति के पीछे जब एक महिला का हाथ होता है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नकारते हुए इस बात को आप सभी से रखना चाहती हूँ कि उषा मंगेशकर ने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया था संगीत के नाम, यानी कि उन्होंने विवाह किया ही नहीं था, वे अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित करने वाली कलाकार रही। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर की तरह ही उषा जी ने भी विवाह नहीं किया और परिवार व संगीत के साथ जीवन बिताया, यानी अगर सही मायने में कहा जाए तो उनका विवाह संगीत से हुआ था, क्योंकि जब कोई भी इंसान, कोई भी महिला अपने काम से विवाह कर लेती है ना, तो उसको हर तरफ एक अलग सा ही जुनून दिखता है, तो उन्हीं में से ये भी, यानी कि उषा मंगेशकर जी भी थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आरजी ख्वाहिश। कहते हैं ना कि जब कर्म ही पूजा बन जाए तो इंसान तरक्की तक पहुंचता ही पहुंचता है।
1: बिल्कुल, और सबसे मजे वाली बात शायद आपने नहीं सुनी कि लता मंगेशकर के, यानी मंगेशकर परिवार के किसी भी एक बच्चे ने विवाह नहीं किया। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि लता मंगेशकर जी ने तो अपने भाई बहनों के पूरे जीवन को अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, लेकिन उनके भी बलिदान और उनके इस उत्साह, उनके इस त्याग को उनके भाई बहनों ने समझा, सेम चीजें ही करते हुए अपने विवाह को भी समर्पित करते हुए उसकी ओर, यानी अपने काम की ओर चलती गई। उषा मंगेशकर जी ने मराठी और हिंदी सिनेमा में कई मधुर गीत गाए और उन्हें एक संयमी, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। आइए हम एक और गीत की ओर चलते हैं जो कि उषा मंगेशकर जी की आवाज में है।

0: ऊषा मंगेशकर जी के अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनका व्यक्तित्व बहुत शांत, सौम्य और आध्यात्मिक स्वभाव वाला था। प्रसिद्धि से दूर रहकर कला की सेवा को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। आज भी उन्हें मराठी संगीत की अमूल्य धरोहर माना जाता है।
1: हाँ, ये तो है, क्योंकि जब हम अपने आप को या फिर संगीत को लेकर के अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं तो उन्हें एक अमूल्य धरोहर ही कहा जाता है। या मेरे ख्याल से आज गुमसुम या केवल नाम एक तरह पर सीमित नहीं रह जाता है, कई नामों से उन्हें नवाजा गया। उन्हें सादगी, अनुशासन, साधना और बहुत सारे नामों से भी नवाजा जा चुका है। तो ऐसे ही कलाकार को समर्पित हम एक और गीत की ओर चलते हैं।
0: तो हाँ, आइए चलते हैं एक और गीत की तरफ। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जब शब्द थक जाएं तो संगीत बोल उठता है, दिल के हर कोने में खामोशी को भी सुकून देता है। संगीत वो इबादत है जिसमें रूह मुस्कुरा उठती है। तो आरजे गुमसुम, आज आपने सुना उषा मंगेशकर के जीवन के बारे में, उनकी विरासत के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके निजी जीवन के बारे में।
1: जी आरजे ख्वाहिश, कितना सादगी भरा जीवन, कला के प्रति, अपने संगीत के प्रति कितना समर्पण।
0: बिल्कुल, शायद तब ये आज कहना कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, लेकिन आज इस बात को बिल्कुल नकारते हुए कि व्यक्ति की अपनी खुद की पहचान, खुद का व्यक्तित्व ही उन्हें जीवन में आगे ले जाने के लिए काफी होता है। तो ऐसी थी हमारी उषा मंगेशकर जी।
1: तो चलिए अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में फिर किसी नई गायक और गायिका के साथ।
0: तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।